FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा जैन से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार दिनांक 23 मई 2026। सवेरे के 5:58 हो चुके हैं, हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: एफएम 103.2 MHz पर ही आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। श्रोताओं, थोड़ी देर में हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें हम दिल्ली से प्रसारित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिन कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को

0: गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है, FM 103.2 MHz पर। अब अगले कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई से।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, भर्तृहरि के नीति शतकम के अनुसार महापुरुषों का चित्त समृद्धि के समय पुष्प के समान कोमल हो जाता है, किंतु आइए अब सुने भक्ति संगीत।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान भाग 197। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। आज से नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। इसका पहला भाग आज प्रसारित किया जाएगा। आमंत्रित कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहम, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। भूले बिसरे गीत सुबह 7 से 7:30 से हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से आपको सुनवाएंगे त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 से चित्रलोक। सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा कार्यक्रम आज के फनकार। यह कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री शेफाली शाह पर। सुबह 10 से आपको सुनवाएंगे इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। कार्यक्रम होगा गीतों भरी कहानी। संपादन सहयोग काजल भद्रके, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11 और रात्रि 11 सुनेगा चित्रपट संगीत। सुबह 11:30 और रात्रि 11:30 से आपको सुनाएंगे कार्यक्रम मैटिनी शो। दिन में 12 से हिंदी समाचार। 12:05 से सुनेगा यादों की महफिल। सुरीला सफर ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 1 से। दोपहर 2 से त्रिवेणी। दोपहर 2:30 से आपको सुनवाएंगे सदाबहार नगमे।

दोपहर 3 बजे से मनचाहे गीत, दोपहर 2:30 से सुनिएगा नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक विजयमाल, लेखन रवि शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर। शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, इसके अंतर्गत अभिनेता लेखक और निर्देशक देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत सुन सकेंगे, संपादक सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छायागीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5 बजे से, शाम 5:30 से सुनवाएंगे आपको तराने नए पुराने। झरोखा सुनेगा शाम 6:30 से, 6:35 से संध्या रंजन, शाम 7 बजे से आपको सुनवाएंगे विशेष जयमाला, ये प्रस्तुत कर रही है अभिनेत्री नरगिस, इसकी रिकॉर्डिंग आप सुन सकेंगे। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा, रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनेगा सुनो कहानी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र का 4वां भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। चितलोक रात 8:15 से आपके लिए रात 9 बजे से, और 10 बजे से सुनिएगा कार्यक्रम छाया गीत, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी, रात 10:30 से आपको सुनाएंगे ढलती जाए रात।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग 197।

राम सखा निषाद राज को गले लगाकर भरत ने कुशल क्षेम पूछा। निषाद राज ने कहा, हे प्रभु, कुशल का स्रोत तो आपके चरण हैं, जिनके आज मुझे दर्शन हो गए और आपकी कृपा पाकर मेरी करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण और मंगल हो गया। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, किंतु श्री राम ने मुझ जैसे अधम को अपनाकर विश्व का आभूषण बना दिया है। निषाद राज की प्रीति देख और उनके वचन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। अपने कुल और धाम बताते हुए निषाद राज ने सभी रानियों को प्रणाम निवेदित किया। रानियां उन्हें लाख वर्ष की आयु प्राप्त करने का आशीष देती हैं। ये अद्भुत दृश्य देखने वाले अनायास ही कह उठते हैं कि मनुष्य जीवन धारण करने का वास्तविक लाभ तो निषाद राज ने पाया है। निषाद सेवकों ने घरों, वृक्षों के नीचे, बागीचों तथा आसपास के वन उपवन में भरत जी के पूरे दलबल के विश्राम के लिए समुचित प्रबंध कर दिए। श्रृंगवेरपुर को देख भरत का शरीर प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ गया। गंगा के दर्शन कर सभी यही कामना प्रकट करते हैं कि श्री राम के चरणों में उनका प्रेम कभी कम न हो।

0: कर्नाटक संगीत पद्धति के अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी पुरानी मान्यताएं। श्रोताओं, आज के संगीत सरिता कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: दोस्तों नमस्कार, और संगीत सरिता की इस कड़ी में आपका स्वागत है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के रागों के बारे में रोचक बातें आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो आज का विषय है राग अमृतवर्षिणी। अमृतवर्षिणी का मतलब हुआ अमृत की धारा या वर्षा। जब देश में सूखा पड़ जाए और पेड़ पौधे और खेत सब सूख रहे हों, तब अगर बारिश होने लगे तो उस वर्षा को अमृत ही कहना उचित है, क्योंकि वर्षा से पेड़ पौधे पुनः जीवित हो उठते हैं। अमृतवर्षिणी राग द्वारा ऐसा ही हुआ था, ऐसा कहा जाता है। श्रोताओं, आपको याद होगा कि तानसेन के बारे में भी ऐसी ही एक कहानी प्रचलित है। तानसेन ने दीपक राग गाकर ज्वाला उत्पन्न किया था और उस आग को बुझाने के लिए मेघराग को गाना पड़ा। बिल्कुल उसी तरह कर्नाटक संगीत के एक महान वाग्यकार और कंपोजर मुत्तुस्वामी दीक्षितर ने भी अमृतवर्षिणी राग गाकर वर्षा उत्पन्न की थी, ऐसा कहते हैं। यह घटना करीब 200 वर्ष पहले की है, जब त्यागराजर और दीक्षितर जीवित थे। कहा जाता है कि मुत्तुस्वामी दीक्षितर एक बार दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत में एट्टायपुरम से गुजर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि पूरे प्रांत में सूखा था और खेत सब मुरझा गए थे। लोग भूख से पीड़ित थे और पानी की कमी थी, और इस हालत को देखकर दीक्षितर को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने उसी क्षण सफर में ही संस्कृत भाषा में एक कृति की रचना की, जिसके शब्द हैं आनंदामृत कृषिणी अमृतवर्षिणी हरादि पूजिते शिवे भवानी, मतलब भवानी की प्रशंसा में है। इस कृति में देवी भवानी का वर्णन है और कृति के अंतिम पंक्ति के बोल हैं अमृतेश्वरी सलिलम वर्षय वर्षय वर्षय, अर्थात देवी पानी बरसाओ बरसाओ बरसाओ। इस रचना को गाते ही आकाश में न जाने कहीं से घने बादल घिराए और सलिलम वर्षय वर्षय कहते ही जोर से बारिश होने लगी। लोग अत्यंत खुश हुए और उनकी वेदना भी दूर हो गई, खेतों में पानी भर गया। राग अमृतवर्षिणी का परिचय अब देती हूँ। यह एक औड़व औड़व राग है, अर्थात आरोह अवरोह में पांच स्वर लगते हैं। इस प्रकार

स्वर हैं शुद्ध गांधार, तीव्र मध्यम और शुद्ध निषाद। यह राग चित्रांबरी नाम का 67वां मेलकर्ता का जन्य है। राग सीधा साधा, सरल और अत्यंत लोकप्रिय है और विस्तार भी आसानी से हो सकता है। इसे एक आधुनिक या मॉडर्न राग कह सकते हैं क्योंकि यह करीब 200 वर्षों से ही प्रचलित है। इस राग में बहुत कम बंदिशें मिलते हैं और उनमें सबसे प्रसिद्ध कृति दीक्षितर द्वारा रचित आनंदामृता कृष्णी है। तो अब सुनिए अमृतवर्षिणी राग में इस कृति को, जो आदि ताल में निबद्ध है।

अब सुनिए, इसी राग को आधुनिक पद्धति में फ्लूट पर पेश किया गया है। जैसे मैं कह रही थी कि ये आधुनिक राग है, प्राचीन राग नहीं है। तो अमृतवर्षिणी राग को सुनिए, बांसुरी पर कलाकार हैं रूपक कुलकर्णी।

0: पद्धति के अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी पुरानी मान्यताएं। इसे प्रस्तुत कर रही है शकुंतला नरसिम्हन। कल इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप सुनेंगे हमारे इसी संगीत सरिता कार्यक्रम में।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूप

0: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की

0: प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: अभी आप आकाशवाणी मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। अभी प्रस्तुत है दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़।

नमस्कार झालावाड़, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का और उन सभी श्रोता मित्रों का जो कि इस समय न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से सुन रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त मोहम्मद साजिद। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार और हमेशा की तरह आज भी कार्यक्रम की शुरुआत सुविचार के साथ।

आज का सुविचार है मित्रों कि जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, भारत के महान दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु और युवा प्रेरक स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा और जीवन के विषय में अनेक गहन विचार व्यक्त किए हैं। उनमें से उनका यह प्रसिद्ध और अनुकरणीय विचार है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि मनुष्य का जन्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है। पुस्तकीय ज्ञान या औपचारिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है, इसीलिए जीवन की हर अवस्था में नई चीजें सीखते रहना चाहिए। बचपन में स्कूल से, युवावस्था में संघर्षों से, प्रौढ़ावस्था में जिम्मेदारियों से और वृद्धावस्था में चिंतन से सीखना जारी रखना चाहिए। वो कहते थे कि शिक्षा वह चरित्र है जो चरित्र गठन करती है, मन को मजबूत बनाती है और बुद्धि का विस्तार करती है। अगर व्यक्ति सीखना बंद कर दे तो दोस्तों उसका जीवन स्थिर हो जाता है और आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के विरुद्ध हो जाता है। गौरतलब है साथियों की स्वामी विवेकानंद जी का ये विचार आधुनिक शिक्षा शास्त्र से मेल खाता है, जहां निरंतर कौशल विकास पर जोर दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि किताबें पढ़ना, व्याख्यान सुनना या चर्चाएं करना उपयोगी है, लेकिन सच्चा ज्ञान अनुभव से ही प्राप्त होता है। अनुभव इसलिए श्रेष्ठ है दोस्तों क्योंकि यह व्यक्तिगत, अप्रत्यक्ष और स्थायी होते हैं। यह सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक बनाते हैं और गलतियों से सुधार सिखाते हैं और आत्मविश्वास देते रहते हैं। आज तेजी से बदलती दुनिया में तकनीकी क्रांति, परिवर्तन और वैश्विक चुनौतियां निरंतर सीखने की मांग करती हैं। जो व्यक्ति अनुभवों से सीखता है ना दोस्तों, वही सफल भी होता है। इसीलिए आज के युग में भी स्वामी जी का यह विचार प्रेरित करता है कि असफलता को हार नहीं, सीख का अवसर मानना चाहिए और अनुभवों से सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन की यात्रा में हर पल नया पाठ होता है। और इस विचार को अपनाकर हम न केवल व्यक्तिगत उन्नति कर सकते हैं साथियों, बल्कि समाज को और राष्ट्र को मजबूत भी बना सकते हैं।

श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हैं आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से और सुन रहे हैं दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 23 मई है और दिवस विशेष के क्रम में अगर बात करें साथियों, तो आज अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति फिस्टुला समाप्ति दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या प्रसूति फिस्टुला के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसके उन्मूलन के संकल्प के लिए प्रेरित करता है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि प्रसूति फिस्टुला, जो लंबे और जटिल प्रसव के दौरान मां को होने वाली गंभीर चोट के कारण पैदा होता है, ये स्थिति तब होती है दोस्तों जब मां के मूत्राशय और मलाशय या योनि के बीच एक असामान्य छिद्र बन जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप साथियों मल या मूत्र का अनियंत्रित रिसाव होता रहता है। यह न केवल शारीरिक पीड़ा का कारण बनता है बल्कि सामाजिक बहिष्कार, मानसिक तनाव और आर्थिक कठिनाइयों को भी जन्म देता है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल लगभग 2 मिलियन महिलाएं विशेष रूप से विकासशील देशों में प्रसूति फिस्टुला से प्रभावित होती है। भारत में जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं पिछले कुछ दशकों में बहुत बेहतर हुई हैं, फिर भी ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में प्रसूति फिस्टुला एक चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। गरीबी, शिक्षा की कमी और समय पर चिकित्सा सुविधा न मिलना इस समस्या के मुख्य कारण हैं।

0: हालांकि सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा इस दिशा में प्रयास भी किए जा रहे हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना और यूनेफपीए जैसे संगठनों के सहयोग से जागरूकता और उपचार कार्यक्रम जारी है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुति फिस्टुला समाप्ति दिवस, जिसे कि संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में घोषित किया था, न केवल जागरूकता फैलाने का अवसर है बल्कि यह हमें याद भी दिलाता है साथियों कि इस दिन का महत्व महिलाओं समुदायों को एक स्थिति के कारण और उपचार के बारे में शिक्षित करना है, प्रसव पूर्व और प्रसव के दौरान गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करना है, प्रभावित महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार से बचाने और उनकी गरिमा बहाल करने के लिए प्रयास करना है। दोस्तों इस साल इसकी एक थीम है कि हर हेल्थ इज ए राइट, इन्वेस्ट इन एंडिंग फिस्टुला एंड चाइल्ड बर्थ इंजरीज, उसका स्वास्थ्य एक अधिकार है, फिस्टुला और प्रसव चोटों को समाप्त करने में निवेश करें। इस थीम के माध्यम से जोर दिया गया है दोस्तों कि महिलाओं का स्वास्थ्य मौलिक अधिकार है और फिस्टुला जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का निवेश बेहद जरूरी है।
1: ही नहीं है साथियों,
2: यह दिन हमें यह संकल्प लेने का मौका देता है कि हम हर माँ को सुरक्षित प्रसव और सम्मानजनक जीवन का अधिकार दिलाने के लिए मिलकर काम करेंगे। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी माँ इस पीड़ा से न गुजरे और प्रत्येक महिला को वह सम्मान और देखभाल मिले जिसकी कि वो हकदार है।

नमस्कार। हरावर कार्यक्रम के इस अंक में मित्रों आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर इस कार्यक्रम में हम आपको केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण लाभकारी योजनाओं की जानकारियों से अवगत कराते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको भारत विस्तार योजना के बारे में जानकारी देंगे। आपको बता दें दोस्तों कि देश में कृषि क्षेत्र को तकनीक से मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की भारत विस्तार नामक योजना चलन में आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत दिनों जयपुर से इसकी शुरुआत की थी। इस पहल का मकसद दोस्तों किसानों, वैज्ञानिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं को एक ही नेटवर्क से जोड़ना है ताकि खेती से जुड़ी जानकारियों और सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें। यह प्लेटफॉर्म किसानों को स्थानीय भाषा में वेब, मोबाइल सहायता केंद्र और वॉइस आधारित सिस्टम के जरिए सेवाओं तक पहुंच देता है। आपको बता दें मित्रों की भारत विस्तार एक कनेक्टेड डिजिटल नेटवर्क है जिसमें तीन प्रमुख हिस्सों में तैयार किया गया है। पहला हिस्सा डिमांड साइट है जहां किसान और कृषि विस्तार कार्यकर्ता विभिन्न माध्यमों से सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा इसका नेटवर्क लेयर है जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकार के नोड्स शामिल होंगे। और तीसरा हिस्सा सप्लाई है जिसमें कृषि अनुसंधान संस्थान, मौसम विभाग, बाजार मूल्य पोर्टल और राज्य कृषि प्लेटफॉर्म को जोड़ा जाएगा। इस प्लेटफॉर्म की मदद से किसान फसल सलाह, मौसम पूर्वानुमान और बाजार भाव जैसी जानकारियां समय पर प्राप्त कर सकेंगे। विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक भी पहुंच आसान हो जाएगी जिससे उन्हें अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही कृषि विशेषज्ञों और संस्थानों की जानकारी सीधे किसानों तक पहुंचेगी जिससे खेती से जुड़े जोखिम कम होंगे और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर विस्तार किसानों के लिए एक डिजिटल साथी है जो खेती को स्मार्ट, आसान और लाभकारी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। यह योजना भारत को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कृषि क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगी जिससे भविष्य में कृषि सेवाओं की पहुंच और प्रभाव दोनों बढ़ने की उम्मीद है जिससे कि देश का हर गांव उन्नत तकनीक से सुसज्जित होगा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब हम आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले स्थानीय कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय से अवगत करा दें।

बजकर 30 मिनट समय रहेगा फिल्म संगीत का, और फिल्म संगीत के और अन्य कार्यक्रम होंगे शाम 6:05 पर और रात्रि 8:15 पर। और शाम 5 बजे से सुनिएगा आप ही के पत्रों पर आधारित आप ही के पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

के 90 वर्षों के सफर पर युवा श्रोता संगीता से सोने का खलौरा की बातचीत आप सुनेंगे प्रातः 8:15 पर। महिला बहनों के लिए महिला जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा प्रातः 8:30 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा मां की सेहत, परिवार की राहत। प्रसूति, नाल व्रण कारण, लक्षण और आधुनिक उपचार विषय पर सुनिएगा। प्रसूति फिस्टुला समाप्ति अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर डॉक्टर आशा मीणा से रितिका परमार की बातचीत और जननी सुरक्षा योजना के बारे में भी इस कार्यक्रम में महिला बहनें जागरूक होंगी। सुनिएगा कार्यक्रम महिला जगत प्रातः 8:30 पर। दस मिनट पर आप सुनेंगे पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्मावन आकाशवाणी के 30वें एपिसोड का प्रसारण। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित कुमारी एन राजम से बातचीत का पुनः प्रसारण।

शाम शाम में किसान साथियों के लिए किसानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसका चर्चा का विषय होगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना और गर्मियों में पशुओं की देखभाल विषय पर सुनिएगा प्रगतिशील किसान संजू मीणा ग्राम लसूड़िया शाह से संजू भाई मीणा की बातचीत। और जानकारी की बातों में आज ये जानकारी होगी ग्रामीण आवास योजना के बारे में, और साथ ही इस कार्यक्रम में किसान साथी जानकारी लेंगे मौसम, समर्थन मूल्य और बाजार भावों की।

0: समाचार संध्या का आज का अंक हम दिल्ली से प्रसारित करेंगे और रात्रि 9 बजे सुनिएगा गीत संगीत की विभिन्न विधाओं का कार्यक्रम सबरस। श्रोताओं, ये थे हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले स्थानीय और मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।
1: वायु कार्रवाई, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु कार्रवाई की शुरुआत 1992 की पृथ्वी शिखर सम्मेलन से हुई थी और 2015 में पेरिस अग्रीमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया जिसका लक्ष्य है वैश्विक तापमान

0: तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। लेकिन लगभग सभी देशों के प्रतिबद्धता के बावजूद अब तक के वादे इस लक्ष्य के लिए काफी नहीं हैं। इसलिए तुरंत और प्रभावी बदलाव जरूरी है, खासकर गरीब देशों को वित्तीय सहायता और समर्थन देना होगा। कार्बन उत्सर्जन कम करना और पर्यावरण अनुकूल व्यवहार ही सबसे जरूरी उपाय हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है, यूनेस्को ने जलवायु जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 भारतीय भाषाओं में जलवायु साक्षरता की सामग्री तैयार की है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: कार्यक्रम में बड़ी सूचना और गतिविधियों की

दिल्ली मित्रों की राज्य सरकार के निर्देश अनुसार जिले में 25 से 5 जून तक वंदे क्षमा करें 25 मई से 5 जून तक वंदे संरक्षण अभियान चलाया जाएगा। अभियान को लेकर विगत दिनों जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय में बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। अभियान के तहत जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता और जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम जिले भर में आयोजित होंगे। अब आपको कि झालावाड़ में हार्ट अटैक और अन्य गंभीर हृदय रोगों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट ईसीजी एंड हार्ट इमरजेंसी स्पॉट व्हाट्सएप ग्रुप पहल शुरू की गई है। इस डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से अब ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मौजूद मरीजों की ईसीजी रिपोर्ट विशेष डॉक्टरों तक तुरंत पहुंच सकेगी, जिससे कि गोल्डन आवर्स के भीतर पहचान, इलाज संबंधी सलाह और त्वरित रेफरल संभव हो पाएगा। यह पहल जिला नोडल अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शुभम पाटीदार द्वारा आरंभ की गई है। बिजली बाधित रहने से संबंधित ये सूचना गौर से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों में करीब 3 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान 3311 केवी सब स्टेशन मेडिकल कॉलेज झालावाड़ से नई 11 केवी लाइन डालने का कार्य सुबह किया जाएगा। इस कारण शनिवार यानी आज सुबह 8:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक संबंधित फीडरों से जुड़े क्षेत्रों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में जनरल अस्पताल, डॉक्टर्स क्वार्टर्स, दीवलक्ष्मी अस्पताल, पीएचईडी कार्यालय, कलेक्टर सिविल लाइन क्षेत्र, रेलवे स्टेशन क्षेत्र, डाक बंगला, मामा भांजा क्षेत्र, दरबार की कोठी, बीएसएनएल ऑफिस, मदर एप्लेन अस्पताल, इंदिरा गांधी कॉलोनी, पुराने पोस्ट ऑफिस के आसपास का क्षेत्र, जिंदल मेडिकल स्टोर, एसआरजी अस्पताल के सामने का इलाका और पीछे का क्षेत्र शामिल है। और मित्रों, इस जानकारी के साथ ही हमारा आज

0: अभी आप सुन रहे थे दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। भागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।
1: तुम दिल की
0: अभिजीत और अलका की आवाजों में कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है धड़कन फिल्म के इस गीत से। बोल समीर के हैं और संगीत नदीम श्रवण का।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, अब बचाव संभव है।
6: अब ये कैंसर टाला जा सकता है, बस एक सही कदम,
5: सही समय पर। अपनी 9 से 14 वर्ष की बेटियों को HPV टीका जरूर लगवाएं और उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और लंबी उम्र का आशीर्वाद दें।
6: ये टीकाकरण सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क किया जा रहा है।
5: आइए मिलकर बेटियों के स्वास्थ्य की रक्षा करें और सर्वाइकल कैंसर मुक्त भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।
6: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।
7: ब्रेक के बाद फिल्म संगीत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में दिल तो पागल है फिल्म का गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत है उत्तम सिंह का।

लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में भी आप दिल तो पागल है फिल्म का गीत सुन रहे थे। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम समाप्त हुआ। श्रोताओ, आपको बता दें कि फिल्म संगीत के और भी कार्यक्रम आप हमारे इस सभा में सुनेंगे शाम 6:05 पर और रात्रि 8:15 पर। और आपकी फरमाइश पर आप ही के पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा। आपकी फरमाइश शाम 5 बजे सुनना ना भूलें। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.2 MHz पर। सवेरे के 8 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार प्रभात का आज का अंक।

0: दिल्ली से प्रसारित करेंगे।
1: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
5: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
6: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
7: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जांजीपुर की मित्रता अब से

0: सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
5: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
6: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर

0: दक्षिण कोलमार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद ने कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की चार दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को

0: 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आकाशवाणी@19। आकाशवाणी के 90 साल के सफर पर आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रेडियो श्रोता डॉक्टर संगीता धाकड़ से सोनिका खलोरा की बातचीत। लीजिए सुनिए।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारा ये जो कार्यक्रम है ये समर्पित है हमारे आकाशवाणी को। जी हाँ, हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको अवगत कराते हैं, आपसे रूबरू करवाते हैं हमारे नए नए श्रोताओं को। हमारा ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, ये आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली सफ़र को रेडियो के माध्यम

0: जो कार्यक्रम है ये समर्पित है हमारे आकाशवाणी को। जी हाँ, हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको अवगत कराते हैं, आपसे रूबरू करवाते हैं हमारे नए नए श्रोताओं को। हमारा ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, ये आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली सफ़र को रेडियो के माध्यम से आपको प्रस्तुत करता है। रेडियो एक ऐसा माध्यम जिसने न सिर्फ खबरें दी बल्कि उम्मीद जगाई, ज्ञान फैलाया और देश के कोने कोने को एक सूत्र में बांध दिया। दोस्तों, भारत में रेडियो की प्रसारण की जो शुरुआत है वो 1927 में हुई थी। धीरे धीरे रेडियो ने लोगों के जीवन में अपनी एक खास जगह बना ली और फिर इसका नाम पड़ा आकाशवाणी, जिसका अर्थ है आकाश से आने वाली वाणी। आज 90 वर्षों के बाद आकाशवाणी केवल एक संस्था ही नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोताओं को सुनवाएंगे नए नए हमारे श्रोताओं के बारे में, और इस कड़ी में आज हमारे साथ जो श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, आइए उनका परिचय आपसे करवाते हैं। श्रोताओं, हमारे साथ हैं हमारी एक श्रोता जो आज के आकाशवाणी के 90 वर्षों पर हमारे साथ चर्चा करेंगी, और आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपका परिचय हमारे श्रोताओं से करवाइए कि आपका नाम और आप क्या करती हैं।
1: मेरा नाम डॉक्टर संगीता धाकड़ है और मैं शिक्षिका हूँ।
0: जी, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो आकाशवाणी के सफ़र पर है कि उसकी सफ़रनामा किस तरीके का रहा, तो सबसे पहले इसके नाम के बारे में ही जानते हैं कि जो हमारी आकाशवाणी है इसको देश की आवाज़ कहा जाता है, तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसका ये जो उपनाम है वो किस तरीके से आया।
1: जी बिल्कुल, रेडियो जो है वो आकाशवाणी इसलिए कहा जाता है इसे, क्योंकि यह देश के लोगों को जानकारी प्रदान करता है। शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में भी इसका बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है, साथ ही देश की सांस्कृतिक विरासत को भी यह बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये देश की एक आवाज़ बन करके और सभी तरीके के संदेशों को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने में सहायता कर।
0: जी मैम, कार्यक्रम का जो अगला हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं वो ये है कि हमारे जो स्टूडियो के माध्यम से आप रेडियो सुनते हैं उसमें कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपको पसंद हैं और जो आप सुनना निरंतर रूप से पसंद करते हैं।
1: देखिए, रेडियो के कार्यक्रमों की जब तक मैं बात करती हूँ, मुझे लगभग सारे ही कार्यक्रम पसंद है। जिससे अगर मैं जिसकी शुरुआत अगर मैं करूँ तो नमस्कार झालावाड़ से लेकर के मुझे किसान वाणी, विज्ञान वार्ता, कृषि दर्शन, स्वास्थ्य संवाद, इवन सभी जो हमारे आम नागरिक के लिए उपयोगी कार्यक्रम है वो मुझे सभी पसंद है। अगर मैं नमस्कार झालावाड़ की बात करूँ तो वो इतना उपयोगी है क्योंकि वो हमारे दैनिक जीवन से हमें परिचय करवाते हैं, साथ ही हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में या जहाँ पर हमें डेली अगर हम न्यूज़ वगैरह से सब चीज़ों से अपडेट करता है कि आज अपने आसपास की सराउंडिंग में क्या हो रहा है।
0: जी,
1: महिला जगत कार्यक्रम भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है ये कार्यक्रम, क्योंकि इसमें हमेशा महिला जागरूकता से संबंधी वार्ताएं होती है, साथ ही उन सभी योजनाओं के बारे में भी इसमें बताया जाता है जो महिलाओं के लिए आवश्यक हैं और अभी वर्तमान में नारी शक्ति को सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है।
0: जी बिल्कुल,
1: और युवा वाणी कार्यक्रम जैसा आप सभी जानते ही है सबसे सभी लोगों का एक बहुत पसंदीदा कार्यक्रम है, क्योंकि ये हमारे यंगस्टर्स जो करंट यूथ है उसको बहुत ही ऊर्जावान बनाने वाला कार्यक्रम है, और साथ ही युवाओं से संबंधित नई नई जानकारियां, उनके भविष्य के लिए क्या क्या योजनाएं हो सकती है वो सभी इसमें सम्मिलित होती है। मैं पसंदीदा कार्यक्रम की अगर मैं चर्चा करती हूँ तो मुझे इसमें किसान वाणी कार्यक्रम विशेष रूप से पसंद है। किसान वाणी कार्यक्रम विशेष इसलिए पसंद है क्योंकि यह रेडियो एक ऐसा साधन है जो एक आम नागरिक की पहुंच के अंदर है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां पर नेटवर्क इत्यादि नहीं है तो भी वहां पर आकाशवाणी और रेडियो की पहुंच बहुत आसान है, जो कि लोगों को उनसे संबंधित जानकारियां देती है। जैसे किसान वाणी की बात करें तो किसानों को किस समय पर किस किस्म की फसल उगानी चाहिए, किस किस्म में कौन किस फसल में किस तरीके की बीमारियां हो रही है, उन बीमारियों को किस तरीके से ध्यान रखा जा सकता है, इस तरीके की समस्याएं उसमें समाधान की जाती है।

0: साथ ही विज्ञान वार्ता की अगर मैं चर्चा करूं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न जानकारियां इसमें प्रदान की जाती है, जो कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सबके लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। स्वास्थ्य संवाद एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो रेडियो के द्वारा प्रसारित किया जाता है और हमारे जो मौसमी बीमारियां होती है उनके बारे में भी ये स्वास्थ्य संवाद जो है वो हमें अच्छी अच्छी जानकारियां और बच्चों को बड़ों को स्वास्थ्य के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से वो अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, पोषण संबंधी जानकारियां इत्यादि इसमें उपलब्ध कराई जाती है।
1: जी मैम, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारे कार्यक्रम को समझाया और आपने जिस हिसाब से हमें बताया कि हमारे कार्यक्रम कौन कौन से हैं और उनसे क्या क्या जानकारियां उत्पत्ति, तो निश्चित हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि आप हमारे कार्यक्रम रोजाना सुनती हैं। जी बिल्कुल। तो इस कड़ी में अगला जो प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं, जी मैम, से बताया कि जो हमारे कार्यक्रम है वो कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। इस कड़ी में आपने भी बताया था कि जो हमारे कार्यक्रम है वो ऐसे लोगों तक भी पहुँचते हैं जहाँ संचार के और माध्यमों का अभी तक पहुँचना या पहुँच पाना मुश्किल है, तो इस संदर्भ में आप बताएंगे कि रेडियो की भूमिका क्या रही होगी उन लोगों को तक ये कार्यक्रम पहुँचाने में, या रेडियो की भूमिका क्या है उनमें।
0: एक्चुअली क्या है कि जैसे कई दूर दराज घाटी क्षेत्र, कई ढाणी ऐसे गांव हैं जहां पर सभी साधन उपलब्ध होना बहुत आसान कार्य नहीं है।
1: जी,
0: उसके लिए कई सारे पहलू हैं। रेडियो एक सस्ता और सुलभ साधन है जो एक आम नागरिक की पहुंच में भी आ जाता है, साथ ही इसमें इसके द्वारा दी गई जानकारियां जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह है जानकारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन इसलिए भी है क्योंकि शिक्षा का एक साधन है। इसके माध्यम से दूर दराज रहने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधी जानकारियां प्राप्त होती है। स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों में भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है और वहां रहने वाले बच्चों के लिए एक मनोरंजन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके कार्यक्रम बहुत ही सटीक समय पर आते हैं
1: जी,
0: इससे बच्चों को अपनी घड़ी का मिलान तक भी इसके द्वारा किए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: साथ ही अगर हम बात करें तो समाज में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऐसे पिछड़े क्षेत्र होते हैं वहां पर सामाजिक जागरूकता का बहुत अभाव है, ऐसे क्षेत्रों में आकाशवाणी बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करती है क्योंकि इसके द्वारा दी गई जानकारियां निश्चित रूप से समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपदा प्रबंधन जैसी जानकारियां भी प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर अन्य साधन, अन्य माध्यम, इंटरनेट नेटवर्क इत्यादि उपलब्ध नहीं है, वहां पर रेडियो की पहुंच बहुत आसान है। अतः मैं ये कहना चाहूंगी कि रेडियो एक सरल, सुलभ और सबकी पहुंच में आने वाला एक संपूर्ण साधन है जो कि समय की बर्बादी नहीं करता है। इसमें कई बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट में अपना समय खराब नहीं होता है।
1: जी जी।
0: साथ ही हम बात करें तो रेडियो एक एकाग्रचित्ता को भी बढ़ावा देता है क्योंकि इसमें ध्यान पूर्वक सुनने के लिए एकाग्रचित्ता का विकास होता है। विद्यार्थियों की बात करूं इसमें।
1: जी जी जी। तो जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और ये बताया कि आज के युग में भी हमारी जो रेडियो की प्रासंगिकता है वो बहुत ज्यादा है। जैसा कि मैम अभी आपने बताया कि जो रेडियो है हमारा दूर दराज तक या सारे ऐसी जगहों पर पहुंच रहा है जहां तक और संचार के माध्यमों की पहुंच नहीं है। अगर हम रेडियो के अब अगर स्वरूप की बात करें तो हमें आज भी याद है कि हमारे बचपन में एक रेडियो का बॉक्स हुआ करता था काले कलर का, जिससे हम रेडियो सुना करते थे और उसे याद करके हमें हमारे बचपन की तरफ ये लेके जाता है। लेकिन आज के जो डिजिटल युग है इसमें जो रेडियो का स्वरूप है वो भी बदला है, तो आप हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि वो किस तरीके से बदला हुआ है।
0: जी, जहाँ तक जब अगर हम बात करते हैं रेडियो के स्वरूप की तो निश्चित रूप से इसमें काफी बदलाव आया है क्योंकि पहले रेडियो सिर्फ एक माध्यम था जिससे लोग समाचार, संगीत और अन्य कार्यक्रम सुनते थे, लेकिन अब रेडियो के कई स्वरूप हो गए हैं। बात करें हम तो AM रेडियो है, FM रेडियो है जो कि बहुत ही प्रचलित है और सभी जगह पर सभी समय में ऑल टाइम अवेलेबल है FM रेडियो। FM रेडियो ना केवल मनोरंजन का एक साधन है बल्कि ये कई

0: या फिर जो औरतें होती है उनकी नीचे का रास्ता बहुत अकड़ा होता है, उस वजह से कई बार वो बच्चा नीचे खिसक नहीं पाता है, वो एक जगह पे फंस जाता है कई घंटों तक या बहुत लंबा टाइम भी हो जाता है कभी कभी। तो उसके वजह से क्या होता है, एक दबाव, जैसे अब योनि के ऊपर ही पेशाब की थैली रहती है, उस टाइम उस जो बच्चे का जो माथा होता है उस सर की वजह से काफी दबाव रहता है, तो योनि और फिर जो पेशाब की थैली और वो जो लैटरिन का रास्ता होता है वो काफी घंटों तक ऐसे दबाव में खून नहीं जा पाता है उस हिस्से में, तो वो कहीं ना कहीं खराब होते होते वहाँ पे छेद बन जाते हैं, कई बार एक भी बनता है कभी कई सारे भी बन जाते हैं, वो दिक्कतें करते हैं। तो इस वजह से होता है कि उस बच्चे के सर की वजह से जो कई घंटों तक फंसा हुआ है उस जगह पे।
1: मैम जैसा कि अभी आपने काफी सारे कारण हमें बताया कि किन किन कारणों से ये समस्या होती है, से हम ये जानना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में मोस्टली जो हमारी बहनें हैं उनको जानकारी और जागरूकता की कमी होती है, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या अधिक देखने को मिलती है, यदि हाँ तो क्यों, आप हमें अपने अनुसार बताइए।
0: ये बिल्कुल सही चीज है कि जो गाँव के मतलब इलाकों में चीजें ज्यादा होती है, क्योंकि गाँव में भी जैसे हम पहले की बात करें तो पहले डिलीवरियां घरों में ही ज्यादा हुआ करती थी, अब फिर भी काफी चीजें सुधर गई हैं, अब गाँव में लोग हॉस्पिटल जाना स्टार्ट कर दे, हॉस्पिटल डिलीवरियां शुरू हो गई हैं, पर फिर भी अभी कुछ ऐसे गांव इतने हैं जहां पे अभी भी वो फैसिलिटी नहीं है कि वो हॉस्पिटल जा सके, तो वो अभी भी क्या होता है घर पे ही डिलीवरियां करवाते हैं। और फिर कुछ चीजें गाँव में जैसे अंतर रखना बच्चों में, ये चीजें बहुत कम है और बहुत कम उम्र में फिर पोषण नहीं होता है उनमें, बहुत कमजोर होती हैं बच्चियां उस टाइम पे, वो फिर बच्चे करना उम्र होती है तो उनका वो उम्र कम की वजह से भी वो रास्ता नहीं बन पाता है डिलीवरी करने के लिए। गाँव में सुविधाएं नहीं होती, सोनोग्राफियां नहीं होती हैं, वो बार बार दिखाते नहीं है हॉस्पिटलों में, तो पता भी नहीं लगता है बच्चा बड़ा है पेट में या फिर उनका वो रास्ता बहुत सकड़ा हुआ है, हाइट छोटी होती है कम उम्र में बच्चियों की, तो ये सारी चीजें मिला के ये चीजें मतलब फिस्टुला बनाती ही है बाद में, फिर उन्हें ये दिक्कत होती ही होती है अगर घर पे डिलीवरियां करवा रही है बहुत टाइम तक फंसा हुआ है बच्चा। फिर जैसे देखते हैं हम लोग फैसिलिटी नहीं है, जैसे घरों में ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कई घंटे निकल गए डिलीवरी के लिए वेट कर रहे हैं, फिर हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल दूर पड़ता है गाँव से, कई बार 4-5 घंटे वैसे लग जाते हैं जाने में, ये सब चीजें बहुत इसमें मतलब कहीं ना कहीं रोल करती है कि मतलब लंबा टाइम निकल गया आप डिलीवरी हो नहीं रही है बच्चा फंसा हुआ है, वजह से ये गाँव में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है चीज।
1: जी मैम, ये आपने काफी अच्छी जानकारी जो हमारी श्रोताएं हैं जो बहनें हमें सुन रही होंगी उन्हें आपने दी, और ये सही है कि जैसे ही आपको अपने शरीर में कुछ भी चेंजेस लगे तो तुरंत हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, समय नहीं गंवाना चाहिए। मैम अब आप ये बताइए कि इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं जिन पर जो हमारी बहनें हैं उनको तुरंत ध्यान देना चाहिए।
0: देखिए इसमें जैसे ये एक तो तुरंत नहीं बनता है फिस्टुला, जो छेद बन रहे हैं हाथ जस्ट डिलीवरी हुई उसके तुरंत बाद ये नहीं बनता है, इसमें काफी टाइम लग जाता है, कई बार महीने भी लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं कई। इसके जो लक्षण होते हैं उसमें सबसे ज्यादा तो ये देखने को मिलती है क्योंकि पेशाब और योनि के बीच में छेद रास्ता बन गया है, तो वो जो योनि के थ्रू वो पेशाब धीरे धीरे करके निकलेगा, तो हर वक्त महिला को वो गीलापन महसूस होगा, फिर वो पेशाब वहां से आ रहा है तो इन्फेक्शन होंगे वहां पे योनि में, योनि का इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन, या कई बार लैटरिन के रस में भी योनि का वो छेद बन जाता है, रास्ता बन जाता है, तो फिर लैटरिन का योनि को नीचे आना धीरे धीरे, तो इस वजह से एक तो हर वक्त गीलापन, इरिटेशन होती है, बहुत चिड़चिड़ापन आ जाएगा, इन्फेक्शन होंगे, बदबू बहुत आती है वहां से, तो ये सब चीजें रहती हैं, और फिर मतलब पेशाब का भी इन्फेक्शन होने के इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये सारे लक्षण होते हैं कि हर वक्त मतलब उन्हें ऐसा लगेगा कि ये पानी जैसा, मतलब पेशाब ऐसे एकदम से तो नहीं आएगा, बूंद बूंद करके आएगा, पूरे टाइम उनको वो गीलापन महसूस होता रहेगा।
1: मैम जैसा कि सब कहते हैं कि महिला मानसिक स्वास्थ्य का बच्चे पर भी काफी असर पड़ता है, तो क्या मैम आपके अनुसार बीमारी का प्रभाव महिला के मानसिक और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है?
0: जी बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि हर वक्त उसे वो इरिटेशन, गीलापन महसूस होगा, कहीं उठने बैठने के लिए भी सोचेगी, मतलब वो उठेगी बैठेगी बदबू आना हर शरीर में से, तो उसे कहीं ना कहीं चीजें इफेक्ट करेगी, फिर वो अपने पति के साथ संबंध बनाएगी उस टाइम पे भी ये चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं, कि उस टाइम दर्द होना और बहुत ज्यादा दर्द होगा, इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा होता है, सामने वाले को भी पता लग रहा है कि खराब हो रही है चीजें, इसलिए वो, और फिर औरतें जनरली ऐसी चीजें बता नहीं पाती है, बहुत लेट बताती है, कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति पे उनके इफेक्ट पड़ता है इन चीजों का।
1: जी मैम, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो महिलाएं होती हैं वो अपनी जो उनको कोई भी शारीरिक समस्या होती है तो वो डायरेक्ट नहीं कह पाती हैं, वो दबा देती हैं उसे, तो फिर वो एक बड़ा बीमारी का रूप ले लेता है। मैम अगर उपचार की बात करें आधुनिक चिकित्सा में इसका इलाज कैसे किया जाता है?
0: देखिए इसकी सबसे अच्छी चीज यही है कि इसका इलाज हो सकता है। अब इसमें क्या इलाज की अगर बात करें तो बेसिकली इसका इलाज ऑपरेशन ही है, फिर भी अगर ये चीज हमें टाइम से पता लग जाती है, जैसे जस्ट अभी फिस्टुला बनाई है तो उस वक्त अगर तुरंत वो औरत मतलब वो फीमेल आके हमारे पास कह रही है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, टाइमली पता लग जाए, और वो अगर छोटा सा होल होता है तो उसमें क्या होता है हम पेशाब की नलकी डाल देते हैं ताकि वो जो हिस्सा है उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है सही होने के लिए, तो 2-3 हफ्ते हम पेशाब की नलकी डाल के रखते हैं उससे हो जाता है, पर इसका जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट

0: यानी जो पेशाब की नलकी डालना और इस तरीके से सही करना, ये इससे भी कई बार चीजें सही नहीं होती है, कहीं ना कहीं इसके लिए ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। आजकल दूरबीन वाले ऑपरेशन भी उपलब्ध है, उससे बहुत जल्दी चीजें सही हो जाती है, मतलब इस चीज का इलाज बहुत अच्छे से है और बिल्कुल सही तरीके से इलाज हो जाता है इसका, बिल्कुल सही हो जाती है, बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाती है फीमेल्स की।
1: मैम, जैसा कि आपने बताया कि इसका इलाज है वो ऑपरेशन ही है और पूरी तरह से ठीक हो जाती है, तो क्या यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, मतलब आगे होने का कोई चांसेस है?
0: ऑपरेशन अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं मतलब 90% चांस होते हैं कि वो एक बार में सही हो जाएगा, दोबारा कुछ भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑपरेशन सही हो जाएगा, बस उसमें टाइम लग जाता है उसको सही होने में, 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं, पर चीजें वापस वैसी हो जाती हैं।
1: अभी हम प्रसूति नालवण, कारण, लक्षण और आधुनिक उपचार से संबंधित जानकारी आप हमें दे रहे थे। और मैम, आज प्रसूति फिस्टुला समाप्ति अंतर्राष्ट्रीय दिवस, बताइए कि जो हमारी बहनें हैं इस समस्या से बचाव के लिए उन्हें कौन कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए ताकि वो हर प्रकार की बीमारी से बच सके।
0: इसमें सबसे पहली चीज तो यही है कि जिस तरीके से मैंने बताया कि भाई कम उम्र में शादियां होना, तो एक तो उस चीज को रोक सकते हैं और बच्चियों के पोषण का ध्यान रख सकते हैं, उनके खान पान का ध्यान रखना जरूरी है। और दूसरी चीज, जैसे ही प्रेगनेंसी होती है बच्चा लगता है, टाइम से हॉस्पिटल दिखाते रहिए, इन्हें हर महीने जाके अस्पताल दिखाना, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है, क्योंकि लास्ट टाइम पे कई सारी चीजें होती है जो डॉक्टर्स कर लेते हैं, जैसे सोनोग्राफी से बच्चे का वजन का पता लग जाता है, कई बार बहुत बच्चा बड़ा होता है 4-4.5 किलो का, तो वो उसके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हम बच्चे का वजन पता कर सकते हैं। और जो लास्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी का, उसमें डॉक्टर्स कई बार नीचे से चेक कर लेते हैं रास्ता कि भाई डिलीवरी हो सकती है या नहीं, कई बार नहीं भी हो पाती, रास्ता सकड़ा होता है, तो वो तुरंत बोल देते हैं कि भाई डिलीवरी नहीं हो पाएगी नॉर्मल, तो सिजेरियन करवाना पड़ेगा, तो उससे भी हम इन चीजों से बच सकते। तो बस यही चीजें हैं, इन चीजों का ध्यान रखना है, हॉस्पिटल जाना, दिखाना हर महीने दिखाना, सोनोग्राफी टाइम से कराना और डॉक्टर से चीजें बार बार चेक कराते रहना, ये सब चीजें बहुत जरूरी है।
1: मैम, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो हमारी बहनें हैं उन्हें सबसे पहले अपना ध्यान रखना है, तभी तो वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। उसके लिए उन्हें टाइम से खाना खाना चाहिए, प्रॉपर जांच करवानी चाहिए। मैम, आज आपने काफी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है, उम्मीद करती हूँ कि सभी श्रोताओं ने ये जानकारी सुनी होगी और वो इसका पूरा लाभ उठाएंगे। मैम, आपका धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। नमस्कार। सखियों, अभी हम सब मिलकर सुन रहे थे डॉक्टर आशा मीणा जी की बातचीत, जिसने हमें बताया कि गर्भावस्था के दौरान जो हमारी बहनें हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए सबसे ज़रूरी है परिवार के सदस्यों का सहयोग, क्योंकि एक महिला अपना पूरा जीवन परिवार के लिए समर्पित कर देती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका पूरा ध्यान रखें, उनको संतुलित आहार दें, तभी तो एक स्वस्थ माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। तो श्रोताओं, एक बार फिर से चलते हैं कि संगीत की दुनिया में और हम सब मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, इसी अंतराल के साथ एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं जानकारी की बात में। जानकारी की बातों में आज हम बात करेंगे जननी सुरक्षा योजना की, जो गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य ही यही है कि गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षित प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना और शिशु मृत्यु दर को कम करना। और इस योजना का लाभ लेने के लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं वो है आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता विवरण, गर्भावस्था पंजीकरण कार्ड और मोबाइल नंबर। और इस योजना का लाभ जो बहनें हैं वो कैसे ले सकती हैं, उनके लिए जो बहनें हैं उन्हें अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र या सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भावस्था का पंजीकरण करवाएं, समय समय पर जांच और टीकाकरण करवाएं और प्रसव सरकारी अस्पताल में ही

करवाएं और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद सहायता राशि बैंक खाते में सीधी भेजी जाएगी। सुरक्षित मातृत्व हर महिला का अधिकार है। गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, सही पोषण और अस्पताल में प्रसव माँ और बच्चे दोनों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करते हैं। और हम जानते हैं कि जो माँ हैं, हर मौसम बहार होता है, लेकिन जिनके हिस्से में माँ का प्यार होता है उनके लिए हर मौसम ही बहार की तरह लगता है। हजारों गम हो फिर भी खुशियों में फूल जाता हूँ, जब हंसती है मेरी माँ तो मैं हर गम भूल जाता हूँ। इसी शब्दों के साथ दीजिए अपनी रेडियो सखी रितिका को अनुमति। नमस्कार।

0: रहता कार्यक्रम महिला जगत। यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 9 बजने को है तो समाचार होंगे जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। 19वें रोजगार मेले का आज देश में 47 स्थानों पर आयोजन। 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य प्रगति पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। और प्रदेश के 4 शहरों में दिन का पारा 44 और 25 स्थानों पर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। देश में आज 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 47 स्थानों पर लगने वाले इन मेलों के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। इधर प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। इनमें 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में, कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी अजमेर में और बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। गौरतलब है कि देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से करीब 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के रेल विकास कार्य प्रगति पर हैं। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 85 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। श्री वैष्णव कल पाली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड काल के बाद राजस्थान के लिए 46 नई रेल सेवाओं की शुरुआत की गई है।
1: सारी नई गाड़ियां चालू हो पाएगी, साथ ही साथ 85 स्टेशनों का नव निर्माण राजस्थान में हो रहा है, जिसमें करीब 15 स्टेशन का काम कंप्लीट हो गया है। बाकी सब जगह बहुत अच्छे तरीके से तेजी से काम चल रहा है और देश भर में 1300 स्टेशनों का नव निर्माण चल रहा है। आने वाले समय में रेलवे की और कई नई सुविधाएं

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि राज्य में मोबाइल मेडिकल सेवाओं और निशुल्क जांच शिविरों के जरिए गांव-गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंच रही है। श्री बिरला कल कोटा के रामगंज मंडी में जिला अस्पताल के शिलान्यास समारोह के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 200 बेड के इस आधुनिक अस्पताल के बनने से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा सुलभ हो सकेगी।
1: बहुत दिनों से मांग थी कि यहाँ जिला अस्पताल हो। 62 करोड़ की लागत से बनने वाला जिला चिकित्सालय का शिलान्यास हुआ है। ये सारा इलाका जहाँ मजदूर बड़ी संख्या में रहते हैं, यहाँ के लोगों को कोटा या झालावाड़ इलाज के लिए जाना पड़ता था, आने वाले समय में सभी का इलाज यहाँ पर होता है। तो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, पीने का पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, अस्पताल हो, दो दो महाविद्यालय हो, टेक्निकल महाविद्यालय हो, तमाम चीजें जो एक आवश्यकताएं थी जो रामगंज मंडी में बरसों तक अभाव थे उनको पूरा करने का काम किया।
0: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। इन पर प्रति लीटर 91 पैसे बढ़ाए गए हैं। पिछले 10 दिन में तेल के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। 15 मई को 3 रुपए, 19 मई को 90 पैसे बढ़ाने के बाद अब ईंधन की कीमतें फिर बढ़ने से हाल के दिनों में अब तक लगभग 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच ये निर्णय लिया गया। सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक और आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया है। मनीषा संजय हवलदार नाम की महिला परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी। इसे एनटीए ने विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इस प्रकरण में सीबीआई ने देश भर में जयपुर सहित कई स्थानों पर छापेमारी कर अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी लेने के आखिरी तारीख एक दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदक के अत्यधिक और तकनीकी व्यवधान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। इसे विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के वास्ते 2 दिन का समय मिल सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का अनुमोदन किया गया। साथ ही ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी, पेंशनर्स कल्याण के बारे में भी फैसले लिए गए। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण, जन अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान तथा पीने के पानी और बिजली आपूर्ति सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक उत्पादन, अक्षय ऊर्जा और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में 3 संशोधनों को मंजूरी दी है। उद्योग मंत्री ने बताया कि अब पेंशनर्स फेस स्कैन तकनीक से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे।
2: जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अभी तक हर 3 साल के अंदर विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करना पड़ता था, ऐसी बाध्यता थी। लेकिन अभी कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि ऐसे विशेष योग्यजन जो बच्चे हैं उनको केवल एक बार ही प्रमाण पत्र जारी करना होगा। दूसरा, पेंशनर्स को अब मोबाइल ऐप द्वारा अपना फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले इसमें आपको ई मित्र के पास जाना पड़ता था या एसएसओ आईडी से साइन इन करना पड़ता था, अब अपने मोबाइल से भी अपना जीवन प्रमाण।
0: बैठक में राजपत्रित अधिकारियों के साथ ही अराजपत्रित अधिकारियों को भी एसएसओ आईडी से जीवन प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए अधिकृत किया गया है। बैठक में जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए जमीन आवंटन की मंजूरी भी दी गई। कांग्रेस पार्टी का चिंतन

0: और प्रशिक्षण शिविर आज से पुष्कर में शुरू हो रहा है। 10 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में संगठन की मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सहित कई अन्य नेता इसमें शामिल होंगे। प्रदेश के 4 शहरों में कल दिन का पारा 44 डिग्री के पार रहा। 44.2 डिग्री सेल्सियस के साथ चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म रहा। वहीं 25 स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में मामूली गिरावट आई है। हालांकि भीषण गर्मी और तपिश का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने कल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने और हीटवेव की संभावना जताई है। कुछ हिस्सों में आज तेज रफ्तार धूल भरी हवाएं चल सकती है। इस बीच बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली की प्रसूति और स्त्री रोग विभाग की डॉक्टर के अर्पणा शर्मा ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इंपॉर्टेंटली बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए। या
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 19वें रोजगार मेले का आज देश में 47 स्थानों पर आयोजन। 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य प्रगति पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। और प्रदेश के 4 शहरों में दिन का पारा 44 और 25 स्थानों पर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी प्रसारण। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित कुमारी एन राजम से बातचीत। इसे हम दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने। 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है। तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा, चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी।

0: खुली नहीं आती थी विशेष के, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
1: वाह, इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
0: डर।
1: हाँ, मन में डर जो होता है,
0: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
1: क्या बात है।
0: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो आकर के भाग जाते रही, तो इस तरह का एटमोसफियर था, तो डर की कोई बात नहीं थी।
1: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
0: बिल्कुल सहज।
1: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी, ये कितना मुश्किल शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
0: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था, 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह, तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही,
1: जी,
0: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वाज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे, तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है, तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइव गर्ल ओ भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी। तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो, तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
1: जी।
0: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा, 12 साल मैं बजा चुका, और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा, तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया, तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट, तो ले लिया मैंने, और उसके बाद बातें ऐसी होती गई, तो मुझे उसमें

0: चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया, तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट, तो ले लिया मैंने। और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई, और पंडित ओमकारनाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
1: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहाँ थी।
1: अच्छा,
0: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
1: जी।
0: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी, तो मेरे मन में आया ये विचार। मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा आहत रहा, हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से, यानी जिस तरह कंठ से आवाज आती है उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा, तो उस तरह। और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। तो इस तरह शुरू हो गया।
1: और पंडित ओमकारनाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से
1: जी,
0: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
1: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वायलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है
1: जी।
0: कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया?
1: हाँ जी।
0: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी, पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया। वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आज जो है
1: जी जी
0: उसकी बू जो 20 साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस, ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं।
0: तो हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया, वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
1: जी जी
0: उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है, तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस, ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है? कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
1: जी, जी।
0: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा? एक आपका चूंकि संगीतकारों का, कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टी एन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सवाल ऐसा है,
0: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
1: अच्छा।
0: मेरे पेरेंट्स के।
1: हाँ हाँ।
0: तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन और वो, तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
1: हाँ हाँ हाँ। जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक, किसी तरह का छुहलका फुलका झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को?
0: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रेस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं
1: जी, जी।
0: तो इसीलिए उनका, वो हम सब लोगों को वो खुद

0: का दर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
1: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
0: वायलिन में इंस्ट्रूमेंट में, जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
1: अम्मा जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
1: जी,
0: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
1: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका, किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
0: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का, बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
1: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं अम्मा जी, आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी है वो बहुत ही पॉपुलर
0: है। उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया।
1: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी,
0: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली की। तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता।
1: बिल्कुल सही कहा
0: लोगों को
1: जी।
0: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे। हाँ। तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
1: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें?
0: मेरे भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी। अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गमक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
1: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो संप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
0: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है
1: जी, जी।
0: फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है, पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की। जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है। तो नया कुछ मैंने नहीं बनाया।
1: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
0: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दी इस संबंध में
1: जी। बिल्कुल,
0: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर।
1: हाँ जी।
0: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्यक्रम, टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे, तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले

0: जी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को। तो पूछा इतने में करोगी, तो मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतरा। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग बाहर। तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, अरे उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो जो जो हलचल जो हो रहा था, तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी लिए हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे। और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी यही कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, बच्चों का प्रोग्राम। तो छड़ी ले करके वहां वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे। जब आए तो हाँ चल बजा, तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर। तो उसके बाद मैंने 45 मिनट दराग देश बजाया। तो उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका एकलव्य का, तो लोग कहाँ कर। तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया। तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं। तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता है?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं, उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी, पर मैं यही सोचती हूँ हमें ये इतना बड़ा समुद्र है, इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहाँ चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहाँ तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजन के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी दिल्ली से भी आपको पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्मावन आकाशवाणी के 30वें एपिसोड का पुनः प्रसारण सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में आज अपने कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित श्रीमती एन राजम से बातचीत सुनी। यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई के कार्यक्रम।
1: उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत पर बात की जाए तो 1995 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से उन्होंने

1998 में रामगोपाल वर्मा की ही एक फिल्म सत्या में शेफाली ने भीकू महात्रे की पत्नी प्यारी महात्रे की भूमिका निभाई, जो मनोज बाजपेयी द्वारा निभाई गई एक माफिया सरगना की पत्नी थी। इस फिल्म में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला। होई होई।

फिल्म सत्या में अपने शानदार काम के बावजूद शेफाली शाह को उतनी फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले जितनी उन्हें उम्मीद थी। विपुल शाह द्वारा बनाई गई गुजराती फिल्म दरिया छोरू में कास्ट किया गया। विपुल शाह की इस फिल्म के लिए शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2000 में निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा की फिल्म आई मोहब्बतें। इस रोमांटिक फिल्म में शेफाली को एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका मिली।

इसके ठीक एक साल बाद यानी 2001 में उन्हें मीरा नायर की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मानसून वेडिंग में लिया गया। इस फिल्म में शेफाली ने रिया वर्मा की भूमिका निभाई। ये फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म मानी गई। रिया वर्मा की भूमिका में शेफाली वास्तविक पात्रों में से एक थी। उन्होंने बचपन में बहुत दर्द का अनुभव किया था, जिसके कारण रिया वर्मा रिश्ता नहीं बना सकी और अविवाहित रहने का फैसला करती हैं। एक ऐसा किरदार शेफाली का था जो सबसे जटिल था। इसे शेफाली ने बखूबी निभाया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली और कई पुरस्कार।

2005 में विपुल शाह के निर्देशन में शेफाली ने पारिवारिक मेलोड्रामा वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में काम किया। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की माँ के रोल में नजर आती हैं। सुमित्रा ठाकुर के रूप में उनकी भूमिका एक सख्त

की थी जो अपने पति को अपने गैर जिम्मेदार बेटे को अनुशासित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर का नामांकन मिला। अभिनय के वक्त वो अमिताभ बच्चन से आधी उम्र की और अक्षय कुमार से लगभग 4 साल छोटी थी, लेकिन अपने अभिनय के दमखम से उन्होंने भूमिका में जान डाल दी।

निर्देशक फिरोज अब्बास खान की फिल्म गांधी माय फादर का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। 2007 में आई इस फिल्म में दर्शन जरीवाला और अक्षय खन्ना के साथ कस्तूरबा की भूमिका में शेफाली शाह नजर आती हैं। ये फिल्म महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली ने कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई, जो अपने पति महात्मा गांधी और बेटे हरिलाल के बीच आजीवन संघर्ष से त्रस्त हैं। इस फिल्म में उनकी भूमिका ज्यादा आंतरिक है, क्योंकि वो चुपचाप सब कुछ देखती हैं कि हरिलाल क्या कर रहा है। उन्होंने अपने दो अहम दृश्यों में बेहतरीन काम किया, जिसमें वे गांधी पर हरिलाल को छात्रवृत्ति न देने के लिए भड़कती हैं, और जहां वे धर्म परिवर्तन के बाद हरिलाल से भिड़ जाती हैं। कस्तूरबा के रूप में उनका अभिनय शानदार नजर आता है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और 2008 में जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।

2007 में ही फिल्म द लास्ट लियर में शेफाली ने अमिताभ बच्चन के साथ परेशान और चिड़चिड़ी स्वभाव वाली और लिव इन पार्टनर की भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे वे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म को सराहना के साथ ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम दिया गया और शेफाली शाह ने सहायक अभिनेत्री का खिताब भी जीता। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋतुपर्णो घोष।

सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शेफाली ने रीमा माथुर की भूमिका निभाई। 2008 में आई इस फिल्म में शेफाली एक बंगाली कार्यकर्ता और एक उर्दू प्रोफेसर अनिल कपूर की पत्नी के अहम रोल में नजर आती है।

2011 में उन्होंने विपुल शाह के प्रोडक्शन में कुछ लव जैसा फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई, जो जेल से भाग रहे एक अपराधी राहुल बोस के साथ एक रोमांटिक दिन बिताती है। कहते हैं अपने इस रोल को समझने के लिए शेफाली ने ठाणे जेल का दौरा भी किया और अपने चरित्र को समझने के लिए कैदियों से बात भी की।

साल की अनुपस्थिति के बाद शेफाली शाह ने मोनाली ठाकुर के साथ नागेश कुकनूर की सामाजिक समस्या पर बनी फिल्म लक्ष्मी में काम किया। इस फिल्म में शेफाली शाह ने एक वैश्यालय की मालकिन ज्योति की भूमिका अदा की है। 2014 में आई ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी। दिल धड़कने दो, जी हाँ, 2015 में निर्देशिका जोया अख्तर की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। इस फिल्म में शेफाली अनिल कपूर की पत्नी के रोल में नजर आई। फिल्म के अन्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह हैं। इस फिल्म में उनके प्रभावी अभिनय के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन उन्हें मिला।

करण मल्होत्रा की अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा वॉरियर के रीमेक में उन्हें एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके चरित्र मारिया फर्नांडिस को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने व्याभिचारी पति के विवाह के बाद हुए अवैध बच्चे को स्वीकार करती है। शेफाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में एक ऐसी सादगी लाती हैं जो मुख्य धारा के सिनेमा में शायद ही कभी देखी जाती है। फिल्म जूस नीरज घायवान द्वारा 2017 में आई एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली की निगाहें शब्दों से कहीं अधिक बयां करती है और उनका अभिनय लाजवाब नजर आता है।

वंस अगेन रोमांटिक फिल्म का जिक्र भी यहाँ करना बहुत जरूरी है। 2018 में आई इस फिल्म को कमल सेठी ने लिखा और निर्देशित किया। शेफाली शाह और नीरज का भी अभिनीत ये फिल्म दो मध्यम वर्गीय आयु वर्ग के लोगों की कहानी है। इस फिल्म में काम करने के बाद शेफाली ने कहा कि वो लंबे समय से इस तरह की फिल्म का इंतजार कर रही थी। शेफाली इन सभी फिल्मों के अलावा ब्रदर्स, द जंगल बुक, कमांडो 2 और डॉक्टर जी जैसी फिल्मों के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं।

शेफाली शाह ने इन सभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया हो, लेकिन ये स्टारडम तब और बढ़ा जब उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा। जी हाँ, शेफाली शाह ने साल 2019 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से अपनी प्रतिभा की एक अलग ही मिसाल पेश की। 2023 में उन्हें दिल्ली क्राइम में उनके अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस सीरीज में उनकी प्रतिभा जो दर्शकों के सामने आई उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। इस वेब शो में शेफाली ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया, जिन्हें दिल्ली में एक क्रूर सामूहिक बलात्कार की जाँच करने का काम सौंपा जाता है।

ब्लैक कॉमेडी डार्लिंग्स में शेफाली और आलिया भट्ट माँ और बेटी के रूप में अभिनय करती हैं। इस फिल्म को जसमीत के रीन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है जिसकी पटकथा परवेज शेख ने लिखी। फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म को कई अवार्ड्स मिले। शेफाली ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब जीता।

2022 में आई ह्यूमन में शेफाली ने डॉक्टर गौरीनाथ की भूमिका निभाई। विपुल शाह द्वारा निर्देशित ये शो दवा कंपनियों और बड़े निजी अस्पतालों के बीच सांठगांठ की पड़ताल करता है। वहीं सोशल थ्रिलर फिल्म जलसा में उन्होंने विद्या बालन के साथ अभिनय किया। वे इसमें रुखसाना नाम की महिला का किरदार निभाती नजर आती हैं, जिसकी बेटी एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें मेलबर्न के वार्षिक भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला।

अविनाश अरुण द्वारा सहलिखित और निर्देशित थ्री ऑफ अस 2023 की फिल्म है। इसमें शेफाली ने शैलजा देसाई की भूमिका निभाई है, जिसे डिमेंशिया है और वो अपने बचपन को याद करने के लिए यात्रा पर निकलती हैं और अपने दर्दनाक अतीत का सामना करती हैं। स्वानंद किरकिरे इस फिल्म में उनके पति और जयदीप अहलावत बचपन के दोस्त की भूमिका में हैं। इससे पहले 2020 में शेफाली शाह ने दो स्व अभिनीत कोविड-19 आधारित लघु फिल्मों समडे और हैप्पी बर्थडे मम्मी जी में लेखन और निर्देशन भी किया। 2025 में निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म हिसाब, इस फिल्म में शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

0: शेफाली शाह को अपने बेजोड़ अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार शामिल हैं। सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो भूमिकाएं निभाती है वे उस फिल्म का मुख्य किरदार होती हैं और वो अपनी भूमिकाओं में खामोशी को ढूंढती हैं। शेफाली अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगी और फिल्मों में यूं काम करूंगी। लंबे वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पूरी तरह से अभिनय करूंगी, ये बस होता गया और जो भी किरदार मैंने निभाए वो बहुत मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं। तो ये था अभिनेत्री शेफाली शाह पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। आलेख, शोध और स्वर मंदाकिनी जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियां थी। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर दी।

राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्मों रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं, और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं, या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़ककर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था, वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहां तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपए की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपए नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जाए यहां से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसटने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगें और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती, वहां के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहां से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसके हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो ये है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।

थोड़ी देर बाद एल्यूमिनियम के कटोरे में एक रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहाँ क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के के कटोरे को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था। उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले

0: गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी के जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम?
1: मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं।
0: लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई?
1: एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है।
0: तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा।
1: मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूँ।

पर तुम मरना क्यों चाहती हो? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें ये पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नजर संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है,

मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूँ। बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूँ। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूँ, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे, उनकी हार होगी तुम्हारी जीत होगी और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

चंद पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नज़र अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ा कर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी, बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।

संत बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूं? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है। मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।

मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरे बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूंगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने

का ऐलान किया था और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल हैं। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें, कोशिश जरूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती हैं जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आएं और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है। उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए, लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

गीतों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
3: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
2: सखी सहेली?
3: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
2: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
4: सखी सहेली।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन।

कार्यक्रम का आगाज हमने किया फिल्म गमन की इस गजल के साथ। गायिका थी छाया गांगुली। इसे लिखा था मखदूम मोहिउद्दीन साहब ने और धुन बनाई थी जयदेव ने। जगजीत कौर की आवाज में हम आपको फिल्म बाजार की ये रचना सुनवा रहे हैं। मिर्जा शौक की रचना है और खयाम साहब की धुन।

जगजीत कौर को अभी आपने सुना फिल्म बाजार में। और लीजिए अब सुनिए कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की रचना, आवाज चित्रा सिंह की है और फिल्म का नाम है साथ साथ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म गजल का ये गीत सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और धुन बनाई है मदन मोहन ने।

ग्यावस्ती आशा भोसले की और फिल्म का नाम था उमराव जान। इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आवाज लता मंगेशकर की फिल्म का नाम है लेकिन। गीत को गुलजार साहब ने लिखा है और धुन बनाई है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो।

मैटिनी शो के इस ताजा तरीन अंक में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आज के इस अंक को लेकर दोस्तों, फिल्मी दुनिया में फिल्मी पर्दे पर फिल्मी गीतकारों ने हमारे आभूषणों पर बहुत सारे गीत लिखे और नायिकाओं को वो आभूषण पहनाकर हमें बहुत ही आनंदित किया है ना। तो ऐसा ही एक आभूषण है झुमका। जी हाँ, झुमका, जिस पर हमारे फिल्मी यानी यूं कहीं फिल्मकारों ने और फिल्मी गीतकारों ने बहुत सारे गीत लिखे और पर्दे पर फिल्माए। तो आज उन्हीं गीतों को लेकर हमने इस मैटिनी शो को आपके लिए चुना है। जी हाँ, झुमका। झुमका शब्द आते ही कितने सारे गीत आपके कानों में गूंज गए होंगे ना। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, और न जाने ऐसे कितने सारे गीत। जी हाँ, तो झुमका एक आभूषण नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सौंदर्य का प्रतीक भी है। कानों में झूमते हुए और छन छन की आवाज करते हुए ये सुंदर झुमके हर पहनावे की शोभा बढ़ा देते हैं। तो आज मैटिनी शो में ये झुमके कहर ढाने वाले हैं।

जी हाँ, मिला है किसी का झुमका। तो ये झुमका मिला था फिल्म परख में और आवाज लता मंगेशकर ने दी थी, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीत दिया था सलील चौधरी ने। अब जब बात झुमकों की चली है तो ये तय है कि आपने एक झुमके के बारे में जरूर सोचा है। वही गाना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो जाहिर है जब झुमका बरेली के बाजार में गिरा होगा तो फिर उस बाजार में जाकर हम झुमका जरूर खरीदेंगे। तो आप भी बरेली के बाजारों से झुमका खरीदने की अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ कई खास डिजाइन के झुमके हमें मिल जाते हैं। अगर हम फिल्मी इतिहास की बात करें तो झुमका गिरा रे गाने ने बरेली के झुमकों को दुनिया भर में मशहूर कर दिया था, है ना। और ये गाना 1966 की फिल्म थी मेरा साया, अभिनेत्री साधना पर फिल्माया गया ये गीत था। और सच पूछा जाए तो ये झुमके आमतौर पर जो बरेली के झुमके हैं, काफ़ी बारीक नक्काशी और रंग बिरंगी मीनाकारी मोती और कुंदन के काम के साथ पेश किए जाते हैं। और यहाँ के झुमके देखने में जितने बड़े, भारी और आकर्षक होते हैं ना, असल में उनका वजन बहुत हल्का होता है। और कारीगर इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि भारी डिजाइन वाले झुमके भी कानों में चुभे बिना आराम से पहने जा सके। तो चलिए खरीदते हैं ये बरेली का झुमका।

0: फिर क्या हुआ?
1: गया फिर झुमका गिरा दे हम दोनों के इस प्यार में, गिरा दे हम दोनों के इस प्यार में।
2: आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा। और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है, उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को

लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है। यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी भूलता हूं, उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है। रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लंबर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लंबर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी

पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं, शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। IITs को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो Tier 2 और Tier 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है।

किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, और जनशक्ति ही तो राष्ट्रशक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही हैं। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे तो यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए देश सेवा के

0: अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जालंधर

0: स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करके धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए गीतकार कैफी आजमी के कुछ गीत चुने हैं।

यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था हंसते जख्म। गीतकार कैफी आजमी थे और संगीतकार थे मदन मोहन।

ये स्वर लता मंगेशकर का फिल्म का नाम है आखिरी खत। कैफी आजमी के बोलों को संगीत से सजाया है खयाम साहब ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नौनिहाल से लिया है। गीतकार कैफी आजमी के बोलों को संगीत में ढाला है मदन मोहन ने।

0: यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था नौनिहाल।
1: अरे सुनो।
2: हाँ?
1: सावधान रहना।
2: क्यों, क्या हुआ? कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
1: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
2: अच्छा?
1: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
2: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ! आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
1: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
2: तो?
1: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
2: अच्छा,
1: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
2: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
1: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर

हेमंत कुमार को अभी आपने सुना फिल्म कोहरा में। कार्यक्रम का अगला गीत कमल मित्रा के संगीत निर्देशन में आशा भोंसले और हेमंत कुमार का गाया हुआ है। फिल्म का नाम यहूदी की बेटी।

कार्यक्रम में आप सुनिए खय्याम साहब का संगीत, कैफी आजमी की बोल, सुलक्षणा पंडित की आवाज और फिल्म का नाम संकल्प।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज जगजीत सिंह की। फिल्म का नाम है अर्थ।

फिल्म अर्थ की गजल अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में। हेमंत कुमार का संगीत, कैफी आजमी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम अनुपमा।

लीजिए, कार्यक्रम में आप सुनिए खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। ये फिल्म है शोला और शबनम।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था शोला और शबनम। लीजिए अब सुनिए मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है हकीकत।

0: अभी आप विविध सेवा मुंबई के कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है, FM 103.2 MHz पर। श्रोताओ, मैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत बनाने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी पर है और उन्हें इस संकल्प के लिए भागीदारी निभानी होगी। देश में 47 स्थानों पर आयोजित 19वें रोजगार मेले में आज प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को वर्चुअल माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने अपनी हाल की 5 देशों की यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर के देश भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे, साथ साथ ग्लोबल एक्सपोज।
1: प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में रोजगार मेले आयोजित किए गए। इनमें 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में शिरकत की। इस मौके पर श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे में 1,60,000 से अधिक भर्तियों पर काम चल रहा है, जिसके लिए 4 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि पहले भर्ती प्रक्रियाएं वर्षों तक चलती थी, किंतु अब वार्षिक कैलेंडर व्यवस्था लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं को तय समय में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। रेल मंत्री ने युवाओं से राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से काम करने का आह्वान किया।
3: आप जब भी कोई फैसला लें, तब उस कागज को कागज न मान के, उस फाइल को फाइल न मान के, उसके पीछे लाइफ क्या है, उसके पीछे व्यक्ति कौन है, उसके पीछे किसका जीवन जुड़ा है, उसके पीछे किस परिवार की उम्मीदें जुड़ी है, वो जरूर ध्यान में रखना। दूसरा, जो भी आप फैसला करो, ये याद रखना, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। हमें हर कर्तव्य को देश के लिए ही करना है और यही वो पीढ़ी है जो विकसित।
1: इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति स्थिर है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने से अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले कुछ दुकानों तक ही सीमित हैं।

0: पहली मई से 22 मई के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। पेट्रोल बिक्री में 14%, वहीं डीजल बिक्री में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। इन पर प्रति लीटर करीब 91 पैसे बढ़ाए गए हैं। पिछले 10 दिन में तेल के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। हाल के दिनों में इन पर अब तक लगभग 5 रुपये प्रति लीटर बढ़ गए हैं। रेलवे बोर्ड ने कोटा में एक नए इलेक्ट्रिक लोको शेड खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे बिजली के इंजनों के रखरखाव और दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर यात्री गाड़ियों और मालगाड़ियों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। कोटा में इस लोको शेड के बनने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। अजमेर में आधुनिक कन्वेंशन सेंटर और सभागार बनाया जाएगा। इस पर 28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने आज इसका शिलान्यास किया। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत बजरी खनन भंडारण और परिवहन के खिलाफ चलाई जा रही कार्रवाई में 392 से अधिक मामले दर्ज किए। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पिछले महीने जारी निर्देशों की पालना में इस अभियान को और अधिक व्यापक बनाया गया है। धौलपुर और करौली जिला पुलिस की ओर से चंबल नदी के प्रभावित तटीय क्षेत्रों में रेत कारोबारियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और अब बात क्रिकेट की। आईपीएल में आज शाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। अगले कार्यक्रमों के लिए आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई के कार्यक्रमों की ओर।

लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था तूफान में प्यार कहा। हमारे श्रोता आज बहुत खुश हैं और लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी, आपने विविध भारती के सुरीले सफर में आज की इबारत को कुछ स्पष्ट करके आसान कर दिया है। जैसे एक ही संगीतकार और दो महिला गायिकाएं, बस अब शब्दों के गानों पर दिमाग लगाते हैं और बजने वाले गानों का निर्णय हो ही गया समझो।

वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने इबारत की जगह खुद गीतों के शब्द लिख दिए और उसमें ये भी लिख दिया कि सभी गीतों के संगीतकार एक ही हैं और ये सभी सभी गीत दो महिला गायकों के स्वर में होंगे, तो वैसे बहुत मुश्किल तो हो गया है। इबारत में शब्दों को ढूंढकर हम कई गीत सही लिख देते थे, लेकिन आज की परीक्षा मुझे लग रहा है और कठिन है। मैं दावे के साथ लिख रहा हूँ कि बहुत ही कम श्रोता ढूंढ पाएंगे, बस एक शब्द गोरी पे दो महिला गायक ही ढूंढ पाया हूँ। बाकी गीतों पर नजर दौड़ाई तो संगीतकार भी अलग अलग दिमाग में आ रहे हैं। उफ कर दिया दिमाग का दही। अरे इतना दिमाग को खराब करने की जरूरत थोड़ी है, ये कार्यक्रम तो मनोरंजन का कार्यक्रम है, मनोरंजक कार्यक्रम है आपके लिए, है ना। इसमें हमें अपने दिल और दिमाग को बहुत ही शांत और सुकून से भरा रखना है, तभी तो ये सफर सुरीला बन पाएगा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने इबारत पर से इबारत न लिखकर सभी श्रोताओं की इच्छाओं को साकार कर दिया है, खूब अच्छा लगा, जो बात हम चाहते थे वही हो गई। आज मैं गीत सूची तैयार न करते हुए सिर्फ जो गीत बजने वाले हैं उसे सुनने का लुत्फ उठाऊंगा, क्योंकि जो गीत सुनवाए जाने वाले हैं उसके संगीतकार चित्रगुप्त होंगे, जो मेरे पसंदीदा संगीतकारों में से एक है। बचपन से इनके रचे गीत सुनकर मेरे दिल की धड़कन रंग लाती है, आपके दिल की धड़कन भी रंग लाती होगी। ये विविध भारती के दायरे, ये दोपहर का समा, ऐसे में क्यों न जुड़ जाए हम वहां, मिलते हैं दोपहर एक बजे। क्या बात है, हमारे जो श्रोता हैं वो गीतकार भी बन गए हैं लगता है, और शायर भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ श्रोताओं के और हम पढ़ेंगे विचार, जहां उन्होंने कुछ गानों को बिल्कुल सही रूप से समझा है। ये गाना है फिल्म परदेसी का, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की ही हैं, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार वही चित्रगुप्त साहब।

जी हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने अपने विचार लिखे हैं और खुश भी हैं कि आज थोड़ी सी तब्दीली उन्हें अच्छी लगी है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के संगीतकार चित्रगुप्त हैं, उन्होंने अपनी हर एक फिल्म को अद्वितीय ढंग से मेलोडी प्रदान की थी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज हम आपके साथ रहेंगे, अभी हमारा मन कुछ उदास सा है, क्यों भाई? तो लिखने का मन नहीं है, पर हाँ, आज के पेपर को सरल कहें या कठिन समझ में नहीं आ रहा है। ये जरूर है कि यदि हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो पेपर सरल हो ही जाएगा, और अगर साथ में आप हैं तो इतने काबिल श्रोताओं का तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। वैसे भी हम सब विविध भारती की पाठशाला में रोज इतना कुछ पढ़ते हैं कि सवाल के जवाब न भी दे पाए ऐसा हो नहीं सकता, जरूर देंगे आपके प्रश्नों के उत्तर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये जो रोचक परिवर्तन किया गया है, इससे श्रोताओं को आसानी हुई है और उनकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी। अब किसी को एग्जाम का अनसीन पैसेज हल नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, दो गायिकाएं तो लता मंगेशकर और आशा भोसले ही हैं, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी शंकर जयकिशन में से एक लग रहे हैं, बाकी श्रोता अपना दिमाग लगाएंगे। इस परिवर्तन से मैं आज खुश हुआ हूँ और विविध भारती का आभारी हूँ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज एकदम अनोखा, निराला और अभिनव प्रयास किया है आपने, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। कार्यक्रम में विविधता ही उसकी पहचान बनती है, जो बरबस श्रोताओं को खींच लाती है और श्रोतागण भी आनंद पूर्वक हिस्सा लेते हैं। इस कार्यक्रम में हमेशा विविध भारती अव्वल रही है, याददाश्त और दिमाग की कवायद सभी की शुरू हो चुकी होगी। देखें किन किन सौभाग्यशालियों के हाथ बटेर लगती है। दिलचस्प कार्यक्रम का बेकरारी से इंतजार रहेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने संगीतकार चित्रगुप्त के संगीत से सजे लग रहे हैं। तेरी आंखों में प्यार मैंने देख लिया, गौरी तू लाख छुपा, आपने कई गानों का यहाँ जिक्र किया है, तो सुनिएगा आज की गीतमाला आपकी गीतमाला से मिलती है कि नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर लगता है बहुत आसान है पर बहुत कठिन है। मुझे ज्यादातर गानों के बारे में पता चल गया। एक बात बता दूं, सभी गानों के संगीतकार चित्रगुप्त हैं, अब गाने और फिल्मों के नाम भी इन्होंने बताए हैं, तो आप देखिएगा आपकी जो ये प्लेलिस्ट है उससे हमारी प्लेलिस्ट कितना मिल खाती है, बताइएगा और लिखिएगा, हमें इंतजार है, ठीक है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज थोड़ा अलग सा दिमाग की परीक्षा लेने वाला सुरीला सफर है। ये अंदाज है कि आज चित्रगुप्त जी के संगीत निर्देशन से हमारा सुरीला सफर तय होने वाला है। आपने भी कुछ गीतों के नाम लिखे हैं

और उनका जिक्र किया है तो पता लगाइए आज हमारी पसंद क्या आपकी पसंद से मिलती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस भीषण भरी गर्मी में विविध भारती के नीचे मधुर गीतों के जरिए शीतलता मिलेगी और ये सफर सुहाना होगा। बिल्कुल सुहाना होगा ये सफर इस गीत के साथ। और इस गीत के बाद मैं आपसे दो सवाल पूछूंगी जिसका उत्तर भी आपको तैयार रखना है। उषा मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है नई जिंदगी। प्रेम धवन की बोल और चित्रगुप्त का संगीत।

तो ये गीत आपको कैसा लगा? सुंदर गीत लगा ना, बहुत ही खूबसूरत गीत था। और हमारे श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं, आप लिखते हैं कि संगीत का ये सफर वाकई बहुत सुरीला और दिलचस्प है। आपने जो सुराग दिए हैं, एक ही संगीतकार, दो महिला गायिकाएं और ये 12 विशिष्ट शब्द, ये सीधे तौर पर भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम यानी गोल्डन एरा की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन शब्दों और शर्तों को जोड़ने पर जो नाम सबसे ऊपर उभरता है वो है संगीतकार ओपी नैयर साहब का या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। जी नहीं, आज हम आपको एक ही संगीतकार जो कि चित्रगुप्त साहब हैं, उन्हीं से जुड़े गीत सुनवा रहे हैं। यानी चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में आज जिन दो महिला गायिकाओं ने जुगलबंदी की वो गीत हमने आपके लिए चुने हैं। फिर भी आपने प्रयास किया, सबसे बड़ी बात यह है। आप लिखते हैं कि आशा भोंसले और गीता दत्त की जोड़ियां हैं, इस तरह के बहुत सारे सदाबहार गाने हैं जिनका अंदाजा लगाया जा सकता है। और आपने कुछ गानों का जिक्र किया भी है। देखिए आपके गाने हमारे गानों से कितना मेल खा रहे हैं, गौर कीजिएगा और हमें लिखिएगा जरूर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चित्रगुप्त सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वे उस सुकून, ठहराव और मेलोडी का नाम है जो आज भी रेडियो पर बजने पर हमें एक खुशनुमा जमाने में वापस ले जाते हैं। महान संगीतकार चित्रगुप्त भारतीय सिनेमा के वे अमर गायक शिल्पी थे जिन्होंने बिना किसी भारी भरकम वाद्य यंत्रों के शोर के अपनी सादगी और दिल को छू लेने वाली धुनों से संगीत को नवाजा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार तो चित्रगुप्त हैं और प्रत्येक गाना दो फीमेल सिंगर्स का गाया हुआ है। आपने भी कुछ गाने लिखे हैं? बिल्कुल, आपके गाने हमारे कुछ गानों से बिल्कुल मेल खा रहे हैं। देखिए कौन कौन से गाने हैं, बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती के सुरीले सफर में इबारत से कुछ चीजें स्पष्ट करके आसान किया है आपने, जैसे एक ही संगीतकार और दो महिला गायिकाएं, बस अब शब्दों के गानों पर दिमाग लगाते हैं

और गानों का निर्णय हो ही गया, समझो। अरे वाह, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, सरल नहीं कठिन है आज की गीतमाला, आपके दो प्रश्नों से ज्यादा भी कठिन है। अरे अभी तो दो सवाल हमारे आए ही नहीं है, कैसे कठिन हो सकती है। आज तो हमने आपको शब्द दे दिए थे और साथ ही बता दिया था कि एक ही संगीतकार पर केंद्रित है ये शब्द और दो गायिकाओं पर, मतलब दो जो जुगलबंदी है महिला गायिकाओं की जुगलबंदी होगी। कितना सारा तो बता दिया था आपको और हमारे कई श्रोताओं ने पकड़ भी लिया है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज का सुरीला सफर ने दिमागी तापमात्रा बढ़ा दी है, संभावित गानों का शब्द अनुरूप कयास लगाना कष्टप्रद है, इन्हें ढूंढने में श्रोता बंधुओं के कमेंट्स कारगर सिद्ध हो रहे हैं। आज श्रोता बंधुओं के लिस्ट के अनुसार ही हम भी चलने वाले हैं। चलिए तो आज के दो सवाल, वैसे दो सवाल नहीं है लेकिन इन्हीं सुरीले सफर से जुड़े ये सवाल हैं। चूंकि आज आप सुन रहे हैं कुछ गीत, तो इनसे इतर आपसे कुछ पूछ लिया जाए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसे मुझे एक गीत बहुत पसंद है, जब जब तुम्हें भुलाया तुम बहुत याद आए, है ना ये गीत, जहां आरा फिल्म का लता मंगेशकर और आशा भोंसले की जुगलबंदी है। तो इस तरह के और भी गीत जो हैं महिला जुगलबंदी वाले गीत, वो आपको कौन कौन से गीत पसंद हैं या याद हैं उसका जिक्र जरूर करें। और एक सवाल हमारा ये है कि संगीतकारों के बारे में बताइए, ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो गीत आपको पसंद हैं। जैसे कि आज हमने चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जुगलबंदी गीत लिए हैं। ऐसे बहुत सारे संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे गीत गवाए हैं। आप बताइए कौन से ऐसे संगीतकार हैं जो आपको पसंद है या उनके गाने आपको याद हैं। आगे बढ़ते हैं सुरीले सफर के इस गीत की ओर। चित्रगुप्त साहब का संगीत, पंडित भरत व्यास के बोल हैं, सुमन कल्याणपुर और कमल बारूट की आवाजें हैं इस बार। फिल्म का नाम है महाभारत।

आज की सवाल एक बार फिर से दोहराए देते हैं। पहला सवाल हम आपसे ये कर रहे थे कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने अपनी पसंद का गीत आपको बताया, फिल्म जहां आरा का लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाए वो गीत जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए, है ना। ठीक उसी प्रकार और भी बहुत सारे गीत हैं, तो आपको कौन सा गीत पसंद है या बताइए कौन कौन से गाने पसंद है। और एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं इसका जवाब कि संगीतकारों में बताइए ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो आपको याद हैं वो गाने, या वो गाने आपको बहुत पसंद हैं। जैसे आज हम चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जो महिला जुगलबंदी वाले गीत लेकर आए हैं, ठीक उसी प्रकार और भी संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे गीतों की रचना की है। बताइए वो कौन कौन से गीत हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि 1 बजे जब सुरीला सफर शुरू होगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और श्रोता दिमाग पर कम जोर डाले, सुरीले गीतों का आनंद लें और गीत भी पहले से अधिक बजेंगे। धन्यवाद विविध भारती, धन्यवाद मुझे। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं लगाना है कि हमें बुरा लगे या हमें गुस्सा आ जाए या हम तनावग्रस्त हो जाए। बिल्कुल मनोरंजक कार्यक्रम है ये, आपके मनोरंजन के लिए इसका आनंद उठाइए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये बहुत अच्छा नया प्रयास है, शब्द आपने दे दिया और हिंट भी दे दिया है, तो कोशिश भी हमारी बनी रहेगी। और वही आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि लगता है आज आपने यू टर्न मार दिया है, सुरीला सफर का ये पैटर्न भी अच्छा है, अब फिर परीक्षा होगी जानकारी बता पाएंगे, चलो चले सुरीले सफर पर मंदाकिनी जी के साथ। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गेंद आपने डाली है वो गुगली जैसी लग रही है, लेकिन यॉर्कर भी हो सकती है या फिर वाइड हो सकती है, बाहर निकल जाएगी, ज्यादातर बल्लेबाज असमंजस में है। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, आज तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आप लोग, देखिए ना फटाफट हमारे कुछ श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही गाने चुने हैं। अब हमारे पास वक्त नहीं होता उन सभी गानों का जिक्र यहाँ करने का, वरना आपको बताते कि आज बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने सही चुने हैं। एक श्रोता ने लिखा है आज शायद यही गाने बज पाने वाले हैं, बेहद अच्छा, आज शायद यही गाने बजेंगे, आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, बेहद हिम्मत वाला काम है, अगर ऐसे गाने शामिल होंगे तो कार्यक्रम की रोचकता बनी रहेगी और कुछ हर रोज बजने वाले गानों से अलग सुन सकेंगे, बेहद नायाब चयन है, आपने हमें धन्यवाद दिया है और बिल्कुल आपके कुछ गीत तो हमारे प्लेलिस्ट से बिल्कुल मेल खा रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको, आप सभी श्रोताओं को जो आज की जो सुरीला सफर की ये प्लेलिस्ट है उसमें आप शामिल हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार चित्रगुप्त मखमली धुनों और सादगी के मसीहा थे, भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में जहां एक तरफ शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, एसडी बर्मन जैसे दिग्गजों का दबदबा था, वहीं एक ऐसा संगीतकार भी था जिसने बिना किसी तामझाम के बेहद सादगी और गहराई से भरपूर संगीत दिया, उनका नाम था चित्रगुप्त। चित्रगुप्त श्रीवास्तव हिंदी सिनेमा के उन अनमोल रत्नों में से एक हैं जिनके गीतों की मिठास आज भी कानों में मिश्री घोल देती है। बिल्कुल सही कहा, और वही मिश्री घोलने वाले गीत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगला गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है, इस बार आवाजें हैं गीता दत्त और उषा मंगेशकर की, और ये फिल्म है माँ बाप।

जी कितना खूबसूरत गीत था, है ना। अच्छा, इस गीत को आपने पहले कभी सुना था बताइएगा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वे आज तो भैया इस भरी गर्मी में थोड़ी सी भी यदि ठंडाई की बात करूं तो वो है विविध भारती, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में अच्छा मैं आई हूं तो गानों की बौछार होगी। गानों की बौछार तो हमेशा ही होती है और मन आनंदित होगा। सचमुच ही कल की गीतों भरी कहानी सुनी जिसमें एक ऐसा प्रसंग आया जहां मुझे रोना ही आ गया था। धन्य विविध भारती जो ऐसे प्रसंग लाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहला गाना एकदम अनसुना सा था, यहाँ तक कि सिनेमा का भी नाम नहीं सुना था। तूफान में प्यार कहां, सिर्फ विविध भारती के पास ही ऐसा कलेक्शन हो सकता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम सबसे अलग होता है, इस महारथी आपको ये महारत आपको हासिल है। अच्छा, मुझे बहुत शानदार सुंदर, क्योंकि सुने कौन सा संगीत, गीतों से हम भीषण गर्मी में ठंडक महसूस कर रहे हैं, मस्ती और आनंद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं आपको मुझे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार और सभी मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज परीक्षा में पेपर अनुमान से ज्यादा आसान आ जाता है तो खुशी के मारे जो याद किया था वो भी भूल जाते हैं। दूसरे आसान पेपर की मार्किंग भी हार्ड होती है। श्रोताओं में बहुत से शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, वे सब मेरी बात का समर्थन करेंगे। अब नंबर देना आपके हाथ में है, देखें आप कितना लिबरल रहती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने आज सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सुरीला सफर की पोस्ट का इंतजार किया, फिर मैं अपनी नौकरी के लिए निकल गया। 10:30 बजे नौकरी पर पहुंचकर कुछ घंटे काम किया, उसके बाद 12 बजे मैंने सुरीला सफर की देखी, फिर श्रोता मित्रों की पोस्ट देखी, तब मालूम पड़ा आज सुरीला सफर महान और अमर संगीतकार चित्रगुप्त जी पर केंद्रित है, साथ में 2 गायिकाओं पर भी। दुकान पर पहुंचकर गीतों को, शब्दों को पढ़ा, मेरे लिए समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। वहीं एक श्रोता ने हमारे इस सवाल का जवाब देते हुए बहुत सारे गीत लिखे हैं, गोरे गोरे और बांके छोरे, लता मंगेशकर और समाधि फिल्म का आपने ये गाना लिखा है, बिल्कुल सही कहा आपने, और साथ में प्रेमलता है इनके, जिसका जिक्र आपने नहीं किया है। वहीं एक श्रोता ने दूसरे गाने लिखे हैं, लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज में जो जुगलबंदी वाला गीत है, लिखते हैं ये गाना मेरा फेवरेट है, फिल्म उत्सव का, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा और मेरे महबूब में क्या नहीं अपलम चपलम, ये सभी गीत मुझे बेहद अच्छे लगते हैं। बहुत सही आपने गीतों का चयन किया है। जी हाँ, तो हमारे श्रोता बताएं कि कौन से ऐसे गीत हैं जुगलबंदी वाले, महिला जुगलबंदी वाले जो उनको पसंद हैं, उनका जिक्र वो करें, साथ ही उन संगीतकारों के बारे में बताएं जिन्होंने अपने संगीत

स्टेशन में ये महिला जुगलबंदी वाले गीत लिए हैं और संगीतबद्ध किए हैं। जैसे आज हमने चित्रगुप्त साहब को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रेम धवन का लिखा ये गीत सुनते हैं। चित्रगुप्त साहब की संगीत रचना है, सुमन कल्याणपुर और उषा मंगेशकर की आवाजें हैं। ये फिल्म है गेस्ट हाउस।

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है। एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा लता जी और कमल बारोट की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में है। वहीं मन क्यों बहका लता जी और आशा जी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। और काश किसी दीवाने से हमको भी मोहब्बत हो जाए। अच्छा, काश किसी दीवाने को है हमसे भी मोहब्बत हो जाए। आपने से और को का थोड़ा सा अंतर कर दिया है। और ये गीत भी आपको पसंद है, लता मंगेशकर और आशा भोंसले का गाया हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ है। वहीं आप लिखते हैं, तुमको पिया दिल दिया और कजरा मोहब्बत वाला और तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। ये सभी गीत आपको बेहद पसंद है, बहुत सुंदर गीतों का चयन आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिन रात जले अखियां परदेसी, उषा मंगेशकर और आशा भोंसले, ये गीत हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बहुत निराला है और बहुत बढ़िया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपने कमाल की गुगली फेंकी है। अच्छा, आपने हम तो क्लीन बोल्ड हो गए, आज हमारी बत्ती गोल डब्बा गोल है। आप तो बस मधुर

गीतों का रसा स्वादन कराई और हम मधुर गीतों का आनंद लेने वाले हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमें सफर में तो सफर सुरीला कैसे नहीं होगा अगर आप हैं हमारे साथ, तो आज आप आई प्रोग्राम में तो गीतों की बहार आ गई है। आप लिखते हैं कि ओ गोरे बांके छोरे गीत पसंद है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कजरा मोहब्बत वाला, ये सभी गीत हमें बेहद पसंद है जो दो गायिकाओं द्वारा गाए गए हैं। साथ ही आपने लिखा है एक श्रोता ने कि मनभावन के घर गाए जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, लता जी और आशा जी की आवाज में, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी गीतों की चॉइस कितनी बड़ी है, मन बहुत खुश हुआ। अच्छा, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही बढ़िया है, दो फीमेल गायिकाओं के गीत कितने बढ़िया और कितने ताल सुर में परदेसी का गाना सुन के बहुत ही बढ़िया लगा। चित्रगुप्त जी का संगीत बोले तो बहुत मधुर संगीत, क्या कहने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी थीम कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ भी हो हम आपको विविध भारती जरूर सुनेंगे, इस तपतपाती गर्मी में गानों के जरिए ठंड का एहसास हमें थोड़ा तो होगा। आप इतनी शिद्दत और प्यार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, सराहते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। चलिए अगला गीत सुनते हैं, चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में, इसे आर कृष्णा ने लिखा है, इस बार स्वर है गीता दत्त और उषा मंगेशकर के और ये फिल्म है कंगन। हमने शब्द दिया था लिख पढ़, वही है ये गीत।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अभी जो गीत हम सुन रहे थे फिल्म गेस्ट हाउस का सबसे शानदार गाना शीला वाज और अन्य अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। कितनी खूबसूरत और गहरी जानकारी आपने हमें दी है, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि

चाहे मना करे मैं आपकी तारीफ करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि आज यादों की महफिल में मेरे तीन पसंदीदा गाने एक साथ सुनवाए गए। कुछ दिल ने कहा जीत ही लेंगे बाजे हम तुम, और मैं ये सोचकर जा रहा था बिल्कुल ये गाने तो बहुत ही खूबसूरत थे और कैफी आजमी की रचनाएं थी तो पसंद तो होंगी आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पसंदगी के महिला युगल गीत में एक इन्होंने कुछ गानों का जिक्र किया है, सखी रे सुन मोरी पपीहा उस पार। अच्छा, फिल्म मिस मैरी का ये गाना आपको बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिस देश में गंगा बहती है का क्या बात तू मुझे क्या बताइए गाना पसंद है, गर्जत बरसत सावन आयो रे और बरसात की रात फिल्म का जो एक जमाने में उसका अंश संगीत रचना के परिचय धुन में शामिल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मैडम काफी खुश है और काफी हंसमुख लग रही है। अच्छा और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक परिवर्तन से ही कार्यक्रम में श्रोता फ्रेंडली हो गए हैं, आगे गीतों के लिए दिलचस्पी और उत्सुकता बढ़ गई है और आज का ये कार्यक्रम चित्रगुप्त साहब और दो गायिकाओं तक ही सीमित है, इससे हम बड़े खुश हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपलम चपलम और मन भावन के घर जाए गोरी ये गाने बहुत पसंद है हमें। वहीं एक श्रोता ने मन क्यों बहका रे सखी ये गाना पसंद किया है, चुपके कौन आया मेरे अंगना काश किसी दीवाने को और आएगा हमारे गांव कोई आएगा, इन सभी गीतों को पसंद किया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पसंद है मन क्यों बहका रे बहका और हुजूर आला जो इजाजत हो, ये युगल महिला गीत वाले जो स्वर गीत हैं ये हमें बेहद पसंद आते हैं। जी तो आज के सुरीला सफर में हमने आपके सफर को थोड़ा सा आसान कर दिया और आप लगभग हमारे साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत, ये है आशा भोंसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, अनजान के बोल हैं, चित्रगुप्त साहब का संगीत है और ये फिल्म है ज्वाला दहेज की।

जी तो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि मेरे पास करीब 20,000 गानों का संग्रह है और लगातार पुराने गीतों को ढूंढकर संग्रह को मैं और बढ़ा रहा हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ताथैया करके आना मेरे जादूगर, ओ सैया, गीता दत्त, लता मंगेशकर, इकबाल कुरैशी, फिल्म पंचायत का गीत और कौन रंग मुंगवा लता मंगेशकर और सुधा मल्होत्रा का, संगीतकार रोशन साहब और रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, ये गीत इन्हें बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये गीत तो पहली बार सुना है, वैसे मुझे डोला रे डोला फिल्म देवदास का गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वाह वाह, मेरा एक गीत मैच कर गया है, निकला है गोरा गोरा चांदरे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कचरा मोहब्बत वाला आंखियों में ऐसा डाला शमशाद बेगम और आशा भोंसले की गायकी बहुत पसंद है। युगल गायिकाओं में कुछ लोगों ने अपलम चपलम, हंसतावा नूरानी चेहरा, तेरी महफिल में किस्मत आजमाकर, मन क्यों बहकाई सभी गीतों को पसंद है किया है। और वहीं एक श्रोता ने कहा, आपने पूछा कि कौन से युगल गीत पसंद है, फिल्म शिकारी का युगल गीत तुमको पिया दिल दिया, फिल्म पारसमणि का गीत हंसतावा नूरानी चेहरा, उत्सव का गीत मन क्यों बहकारी बह हमें बेहद पसंद आता है। चलिए तो आपकी पसंद को हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी पसंद इतनी लाजवाब है। और अब कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां सुनते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को फिल्म हम मतवाले नौजवान में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, चित्रगुप्त का संगीत।

तो दोस्तों आज का सुरेला सफर यहीं तक, और अब इस सफर से मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: east Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. According to the IMD, heatwave conditions are expected to persist over large parts of northwest, central and eastern India over the next 6 to 7 days. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments, says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned copies, photocopies of answer books for Class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
2: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए।

0: संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
1: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्राप्त

0: गति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
1: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना

0: कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार

0: अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार। आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल के इस विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूँ आपकी दोस्त सुनिधि। दोस्तों, हिंदी और बांग्ला संगीत जगत में कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो सीधे दिल में उतर जाती हैं, जिनकी गायकी में मिठास भी होती है, मासूमियत भी और भावनाओं की गहराई भी। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसी ही मधुर स्वर साधिका की, जिनकी आवाज़ ने 70 और 80 के दशक में संगीत प्रेमियों के दिलों पर अपनी खास छाप छोड़ी। तो आज की हमारी विशेष कलाकार हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी। तो आइए सुन लेते हैं इनसे जुड़ा एक गीत।

1970 का दशक हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम दौर माना जाता है। उस समय लता मंगेशकर, आशा भोसले और किशोर कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के बीच अपनी अलग पहचान बनाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन आरती मुखर्जी ने अपनी विशिष्ट गायकी और कोमल आवाज के दम पर संगीतकारों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उनकी आवाज में एक ऐसा घरेलूपन था, एक ऐसा अपनापन जो सीधे श्रोताओं के दिल तक पहुंचता था। उन्होंने कई बड़े संगीतकारों के साथ काम किया, जिनमें आरडी बर्मन, सलिल चौधरी और हेमंत कुमार प्रमुख हैं। तो आइए अब सुनते हैं उनका एक और बेहद चर्चित गीत।

0: दोस्तों,
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आशा भोसले, शमशाद बेगम और साथी फिल्म का नाम हम पंछी एक डाल के। गीतकार हैं पी एल संतोषी और संगीतकार एन दत्ता।

0: ए मारे कोई किसे को
1: ना कोई खाए मांस किसी का
0: ना कोई पीवे खून किसी का
1: ना कोई रोके सा...

0: हम आएंगे तुमको वहाँ बचाने को।
1: हम आएंगे,
2: हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे।
3: लेकिन सब में था होशियार एक बूढ़ा सा सियार, बोला अपनी दुम फटकार।

लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज और ये फिल्म है मधुमति। शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार सलिल चौधरी।

मधुमति फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत, आवाज आशा भोंसले की, शब्द हसरत जयपुरी के हैं और धुन ओपी नैयर की है।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की रचना सुनिए। गायिकाएं हैं आशा भोसले और गीता दत्त, और ये फिल्म है अदालत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। हेमंत कुमार का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर हैं। फिल्म का नाम है चंपाकली।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मनचाहे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी तो शुरू करते हैं आज का ये सफर आपके मनपसंद गीतों का। तो पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं ये। कहां से लिखा है आपने? आपने लिखा है गांव जाखोद राजस्थान से, पूजा खटक, बिमला देवी, शंभुदयाल खटक ने। और इसी ये खत हमें मिला है कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से, योगेश गुजराती, रेखा गुजराती। और ये खत हमें मिला है बीकानेर से और राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान के थे श्रोता जिनका नाम हमने पढ़ दिया है। आप है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनगर, रेणु जीनगर, अजय, प्रिंस और कुलदीप। आप सभी सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है जीने की राह।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनामिका से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। इस गीत को सुनने की आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। आप हैं कोल्हापुर से सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे, श्रमेण वाघमारे। अच्छा, आपने चंदन नगर सातारा से ये खत लिखा है। और उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर, चेतन शामतकर ने खत लिखा है हमें। आप हैं पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और अलीना मंसूरी। नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद। और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मास्टर मनीष। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनामिका में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत, आवाज किशोर कुमार की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडूसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रदीप कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: किशोर कुमार के गाए फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: आप सब यथास्थान विराजे, कार्यवाही आरंभ की जाए।
1: जो आज्ञा महाराज।
2: महाराणा की जय। राणा हाड़ा जी का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है।
0: आने दिया जाए।
3: महाराणा की जय।
4: राणा हाड़ा जी ने ये पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
0: मंत्री जी।
1: अन्नदाता,
0: पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए।
1: अन्नदाता, राणा हाड़ा जी अपनी अतीत सुंदरी कन्या का विवाह हमारे वीर सामंत चूड़ावत से करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए आपकी अनुमति मांगी है।
0: यदि चूड़ावत जी को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है?
1: महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूं।
0: आज्ञा है मंत्री जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
1: महाराज, सरदार चूड़ावत हमारे वीर सेनापति हैं। राणा हाड़ा ने उन्हें अपनी सुंदरी कन्या के लिए मांगकर बुद्धिमता का परिचय दिया है। पर मेरी सम्मति में तो वीर चूड़ावत की जीवन संगनी कोई वीर कन्या ही हो सकती है, हाड़ी कुमारी नहीं।
0: महामंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
1: महाराज,
0: हम आपकी शंका का कारण समझने में असमर्थ हैं।
1: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस उगते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। विद्वानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु। यूं भी नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता।
0: चूड़ावत जी।
5: महाराणा,
0: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है, इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
5: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया। पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्या को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी है। वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है। यदि महाराणा की आज्ञा हो तो स्वीकार कर लूं इस चुनौती को।
0: हम आपको ये चुनौती स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। मलखान सिंह
6: जी। महाराज,
0: राणा हाड़ा को ये शुभ संदेश दे दो कि हमें ये संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी।
1: जी महाराणा।
0: सामंत चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अति शीघ्र किया जाए।
1: जो आज्ञा महाराज।

0: भैया भाभी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगे तो पागल हो जाओगी।
1: तनिक अपनी भाभी को हमें भी तो दिखा दो।
0: इतने उतावले क्यों हो रहे हो, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरे मुंह दिखलावनी।
1: ये लो।
0: कितनी अच्छी है ये माला।
1: अब बोल, कहाँ है तेरी भाभी?
0: अरे तारा, कहाँ चली गई? सब भाभी को ही घेर कर बैठी हैं।
1: अच्छा,
0: कोई सुनता ही नहीं। तारा, तारा।

0: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
1: आइए सामन, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए और प्रतीक्षा भी।
2: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?
1: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
2: ओ, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
0: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ ऐसे,
3: यहाँ यहाँ क्या करना होगा मुझे?
0: ये हमारी कुल देवी हैं, सौभाग्य और यश की देवी।
3: अच्छा,
0: नववधु इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधु जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
3: अच्छा
0: भाभी, मांगो जो भी इच्छा हो।
3: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
0: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था।
3: इसके सिवा और मैं मांग ही क्या सकती थी?
0: भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रत जगा करेंगी। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधु यामिनी है ना?
3: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रत जगा करूंगी।
0: रत जगा तो करोगी ही, पर ऊपर यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ। नहीं जाती? अच्छा ठहरू, मैं भैया को बुलाती हूँ तो मैं गोद में उठा कर ले जाएंगे। हाँ
3: अरे अरे,
0: बुलाओ भैया।
3: मैं जाती हूँ।
0: तारा सुन जी, भैया ऊपर के कमरे में ही है ना?
1: जी हाँ, सामन तो वहाँ पहले से ही हाड़ी रानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
0: बस अब खूब मजा आएगा।
3: कितना सुंदर कक्ष है ये, पलंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों के पर्दे और ये तलवार अवश्य मेरे स्वामी की है, और वो चित्र किसका है? ओह स्वामी, प्रियतम, कितना तेजस्वी मुख है, आज मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हुई, अब मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। जब तुम सामने आओगे तब तो शायद लज्जा के मारे में कुछ बोल भी नहीं। कौन?
2: स्वागत है।
3: ओह आप यहाँ?
2: हाँ प्रिय, मैं यहाँ कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, पर ये घूंघट किस लिए? मैंने तो तुम्हारे रूप की एक झलक भर देखी है, हृदय नहीं भरा। अच्छा तो मैं ही इस चंद्रमुख पर से इन घूंघट रूपी बादलों को हटाए देता हूँ। ऐसे
3: ना,
2: हाँ, अब ठीक है। हाँ, देख रहा हूँ रूप का सागर, विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशि मुख पर ये मोती की नथ, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में। मेरा अपनापन, मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम।
3: स्वामी, मेरे देवता,
2: सच
3: मैं तुम्हारी पुजारी।
4: सभी प्रजाजनों को सूचित किया जाता है,
2: तुम सच मुझ कितनी सुंदर हो।
4: नगर की राजकुमारी
2: चंद्रमुखी
4: बलपूर्वक विवाह करने के लिए

0: चकोर
1: अपनी विशाल सेना
0: ये चाहता है कि एक तक तुम्हें देखता ही रहो।
1: नगर के राजा ने
2: स्वामी
1: हमारे महाराणा से
2: इस पागलपन
0: रानी तुम कुछ कहती जाओ और मैं सुनता रहूं। मेरी रानी मैं तुम्हारे सौंदर्य सागर के यौवन रूपी भंवर में फंस गया हूँ।
2: स्वामी
0: कमल के कोमल संपुट में बंद भंवर की तरह हैरान हूँ, मुक्त हूँ।
2: सुना आपने?
0: इधर
2: स्वामी
0: प्रिय
2: छोड़िए छोड़िए मेरा हाथ।
0: प्रिय मुझसे क्या अपराध हो गया है जो तुम इतनी प्रसन्न हो और अचानक दूर खड़ी हो गई हो?
2: स्वामी सुनिए नगाड़े की ध्वनि, राजपूत तो इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई।
0: ओह मेरी हाड़ी रानी, मेवाड़ भूमि वीरों से शून्य नहीं है, और फिर मेरे लिए तो राणा जी का विशेष दूत आएगा।
2: जानती हूँ, पर देश की आन पर मर मिटने वाले किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते।
0: प्रियतम मैं
2: प्रियतम मैं मेरी प्रार्थना है कि आप किसी की प्रतीक्षा न करें और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करें।
0: प्रिय जीवन में प्रेम का महत्व किसी भी वस्तु से कम नहीं, कम से कम इस मधु यामिनी को तो बीत जाने दो, विधाता भी कैसा क्रूर है, जीवन के इस मधुर हास्य में कठोरता का अठास और संगीत की मधुर लहरी में ये भयानक चीत्कार जैसा क्षण मेरे ही भाग्य में था, तुम्हें जी भर कर निहार भी न सका, एक बार हृदय से लगा भी न सका, सेज पर सजी हुई गुलाब की पंखुड़ियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मुरझा जाएगी।
2: स्वामी ये केवल आपका मोह और वासना है।
0: रानी
2: प्रेम प्रेरणा देता है, मोह विचलित करता है।
0: रानी
2: स्वामी विचलित हो रहे हैं क्योंकि मोह ने प्रेम को बंदी बना रखा है।
0: हाँ रानी मैं विचलित हो रहा हूँ, मैंने अब तक यौवन के उद्दाम वेग को केवल तलवार की धार पर ही रोक रखा था, पर तुम्हारे रूप और यौवन ने उस वेग को इतना तीव्र कर दिया है कि उसे रोकना असंभव सा हो रहा है। अपने प्राणों को अब तक मैं बर्छों और भालों की नोक पर ही उछालता फिरता था, पर आज जैसी घुटन और उलझन कभी न हुई थी, क्या करूं?
2: तो ठीक है स्वामी, आप चूड़ियां पहनकर यहां बैठिए और मैं सैनिक वेश में युद्ध भूमि में जाती हूँ।
0: रानी ठहरो,
2: आप इस पुष्पशैया पर बैठकर अपनी घुटन का उपचार करिए, मैं आपकी इस कायरता के पाप का प्रायश्चित करने जाती
0: हूँ। ठहरो रानी,
2: यह हरवंश की तलवार है जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की है, मैं जाती हूँ।
0: रानी ठहरो, रानी सुनो तो।
2: नहीं सामन, नहीं, मैं जीते जी अपने आप पर यह कलंक नहीं आने दूंगी कि जब सहस्त्रों युवक एक अबला की सतीत्व रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, उस समय सामंत रंग महल में रंगरेलियां मना रहा था, रूप और यौवन की आंधी में सामंत की वीरता एक तिनके की भांति उड़ गई, अपनी प्रियतमा के केश पुष्पों की सुगंध में मधोर सामंत तलवारों की खनखनाहट से भयभीत हो गया। नहीं नहीं सामंत नहीं, मैं आप पर एक कलंक का टीका नहीं सह।
0: रानी शांत हो और जरा यहाँ बैठो।
2: छोड़िए मुझे, मैं ये तलवार लेकर आलमगीर की सेना पर टूट पड़ूंगी, एक राजपूत बाला के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी, कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि सामन की वीरता कायरता के बंदी खाने में बड़ी तड़प रही है।
0: नहीं नहीं नहीं, ठहरो रानी, तुम चली जाओगी तो मुझे विदा कौन करेगा?
2: तो फिर शीघ्रता कीजिए स्वामी, आइए मैं आपके भाल पर रक्त तिलक कर दूं। स्वामी विजयी हो और शीघ्र लौटे, यही मेरी शुभकामना है।
0: रण क्षेत्र में भी मैं तुम्हारी मनोहर छवि न भूल सकूंगा, तुम मेरी रग रग में समा गई हो, मैं तुम्हारे इस निर्दोष अछूते और अतृप्त यौवन को देख रहा हूँ, सोचता हूँ यदि मैं जीवित न लौटा
2: ना, ना।
0: तो तुम्हारा ये रूप यौवन
2: ऐसा न कहिए प्रियतम, यदि कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो ये दासी स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए पहले ही उपस्थित हो जाएगी, आप ऐसे विचार हृदय से निकाल दीजिए और निश्चिंत होकर रणभूमि में जाइए।
0: अच्छा प्रिय, विदा। जय भवानी।
2: जय भवानी, विजय प्राप्त कर शीघ्र।

0: कितनी सुंदर है हाड़ी रानी, कितनी मस्ती और अल्हड़पन है उसके अंग संचालन में। पात्र में भरी हुई मदिरा के समान इठलाता हुआ उसका यौवन, जैसे मदिरा की मादकता को भी चुनौती दे रहा हो। एक बार गले से भी न लगा सका, क्या करती होगी इस समय? कदाचित गुलाब की पंखड़ियों से सजी सेज पर बड़ी तड़प रही होगी। अगर मैं जीवित न लौटा तो उसका ये यौवन रूप, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भेजना ठीक होगा, कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रण सिंह उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
1: रण सिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
2: कहिए रण सिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
1: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है, साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचके।
2: ओह, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए, ये मेरे पितृकुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें ये तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
1: जो आज्ञा।
2: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
3: वाह रानी जी, जब रणसिंह आते हैं तब आप क्रोधित हो उठती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तब व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
2: तारा, तारा देख तो कोई आ रहा है।
3: रणसिंह जी आए हैं।
1: रानी जी, रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
2: रणसिंह, युद्ध भूमि का क्या समाचार है?
1: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा रहा है।
2: रणसिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रही है? इस हार जाम की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता का कारण मैं हूं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा तो फिर यही ठीक है। रणसिंह, प्रतीक्षा करो, मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी। ऐसी निशानी जो कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को न दी होगी। विजय मार। तारा, तारा
3: आई। आई रानी जी, आपने मुझे बुलाया।
2: हाँ तारा, मेरी प्यारी सखी, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना, आज अंतिम बार में तेरी सहायता चाहती हूँ।
3: ये क्या कर रही है?
2: तारा, इधर आ, मेरी मांग में सिंदूर भर दे। मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे, पैरों में बिछिया पहना और मावर लगा। जल्दी कर तारा।
3: रानी जी मुझे छोड़कर मत जाओ।
2: पंगली रोती है, क्षत्रानी होकर रोती है। शिखर ताकर, रणसिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ला ला सिंदूर ला। अरे, तेरे हाथ कांप रहे हैं, ठीक से मांग तो भर दे।

சி, தர்ப்பணா, தர்ப்பணி தர்ணா, அரி, அரி வா, மேன் கித்தி அச்சி லக்கிறேன். ஜப் மேரா விவா ஹுவா தா, தப் சாப் கேட்டதே, लग रही हूँ, पर आज मैं कैसी लग रही हूँ ये तो तू ही बता सकती है। बता बता ना। अरे फिर रोती है? ला ला तारा, मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना कि सामंत की विजय माल का सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े करवोलत वक्ष पर ये मेरा शीश रूपी पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस बस, अब बहुत विलंब हो रहा है। तारा जल्दी कर, लाकर पड़। ठहरिए रानी जी, मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है। मेरा भग्न शीश रण सिंह को दे देना और कहना कहना रानी ने हमें विजय मान समझ के लिए दी है। विजय मान।

0: तारा तुम रो क्यों रही हो?
1: रण सिंह जी लीजिए, हाड़ी रानी ने सामन के लिए ये विजय माल भेजी है।
0: ये कैसी विजय माल है जो इस तरह थाली में ढांक कर लाई हो?
1: आप स्वयं देख लें और सामन तक शीघ्र पहुंचा दें।
0: ये क्या, ये रानी के शीश की विजय माल? धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा। जाता हूं तारा।
2: अभी तक रण सिंह नहीं आया और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझता। हाड़ी रानी नस नस में बस गई है, क्या करूं?
0: सामंत, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
2: आओ आओ रण सिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो, हाड़ी रानी कुशल से तो है? मेरे लिए कुछ सेनानी दी उन्होंने?
0: हाँ सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है।
2: अच्छा,
0: इसे गले में पहनकर आप झूम पड़ेंगे।
2: सच?
0: और जो भी इस अनोखी विजय माल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस विजय माल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है।
2: वो क्या?
0: कि इस युद्ध में हम सब का एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या मृत्यु।
2: हमें सब स्वीकार है, पर सेनानी तो दिखाओ।
0: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए।
2: रण सिंह, ये क्या लाए हो?
3: हाड़ी रानी का भग्न शीश, ये क्या किया तुमने रण सिंह?
0: मैंने नहीं, आपने ही ये किया है। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार सेनानी लाने को भेजा। रानी आपकी दुविधा को पहचान गई और आप पर कोई कलंक ना लगे इसलिए।
3: रण सिंह, मैं समझ गया, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही दोषी हूं। सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा लिया।

0: खाड़ी रानी तुम साक्षात भवानी थी। मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। इन लहराते हुए सुंदर केशों की माला बनाकर मेरे गले में पहना दो रण से, मेरी प्रियतमा का शीश मेरी छाती पर लटकने दो, मेरे मृत शरीर को रानी के साथ एक ही चिता पर रखकर भस्म कर देना। अब मेरी आंखों पर से मोह का आवरण हट गया है, भूखे सिंह की तरह हम अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। साथियों आगे बढ़ो, विजय हमारी है।
1: बादशाह की सेना उल्टे पैर भाग रही है।
0: सच रण सिंह, हम विजयी हुए?
1: हाँ सामन, सच। मुगल बादशाह भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद वो भी रणभूमि छोड़कर भाग निकला। सामन,
0: शत्रु भाग गया। जय भवानी, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए। मैं चाहता हूँ मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी।
1: मैं चाहता हूँ सामन, आप कहाँ दौड़े जा रहे हैं? सामन ठहरिए, ठहरिए सामन।
0: रानी सुना तुमने, हम विजयी होकर आ गए, हम लौट कर आ गए। आओ हमारा स्वागत करो, टीका लगाओ, आरती उतारो। रानी शीघ्र आओ। तारा, ओ तारा।
2: जी सामंत।
0: रानी जी कहाँ हैं? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
2: सामंत, रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।
0: हाँ, रानी, मेरी हाड़ी रानी, मेरी विजय माल।

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना, प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
2: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है।
3: जी जी।
2: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
3: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था। लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफ़ी छोटा तब से काम कर रहा हूँ और एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। सो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल आहूजा है, उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था 120 बहादुर के लिए, ऑडिशन हुआ कि एक गाना गाने वाला लड़का चाहिए। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन लिया, पर वो उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था। तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में इस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ।
2: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था और अपने माता पिता के बारे में बताइए।
3: जी जी। सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
2: क्या बात।
3: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पर गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैं काफी छोटा था और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं, बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
2: अरे
3: और मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है। और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश में सुनता था। रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था। देशर पटरिया के गाना, उर्मिला पांडे जी के गाने और भी बहुत सारे लोगों के गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन बीता। और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था। चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहाँ पे बैठते थे और फिर वो वहाँ पे कुछ गाने गाते थे 1-2 घंटे और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुस पाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती मैं, आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी, दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठे थे। और कई दफ़ा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते थे।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने कुछ पैसा दिया, 8-10 हज़ार रुपये उधर से आए। तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें। हाँ। उन्होंने सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
2: अरे वाह।
3: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था। तो अब बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे पर हारमोनियम रहता था, बजा तो कोई नहीं था। हाँ। तो फिर वो हमारा घर जैसे बगल में था तो हमारे घर में रखते थे वो हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम 2-3 घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को कि गाने के आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है, जिनमें मेरे पिताजी
2: चबूतरे में हुआ,
3: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए। सो मैं ये बोलूंगा कि मेरे पिताजी भी किसान है, मेरी माँ भी किसान है और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से हैं, ऐसे जय जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोले तो हम, बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से।

0: मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
1: कितने दूर है छतरपुर से ये गांव?
0: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पे पड़ता है, तो बसारी के आगे है पहरा।
1: ओके,
0: बहुत ही छोटा सा गांव है सर।
1: बहुत, कितनी क्लास तक वहाँ पढ़े आप?
0: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद मैं 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजाओरे, बुंदेली फिल्म थी। उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव जो उसी गाँव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय तक, जीजाओरे की सीडी, झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जीजाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका, टाइटल सॉन्ग था उसका।
1: अच्छा, जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है?
0: उसपे ऐसे कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक फागे होती थी तो उसी तरह से कि कहा ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहा ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, उपटा लगत उंगरिया मेरे कहा ले आए।
1: उपटा लगत उंगरिया, क्या बात है,
0: कहा ले आए राजा पहाड़िया में,
1: मतलब बुंदेलखंड
0: लाइक कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए। ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है, ये पहाड़िया को बड़ा

0: कहा ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहा ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बम्बई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो
1: हाँ
0: लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
1: तो
0: तो
1: मजा आ गया मुझे सुन
0: बहुत ही मजा आया, मतलब बहुत
1: के
0: मजा आया। तो
1: तो।
0: यही था फिर बुंदेली, फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव।
1: हाँ
0: तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग 1 महीना 21 दिन चलता था वो।
1: अच्छा
0: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे MP के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो वो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद,
1: अरे
0: और
1: बाबा
0: मैं नाइन्थ
1: रे,
0: क्लास में पढ़ता था उस समय।
1: ठीक है
0: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हम वो छोटे
1: अच्छा
0: छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे हमारे, छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे,
1: तो
0: लाइक
1: बुंदेली में था ये।
0: हाँ बुंदेली में नाटक था। अब मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है, क्योंकि मैं एक तो पहला नाटक था मेरा, तो उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया। और मैंने अभी आपसे बात भी किया, इस तरह का जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूँ।
1: वाह।
0: तो फिर ऐसे ही शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ। फिर खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूरी है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट विद्यालय NSD की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान, जो कि काफ़ी
1: ओ
0: बड़े
1: वो तो
0: एक्टर हैं,
1: पन्ना के ही
0: जो
1: है।
0: पन्ना के ही हैं। तो
1: हाँ
0: वो NSD से पास आउट होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे, हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है। तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो, अंग्रेज आते हैं, गोरे, 5 स्टार होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उनने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2-2 किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चल रही है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चलनी है, क्योंकि वहाँ पे 1 महीने रहना है।
1: हाँ
0: तो शिल्प ग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है,
1: अरे
0: इन्हें कहीं
1: वाह,
0: देखा है। तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है, उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना, और मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं, वो क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया, और इतना अच्छा काम निकल के
1: और
0: आया।
1: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
0: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफ़ी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मैं मुझे ये करना है या मैं कहाँ सीखूँ, तो उन्होंने बोला था कि मैं NSD से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी NSD जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके NSD पहुँचना है।
1: डायरी में लिख गया।
0: हाँ, तो मैं लिख
1: अरे
0: लिया कि
1: क्या
0: अभी
1: बात
0: है मुझे
1: है,
0: पहुँचना है NSD। तो फिर वहाँ
1: अभी
0: से
1: आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
0: जी जी
1: यहाँ एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं,
0: हाँ जी हाँ
1: तो
0: जी
1: जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गांव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहाँ बजाए।

0: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम, वो
1: गोइंदा की
0: गाना
1: फिल्म।
0: सुनता, तू पागल प्रेमी आवारा, दिल
1: हाँ
0: तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना, ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए
1: क्या बात
0: ओए।
1: है,
0: तो ये कुछ कुछ गाने हैं जो ऐसे उस समय के याद है मुझे,
1: बिल्कुल वो एक जहन में बसे
0: बहुत
1: होते
0: ही।
1: हैं और ये उस दौर की याद लेके
0: जी
1: आते
0: जी
1: हैं
0: जी हमने
1: बातचीत
0: बहुत
1: करें।
0: देखा है फिल्म को,
1: वाह।
0: बहुत देखा है फिल्म को हम। मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी,
1: हाँ,
0: गुंडा,
1: क्या
0: जो
1: बात
0: भी
1: है,
0: सीडी पे जो भी मिलता था देखते थे, जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
1: वाह, ये
0: हाँ
1: गाना सुनते
0: जी
1: हैं।

0: देवेंद्र, आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं और ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका परिचय होता है, जो तब तक NSD में हैं और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए और वो एक शिविर लगाते हैं और वहां से आपको एक राह दिखती है, एक लड़का जो पहरा गांव का है और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा जिसका परिचय नहीं है, उसका परिचय इन सब चीजों से होता है और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहाँ पहुंचना है।
0: उसके आगे क्या होता है?
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचता हूँ तो अब मुझे तो कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहां पे जाऊंगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहां मुझे पढ़ना है,
0: तो मंडी हाउस चले।
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी, मैं 9th-10th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं NSD की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहां पहुंचा। उसमें मेट्रो बन रही थी और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी है जिसपे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुंचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था, मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया, फिर मैं NSD के गेट पे पहुंचा।

0: और मैं एनएसजी, मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नार विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा और वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है। और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया है। तो मैं गेट में घुसने को हुआ तो एक उस समय हमारे एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी,
1: अरे
0: रिटायर्ड
1: बाप
0: फौजी थे वो।
1: जी
0: तो मैं घुसने लगा, उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है। बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैंने कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो कह रहे यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा अरे अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10 क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊँगा। मैंने बोला कि मैं आऊँगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 2626 फोन हुआ करता था,
1: हाँ वो छोटा वाला,
0: छोटे
1: हाँ
0: वाला फोन, तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है,
1: वो
0: बस
1: रिकॉर्ड कर
0: इसमें
1: दो।
0: रिकॉर्ड कर दो, एक मिनट ही मेरे पास में, इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में। तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो या एक्ट्रेस किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए, जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है और वो तुम्हारे

0: क्लास में पढ़ते हो? मैंने कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो कह रहे यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कह रही अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला कह रहे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10 क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊँगा। मैंने बोला कि मैं आऊँगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 2626 फोन हुआ करता था,
1: हाँ वो छोटा
0: छोटे
1: वाला।
0: वाला फोन, तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी। तो
1: हाँ
0: मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है,
1: वो
0: बस
1: रिकॉर्ड कर
0: इसमें
1: दो।
0: रिकॉर्ड कर दो, 1 मिनट ही मेरे पास में, इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में। तो
1: हाँ
0: उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो या बैकस्टेज किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है और वो तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं,
1: अरे
0: तो
1: गजब,
0: तुम अनुशासित
1: उसने
0: हो,
1: 1 मिनट में सब बोल
0: सब
1: दिया।
0: बता दिया, ये करके आना पड़ेगा तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, फॉर्म भर सकते हो।
1: हाँ
0: तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके, मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है। मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया, फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
1: तो
0: तो मैंने
1: कॉलेज
0: कॉलेज
1: किस
0: में,
1: शहर में था?
0: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने एक ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा। और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको, तो उनसे जुड़ गया। फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर सत्यनारायण का नाटक किया,
1: बिल्कुल।
0: और भी नाटक जो भी वो कराते थे उसमें उससे जुड़ गए। और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ है वो नाटक हुआ। फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, क्योंकि हम तो कुछ भी कर देते हैं,
1: बिल्कुल।
0: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा,
1: अच्छा
0: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा। अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो? आपको कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर आया आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हैं, हेमंत भाई
1: बिल्कुल
0: आप जानते होंगे, बहुत बड़े
1: हाँ
0: कवि हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल, विहान
0: तो
1: ग्रुप।
0: हाँ विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं कि एक मेंबर हैं वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको फ़ोन करता था, वो मैं पागल कर देता भैया मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज़ मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर हैं अलख नंदन सिन्हा जी, मैं
1: गजब।
0: अलख दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर
1: हाँ
0: वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं एमए के लिए मैंने अप्लाई किया था, और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को, शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूं और मेरे घुटने कांप रहे हैं, और मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बंदे का नंबर जान है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूं और मैं वैसे ही जा रहा हूं, मेरे घुटने कांप रहे हैं और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है, मैं सोचूं कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका है उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फ़ोन कर रहा हूँ, अभी 5 बजे कोई कोई फ़ोन उठाएगा?
1: बिल्कुल।
0: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूँगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फ़ोन बंद हो जाए या आपका फ़ोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा, और फिर एक बंदा,
1: रोशनपुरा चौराहे पर।
0: हाँ एक एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा मेरे पास आए, और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा, और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा और मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैंने उनके पैर छूए, वो नहीं बोले कि पैर वैर नहीं छूते, मैंने कि बोले हमारे यहाँ तो पैर बड़ों के पैर छूते हैं, उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया, और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दादा के घर में, और हम बैठे हुए हैं और 1 घंटा हो गया।
1: पहले हेमंत आया,
0: हेमंत दादा आए पहले, और उन्होंने
1: अच्छा
0: बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदेले हो, तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले,
1: हाँ।
0: और तुमने बोला तुम गाने आना गाते हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख ले। और मैं अतरंगी था सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहने हुए, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं, बड़े बड़े मैंने बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उधर ही रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बैठे बैठे पानी आया चाय आई हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं, और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं बंदा पढ़ ही रहा है आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो, उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये।

0: उन्हें बोला किसको लेके आ गए, कौन है? मेरी शक्ल देख के. अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं. हाँ. आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर. मैं बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे को, ये ताकत लगा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था. उन्होंने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा. तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं जाना है और मैं उसके लिए आया हूँ, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं. तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं. उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैं सर कुछ भी करूंगा मैं, आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल स्पेस साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीजें आप खुद से देखनी पड़ेंगी. तो जिस रिपेटरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी श्यामला हिल्स पे, उसमें मैं हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे वो रहते थे. तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार. और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहां पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना. और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ. तो उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा. तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं. तब मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई, उस महफिल में सुनाई पहली बार. मैं इधर सुना दूं आपको?
1: जरूर.
0: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने. ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, ओ पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने. घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है, कैया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने.
1: क्या बात है.
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, ये उसके दोस्त हैं.
1: बिल्कुल.
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेला ना जा पाहो उनखा आके तिनगाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने. आखिरी बंद है कि दद्दा धीरे से मुस्काए ढीले दोई बेला, और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला, फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया लेवाई, और कंधे पे बैठा के पूरो मेला दो घुमाई, कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने, और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया हिलाने, दद्दा मोखा मेला जाने.
1: कहते हैं देवेंद्र
0: के बचपन. उस समय ये बुंदेलखंड के कभी गानों में कभी जो राइटर होता था उसका नाम छाप बोलते थे उसे, छाप है. तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी, और वहां से ही मेरा साहित्य के बारे में शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ.
1: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
0: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं. मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था, और 10 रुपए का 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट आता है, भुजिया बोले ली, और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीजें घर से ले गया था, और रोल बना के उसमें नमकीन डालता था और उसको ऐसे खाता था. खर्च कुछ था ही नहीं,
1: बस वहां खाना हो गया,
0: खाना हो गया. और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहां पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुंचता था, तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था. ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल स्पेस साफ करना है, चटाइयाँ बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है. तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना. और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं. मेरी भाषा का बहुत खराब था, एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े, और दादा मुझे और मेरी भाषा बहुत खराब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द, ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे. वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक मुझे करने को मिला. मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हो गया. तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ.

0: मुझे इस बात पे गाली मिलती थी, और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो। मैं कहा
1: हाँ
0: यार ये मैं समझ नहीं आता, मैं वही तो बोलता हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे को भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक MP स्कूल ऑफ ड्रामा। और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता, और ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुला ही था। तो मैंने फिर MP स्कूल ड्रामा के लिए एग्ज़ाम दिया। पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में चल का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूज़िक बनाना समझा। मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था, पर म्यूज़िक बनाना मैंने कैसे समझा कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ। त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी, जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीज़ों के लिए, काफ़ी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है। तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे, और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, SNA अवार्डी हैं वो, और मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने। तो एक नाटक कर रहे थे, तो उस नाटक में हम उज्जैन में, हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहाँ पे थे। तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे, हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही, और वो गाना मुझे ही गाना था तो मेरे सामने बना रहे थे, क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों पाक पसारे, सही में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे। तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया सर, देखिए छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया, और मैं ऐसे इंस्पायर हो, इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाना ऐसा कुछ था, दिखती है आस क्यों पाखे पसारे, ऐसे में है मन क्यों।

0: क्यों रूठे किनारे। तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की है और लिखने
1: क्या
0: भी शुरू
1: बात
0: किए,
1: है।
0: क्योंकि मैं पढ़ता था भावे में, लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए।
1: कंपोज
0: और
1: करना शुरू किया या लिखना शुरू
0: लिखने
1: किया?
0: भी लिखना दिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का 7-8 मिनट का 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ अगले।
1: रुको, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद ये दास्तान
0: हाँ, पता
1: सुनेंगे।
0: होगा चलेगा
1: तो
0: सर।
1: बताओ यहां कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा का गाना,
1: ओमकारा का गाना
0: ओमकारा
1: है।
0: का गाना है
1: बहुत
0: कि बहुत ही
1: शानदार
0: सुंदर
1: गाना है,
0: गाना है, बहुत ही
1: बहुत शानदार
0: सुंदर गाना
1: गाना
0: है।
1: है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र, आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा।
1: हाँ,
0: तो इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेलीवी गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे, और वहां पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है, वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग जगा ले तुझको किसने रोका है, सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है और फिर
0: म्यूजिक का सिलसिला चल पड़ा,
1: चालू हो गया। फिर उसके बाद मैं पास आउट हुआ, और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना मेरे ग्रुप में काम करना।
0: अच्छा,
1: तो एक ब्रिज मिल गया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है
0: डेस्टिनेशन। वो बोर्ड
1: वो तो छूटे नहीं है, वो रिकॉर्डिंग तो छूटे नहीं है।
0: हाँ,
1: वो तो मैं मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था, पर एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया। और देने गया इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो, तो भोपाल में आपने नहीं दिया? मैंने बोला मैंने दिया था। तो उन्होंने क्या

0: मैंने कि हो गया, तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ।
1: अरे
0: मैंने कहा अरे यार, तो फिर मुझे पढ़ने को वहां पे मौका मिला और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था। 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए, और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ।
1: ओके
0: और तो उसके बाद मैं दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम किया।
1: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन
0: हो गया
1: और वहीं वो
0: और वो धुरंधर जी से मिलना हुआ मेरा।
1: मिले धुरंधर जी?
0: धुरंधर जी उस समय तक थे, धुरंधर जी पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक।
1: हाँ।
0: मैंने बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, ऐसे वो मनगढ़ंत कहानी सुना रहे वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग कैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो, क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहाँ पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे दुनिया में होता है
1: जी।
0: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब प्यार मिलता है, परिवार के सदस्य हैं, सीनियर सदस्य हो आप, तो उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा है, और फिर वो रिटायर्ड हो गए तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहाँ भी हो, बहुत ही अच्छे थे वो।
1: एनएसडी ने आपकी दुनिया को कितना बदला?
0: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का, और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया। उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग किसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे, बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मैं डायलॉग खत्म, रोल भी खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरी भाषा इतनी खराब थी।
1: अच्छा,
0: क्योंकि
1: लेकिन ये फिर भाषा पर काम कैसे किया? ये हाँ, बहुत
0: मैं बता रहा हूँ कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था। शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था।
1: हाँ।
0: तो लोग हंसते थे।
1: हाँ।
0: तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मैं बहुत बड़ा मसला है।
1: हाँ।
0: तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की। हाँ। मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके। मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा मैं गलत बोलता था,
1: शक को साफ बोल रहे हो,
0: हमेशा ही बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता जो राजीव जोशी की बहुत पॉपुलर कविता है, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया।
1: हाँ।
0: जो हमारे बैंड का मंडिया हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड है उसमें गाना है ना।
1: हाँ।
0: जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे।
1: हाँ।
0: तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था जिसमें मैंने सा को सही बोला था। शामिल बोला था, मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोलना था, इतने दिन से तुमसे यही तो बोलवाना चाह रहे थे हम।
1: ओके।
0: तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया और मैंने बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनएसजी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया और डायरेक्ट कर रहे थे अनुरुद्ध खुटवत सर। और मैंने मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया और 2-2.5 घंटे के नाटक में 1.5-2 घंटे कम से कम स्टेज पे और लगातार बोलना है, और कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट, कुछ भी चीज जो मैं नहीं करता था सब उसको करना है, मैनेज्म पकड़ने की कोशिश की। और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया, और उस समय मुझे समझ में आया कि यार मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियाँ कौन कहेगा। तो फिर मैंने वहाँ से अपना रुझान बदला और मैंने डिज़ाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया। सेकेंड ईयर से आप स्पेशलाइजेशन करते हो, तो वो लिया, और फिर मैं उस तरफ आ गया, और फिर मैंने अपनी कहानियाँ लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उस ज़मीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी के पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मेरे को लोग प्यार करते हैं, और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूँ, लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
1: बिल्कुल
0: तुम्हारी एफर्टलेस दिखती है। तो ऐसे करके शुरू हुआ पूरा पूरा।
1: तो फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर की बात की है?
0: अभी दिल्ली पहुंचा उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे,
1: बंसी कॉल
0: जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया,
1: मुखौटा।
0: हाँ। तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लाजन लाइव थिएटर करते थे, और वो फार्स कॉमेडी करते थे, वो कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था, और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने, और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफ़ी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने वाटर स्टेशन, जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे, तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
1: बिल्कुल
0: देखे हमने। अविलाश पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने, और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ, और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं, और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं,

0: और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज़्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं। तो
1: वहां
0: हमने
1: से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
0: मैं पास आउट हुआ 17 में, और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डिरेल्ड मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया, और वो थिएटर ओलंपिक हुआ उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था, उसके 1,000 लोग देखते थे, और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिज़ाइन किया था, और एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक कि वहाँ से एक रेल की पटरी निकलती है और वहाँ पे एक गार्ड रहता है और वहाँ पे एक फाटक है और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा, ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था, तो वो गाना और उसके काफ़ी गाने ऐसे पॉपुलर हुए, वो मैंने रिकॉर्ड किया, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिए किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने एक गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, काफ़ी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं हम काम करेंगे, वो बहुत बड़ा नाम था उस डायरेक्टर का, और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था, 12 बजे के आसपास, एनएसडी से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पे मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, और एक एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ, उन्होंने बोला फलाना फलाना बोल रहा हूँ, फिर सर वे कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज़ म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, कुत्ते मेरे आसपास पहुँच रहे हैं, मैं सुनाई देना बंद हो गया मुझे, मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं, कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ, पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे, पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया।
1: और यहां से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
0: हाँ मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे शुरू होता कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा, क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये बताता कि वहाँ हर हाल में पहुँचना है, जहाँ जाने का ख्वाब देखा है, तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया, क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे, फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस, जो मैंने ही लिखा था, और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे, वो शुरू ऐसे होता था, एक आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है, हाँ वो क्योंकि रेडियो का बंदा था, तो रेडियो पे कोई न्यूज़ चल रही है, और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूज़िक है, तो कांजी हाउस में उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए, और वो फिर कोविड लग गया, हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है, और
1: उसका एक गाना सुनाओ यार।
0: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको।
1: बिल्कुल
0: हाँ, सुनाता हूँ मैं आपको, उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है, मैं एक इसकी छोटी सी गंभीर बात आ देता हूँ कि
1: बिल्कुल
0: एक छोटा सा सेंटेंस जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है, और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये, एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती, उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के रख
1: बदल
0: दी,
1: दी।
0: बदल दी, उस पर एक कहानी है, हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है, एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद
1: वो
0: है,
1: क्या कर
0: तो वो
1: सकता है?
0: क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है, तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है, क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होके ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गांव से निकल के कहाँ कहाँ पहुंचता है, उसकी कहानी है। सो गाना है, अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको कोई रोक सके, किसमें इतना पावर है, सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
1: क्या
0: पै
1: बात
0: पै
1: है।
0: पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, सीधे लड़के के हाथों में इलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है,
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ

0: गायब बात थी, गायब दुनिया की औकात थी, गायब गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी।
1: वाह।
0: सुबह उठा तो कान के नीचे, सुबह उठा तो कान के नीचे, गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया गाना। जी जी जी, कैसा रिस्पॉन्स है इस नाटक का?
0: सर जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है। तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं, और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने नहीं बोला हुआ है। तो बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कोम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो है, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, एनएमसीसी में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले, और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
1: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
0: जी जी,
1: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब सीरीज,
0: जी जी, स्वानंद दादा हैं, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया। उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिगी। जिगी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की को के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन, और उससे राखी बनवा दी। तो वो जिगी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा,
1: बेचारा
0: अब वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो, अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है बहुत, मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की, क्यों? क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा, वो मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंद सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरुजी रोविंद सर काम, आशीष विद्यार्थी जी उसमें काम कर रहे हैं, तो काफी लोग उसमें थे, तो उसमें बहुत ही अच्छा था, और उसमें मेरा एक गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था, गाना उसमें सब मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था।
1: सुनाओ ना।
0: अच्छा वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए, बुजुर्गों ने फरमाया है प्यारे सब मोह माया है, अरे टैटू भी गुदवाया है, डूड सब मोह माया है, काफी ऐसे फन सॉन्ग है, आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या
1: बिल्कुल,
0: चाय चढ़ा के दूध में फंस गए,
1: वाह वाह,
0: पी के कहीं तो भूख में फंस गए,
1: वाह,
0: पिचकारी से खेल रहे थे नजरों की बंदूक में फंस गए,
1: क्या सुन
0: उसके लिरिक्स ऐसे हैं, मतलब
1: वाह वाह वाह। देवेंद्र बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके,
0: मेरे को
1: और
0: बहुत खुशी हुई,
1: सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए,
0: जी जी जी,
1: तो फिर कभी मिलेंगे और आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बहुत सुना है विविध भारती, मैंने सुनता था आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था, फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं, कर दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार,
1: बिल्कुल,
0: और बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत, इतना नहीं एक रेडियो में,
1: बिल्कुल,
0: मैं बड़ा मिस करता हूँ इसको, और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जिंदगी मैं कहाँ से कहूँ, जैसे गाने मैंने सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ मैं, सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ कि मैंने थोड़ा म्यूजिक और जो लोक है, जो फोक है, वो काफ़ी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है, और दूसरा मैं शहर भी रहा हूँ तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूँ, तो मेरे लिए ये काम कर जाता है, और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है कि वो गाना नहीं सुनता जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आज आपके साथ बैठा हुआ था,
1: सफर है
0: हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके, और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर,

आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी झालावाड़ से बोल रहे हैं।
1: ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी झालावाड़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आप सुन रहे हैं अनुराधा पोडवाल की आवाज में, फिल्म है कि दिल है कि मानता नहीं। और इस गीत को सुनना चाहा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिंद्रा बजाज, साहिल और इनके सभी परिवार वालों ने।

इंद्र विहार रायगढ़ से हमारे श्रोता हैं वसीम अकरम नूर जहाँ, डब्लू अकरम नूर जहाँ, वली अकरम नूर जहाँ, उल्लाह अकरम नूर जहाँ, राजनांद गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा।

0: बोरखेड़ा चित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मुणत, कुमारी नेहा जैन, दीपक, मयंक मुणत, चेतन नाहरा, आप सभी ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफी लता मंगेशकर को फिल्म तलाश में।
1: पलकों के पीछे से ना।

श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप आकाशवाणी झालावाड़ से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए कुदरत फिल्म में किशोर कुमार को। इस गीत को सुनवाने का अनुरोध किया है शीतला माता चौक माता जी की मिश्रोली तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ राजस्थान से बाबूलाल जी राबड़िया, विनोद गुप्ता, ईश्वर पाटीदार, सुनील गुप्ता, राहुल गुप्ता, रामगोपाल गुप्ता, होकम सिंह जी चौहान भगवती पुरा वाले, कैलाश सिंह जी पंवार झिझनी वाले और इनके सभी साथीगण। तो लीजिए इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनिए किशोर कुमार को फिल्म कुदरत में।

हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म कुदरत का ये गीत। आइए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म का नाम है परिवार और गीत के बोल हैं, हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने, ओ मेरे साजना के। और ये खूबसूरत सी आवाज़ें हैं महेंद्र कपूर लता मंगेशकर की, और फरमाइश करता हमारे साथी हैं प्रमिलागंज आलोर जिला रतलाम से मालवा रेडियो श्रोता संघ के बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा।

लता मंगेशकर हेमंत कुमार को सुनिए फिल्म पोस्ट बॉक्स नंबर 999 में। इस गीत को सुनाने का अनुरोध किया है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां और इनके सभी परिवार वाले। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से एमएम राजावत, मधु राजावत, राशिद, शशिकांत, रिया, स्वीटी, सागर, रितिका, रिचा, चितरंजन, उमेश, कमल, सरोज, रेखा, आरती, ऋषभ राजावत और उनके सभी परिवार वालों ने।

सावन को आने दो। आइए इस फिल्म में सुनते हैं यशुदास को इन श्रोताओं की फरमाइश पर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिर्गा, बलवीन सिंह बीरक, जेतेक बीरक, मीका बीरक और इनके सभी साथी, गांव भड़भूंजी आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवी, भंवरबाई, सुषमा, ममता, मंजू, पुष्पा, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, विनोद, विशाल, मिलन, ओम प्रकाश और इनके मम्मी पापा। लीजिए आप सब सुनिए आपकी फरमाइश पर ये नगमा।

फरमाइश जी, फिल्म संगीत में लीजिए, आप सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म ड्रीम गर्ल्स का गीत, जिसको सुनवाने का अनुरोध किया है ग्राम भड़म्बू जी आगर मध्य प्रदेश से, रघुनाथ मालवी, भंवर भाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, दुर्गा, मधुबाला, विनोद, विशाल, मिलन और ओम प्रकाश ने।

लता मंगेशकर, मन्ना डे को लीजिए सुनिए फिल्म दस नंबर में। इस गीत को सुनवाने का अनुरोध किया है मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमीला गायी आलोर जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, लाहौर ज्योति

हमारे श्रोता हैं इस गीत को सुनवाने का अनुरोध करने वाले। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम और इनके सभी परिवार वाले, बटिंडा रोड डबवाली से राजन नारागर, अंजू नागर, मोहित नारंग। आइए इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, जिसको आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले ने।

मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी झालावाड़ से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी झालावाड़ है। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार होंगे शाम 6 बजे। 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 7 बजे। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड पर। भेंटवार्ता में सुनिएगा गर्मियों में पशु की देखभाल। प्रगतिशील महिला किसान संजू मीणा से बातचीत होगी और जानकारी की बातों में ग्रामीण आवास योजना के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 8:15 पर। समाचार संध्या का समय रहेगा 8:45। इसे हम दिल्ली से रिले करेंगे। कार्यक्रम सब रस, जिसमें रस बरसेगा गीत गजल कव्वाली और भक्ति संगीत का, तो सबरस कार्यक्रम को सुनिएगा रात्रि 9 बजे।

ये थी हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनका प्रसारण का समय। हम आकाशवाणी झालावाड़ से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार होंगे, इन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा

0: के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का आरंभ करते हैं फिल्म संगम के गीत के साथ, आवाज़ मुकेश लता मंगेशकर की। गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत है शंकर जयकिशन का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: चिलचिला धूप और गर्म हवा के झोंके।
1: ऐसे में बच्चों को बाहर जाने से कोई कहाँ तक रोके।
0: मम्मा सर दर्द।
2: अगर बाहर से आने पर बच्चों में तेज सर दर्द, बेहोशी, अधिक पसीना, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, सांस या धड़कन तेज होना, उल्टी या बुखार जैसे लक्षण नजर आए तो ये लू लगने के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत बच्चों को छांव में लाएं, कपड़ों को ढीला करें, पंखे की हवा तेज करें, बच्चे को ठंडा पानी पिलाएं और उल्टी करवट लेटाएं। कोई गंभीर लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं।
3: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।
4: फिल्म संगीत कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में

0: किशोर कुमार, लता मंगेशकर के गाए फिल्म प्रेम बंधन के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी झालावाड़ है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। इसे हम जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के दांडेवाला फील्ड में नए गैस भंडार का पता लगाया। प्रदेश में पानी बचाने की मुहिम को लेकर सोमवार से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा और राज्य के पूर्वी हिस्सों में आंधी के साथ हल्की बारिश से गर्मी से मामूली राहत। कल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी के आसार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे इस भरोसे को और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास

0: यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। भारत विश्व के कई देशों के साथ साझेदारी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि इससे उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से समझने में मदद मिलेगी। देश में 47 स्थानों पर इस मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों और संगठनों के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। पूरे देश से चुने गए ये नए कर्मचारी रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उच्च शिक्षा विभाग जैसे कई अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में अपनी रेल सेवाएं देंगे। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर में रोजगार मेले आयोजित किए गए। इनमें 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में शिरकत की। सभा को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने नव नियुक्त युवाओं से राष्ट्र निर्माण में पूरे मन से योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे में 1,60,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसमें 4 करोड़ से अधिक उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। जोधपुर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं से सरकारी सेवा को राष्ट्र सेवा का माध्यम मानते हुए अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की भावना से काम करने को कहा।
2: हमारी ऊर्जा का हर एक कण राष्ट्र विकसित हो इसके लिए समर्पित होना चाहिए, क्योंकि हम सौभाग्यशाली। मित्रों, जब कोई देश, कोई समाज इस तरह के परिवर्तन के दौर से गुजरता है, तब उसका हर घटक की अपनी एक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन जो लोग सक्षम होते हैं उनका दायित्व उतना ही बड़ा होता है। और क्योंकि आज से आप सब लोग सरकार का हिस्सा बनकर के सक्षम हो रहे हैं, ये मानते हुए कि ये शक्ति जो मिली है, ये शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल है, इस दृष्टिकोण से हम सबको काम करने की आवश्यकता है।
0: अजमेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने 258 और बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 281 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथले सानू फॉर्मेशन से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी और भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में गति मिलेगी। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति स्थिर है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने से अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले कुछ दुकानों तक ही सीमित हैं। 1 मई से 22 मई के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। पेट्रोल बिक्री में 14%, वहीं डीजल बिक्री में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। पिछले 10 दिन में तेल के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम

20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में सोमवार से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू होगा। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान जल संरक्षण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अभियान की तैयारियों को लेकर आज सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ते हुए इसे जन आंदोलन बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अभियान की ग्राम पंचायत स्तर तक गतिविधियों की मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप और रियल टाइम रिपोर्टिंग से की जाएगी। इस अभियान को लेकर विभिन्न जिलों में भी तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज सवाई माधोपुर में जिला कलेक्टर कानाराम ने ग्रामीण विकास डांग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जल संरक्षण आवास स्वच्छता और विकास कार्यों को तय समय में और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए। प्रदेश में जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए विलायती बबूल का उन्मूलन किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को इसके लिए योजना बनाकर काम करने को कहा है। आज जयपुर में विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि विलायती बबूल के उन्मूलन से पौधों की स्थानीय प्रजातियों को संरक्षण मिलेगा और पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा। श्री दिलावर ने बबूल की लकड़ी से कोयला बनाने के लिए योजना बनाने को भी कहा। गौरतलब है कि विलायती बबूल अन्य वनस्पतियों को पनपने नहीं देता है। इसकी जड़ें 10 मीटर तक फैली होती हैं और ये अत्यधिक पानी सोखता है। 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा 2026 को पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रदेश में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज परीक्षा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को मिलकर परीक्षा प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने संवेदनशील परीक्षा केंद्रों और जिलों को विशेष निगरानी रखने, पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने तथा परीक्षा केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा। यह परीक्षा राज्य में 611 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। इसमें 2 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस बीच मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित बीकानेर यात्रा की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश में आज मौसम में आए बदलाव से पूर्वी इलाकों के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से मामूली राहत मिली है। आज दोपहर बाद राजधानी जयपुर सहित सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, करौली और भरतपुर, कोटा, बूंदी जिलों में बादल छाए रहे और धूल भरी आंधी चली। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी तो कहीं कहीं हल्की बरसात हुई। दूसरी ओर राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में तेज गर्मी का असर रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही इस दौरान कई जिलों में लू चलने के भी आसार हैं। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर डीग पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सड़कों, बाजारों और कोचिंग सेंटरों के आसपास मंचलों पर शिकंजा कस रही हैं। पुलिस अधीक्षक कामले शरण गोपीनाथ ने बताया कि ऑपरेशन डिकॉय के तहत महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में रहकर लड़कियों को परेशान करने वाले मंचलों पर नजर रख रही हैं। कॉलेज छात्रा पूजा ने बताया कि कॉलेज जाते हुए वे अब अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के दांडेवाला फील्ड में नए गैस भंडार का पता लगाया। प्रदेश में पानी बचाने की

0: मुहिम को लेकर सोमवार से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा और राज्य के पूर्वी हिस्सों में आंधी के साथ हल्की बारिश से गर्मी से मामूली राहत, कल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख गौरव शर्मा ने तैयार किया है। धौलपुर जिले की चिट्ठी में बात करेंगे हालिया खबरों, गतिविधियों और जागरूकता कार्यक्रमों के साथ वन्य जीवों की। इन सब का ब्यौरा आप तक चिट्ठी में पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बालिकाओं की एक उपलब्धि की। जिले की विष्णोदा और मनिया की महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों की बालिकाओं ने छत्तीसगढ़ में हुई राष्ट्रीय जंबूरी में धौलपुर का नाम रोशन किया है। उन्होंने रंगोली प्रतियोगिता में देश में पहला स्थान प्राप्त किया, साथ ही स्टेट गेट प्रतियोगिता में भी पहले नंबर पर रही। इन बालिकाओं ने राष्ट्रीय एकता और महिला सशक्तिकरण का संदेश देती हुई शानदार रंगोलियां बनाकर ये उपलब्धियां हासिल की। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी की अध्यक्षता में बीते दिनों जनसुनवाई की गई। इस दौरान जमाबंदी में नाम सही करवाने, अतिक्रमण हटवाने और पीएम सम्मान किसान निधि की राशि दिलवाने तथा राजस्व सहित कई प्रकरण प्राप्त हुए। इनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वहीं जिला जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति में दर्ज दो प्रकरणों का मौके पर ही निपटारा किया गया। जिले में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए नगर परिषद की ओर से 7 स्थानों पर विश्राम स्थल बनाए गए हैं। इनमें पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई है। ये सभी आश्रय स्थल भीड़भाड़ वाले इलाकों में बनाए गए हैं, जिससे राहगीर, बुजुर्ग और महिलाएं जरूरत पड़ने पर राहत हासिल कर सके। वहीं बढ़ती गर्मी के कारण जिला चिकित्सालय में भी मौसमी बीमारियों के मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में लू और तापघात के रोगियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जिले में आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर पिछले दिनों स्वैच्छिक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान प्रशासन की अपील पर लोगों ने 15 मिनट के लिए बिजली बंद रखी। इससे पहले प्रशासन की ओर से सभी लोगों से मॉक ड्रिल के दौरान घरों में रहने को कहा गया। मॉकड्रिल से पहले संबंधित थानों को इस प्रक्रिया की जानकारी दी गई। पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर धौलपुर में रिजर्व पुलिस लाइन में कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने परेड की सलामी ली और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान शहीद वीरांगनाओं को भी नवाजा गया। जिला पुलिस और RAC धौलपुर 6 बटालियन की ओर से संडे ऑन साइकिल अभियान रखा गया है। इसके जरिए पुलिस सेहत और सुरक्षा का संदेश देगी। इस दौरान योग सत्र भी होगा। पुलिस ने इस विशेष कार्यक्रम में आमजन और इच्छुक नागरिकों के साथ ही विद्यार्थियों से ज्यादा भागीदारी की अपील की है। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में अब महिला प्रताड़ना और पोक्सो के झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इस साल अप्रैल महीने तक जिले में महिला अत्याचार के करीब 250 प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें से 86 मामले जांच में झूठे पाए गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि झूठी FIR और फर्जी आरोप लगाने के खिलाफ BNS की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिले के CMHO डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों की अनदेखी पाए जाने पर 12 अस्पतालों का पंजीकरण 5 दिन के लिए निलंबित किया गया। वहीं 2 चिकित्सालयों का पंजीकरण स्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया। CMHO ने बताया कि निजी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी, जवाबदेह और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई है। जयपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में बिजली चोरी और बकाया बिलों की वसूली के लिए खास अभियान चलाया गया। इसके तहत राजाखेड़ा और मरीना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध बिजली उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस दौरान 15 ट्रांसफार्मर जब्त किए गए। जिले में जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों से यातायात नियमों की पालना की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में जन सहयोग से हेलमेट वितरित किए गए। वहीं बाइक रैली निकालकर लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा। खनन विभाग ने धौलपुर जिले में 16 संवेदनशील स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने का

0: निर्णय लिया है। धौलपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकारी नौकरियां जनतारी जिंदगी बेहतर और आसान बनावन रो खास जरियो। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसलमेर जिला रा दांडेवाला फील्ड माए गैस रा नुआ भंडार रो पतो लगायो। प्रदेश माए पानी बचावन री मुहिम रा तेत सोमवार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू करयो जावेला। और राज्य रा उगनी हल्का माए आंधी और हल्की बारिश गर्मियों थोड़ी साता मिली। कालू पारो ओजू चढ़वारा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि सरकारी नौकरियां लोगों ने जिंदगी बेहतर और आसान बनावन रो खास जरियो है। वह आज राखी जिया 19वां रोजगार मेला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोल रहा है। प्रधानमंत्री कहो कि देश कर्म योगियां माथे भरोसो जतायो है और इनने मजबूत बनावन री जिम्मेदारी कर्मयोगियां री है। श्री मोदी कहो कि पूरी दुनिया भारत री विकास यात्रा रो हिस्सो बनवारी मर्जी रखे है। प्रधानमंत्री कहो कि भारत दुनिया रा कई देशां सागे साझेदारी कर रियो है, जिनरो मकसद नौजवानों ने नौकरी धंधा रा मौका और दुनिया रो अनुभव दिरावनो है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री नवी नौकरी लागिया कर्मचारियों ने आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बत्तो इस्तेमाल करन शुरू कहो। आखा देश माए 47 ठोणा रोजगार मेला लगाई चिया। इन दौरान 51,000 बत्ता मोटियारा ने सरकारी महकमा और संगठना माए नौकरी लगन रा कागजात सौंपी चिया। प्रदेश माए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर माए रोजगार मेला लगार 1,100 बत्ता नौजवाना ने नौकरी लगन रा कागजात दिया चिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जयपुर माए राखी जिया रोजगार मेला माए शामिल थिया। ये मौके श्री वैष्णव नवी नौकरी लागन वालाओं राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम री सोच काम करण और देश बनावन रा काम माए पूरा मन योगदान देवन री अरज कीनी। वह कहो कि रेलवे माए 1,60,000 बत्ता ओहदा माथे भर्ती रो काम चाल रियो है, जिन सारू 4 करोड़ बत्ता उम्मीदवार भाग आजमा रिया है। जोधपुर माए राखी जा रोजगार मेला माए केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मोटियाराओं सरकारी नौकरी ने देश री सेवा रो जरियो मानता थका हर पात्र जना ताई सरकारी योजनावां रो फायदो पुगावण री भावनाओं काम करण बाबत कहो।
3: हमारी ऊर्जा का हर एक कण राष्ट्र विकसित हो इसके लिए समर्पित होना चाहिए, क्योंकि हम सौभाग्यशाली। मित्रों, जब कोई देश कोई समाज इस तरह के परिवर्तन के दौर से गुजरता है तब उसका हर घटक की अपनी एक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन जो लोग सक्षम होते हैं उनका दायित्व उतना ही बड़ा होता है। और क्योंकि आज से आप सब लोग सरकार का हिस्सा बनकर के सक्षम होने ये मानते हुए कि ये शक्ति जो मिली है ये शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल है, इस दृष्टिकोण से हम सबको काम करने की आवश्यकता है।
1: अजमेर माए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी 258 और बीकानेर माए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 281 उम्मीदवारों ने नौकरी लगन रा कागजात सौंपिया। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड राज्य रा दांडेवाला फील्ड माए नुआ गैस भंडार रो पतो लगायो है। पेट्रोल

0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि करीब 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन री रेटों प्राकृतिक गैस निकलबाऊ देशी ऊर्जा उत्पादन मजबूत बनैला। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहो है कि देश में तेल गैस री कोई कमी नहीं है और पेट्रोल डीजल री पूर्ति स्थिर है। कंपनी रे मुजब 1-22 मई बीच IOCL रा पेट्रोल री बिक्री माए 14% और डीजल री बिक्री माए करीब 18% री बढ़ोतरी भी। इन बीच तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल रा मोल माए और बढ़ोतरी करती नी है। ध्यान जोग है कि लाडला 10 दिन माए तेल रा मोल माए तीजी दफा बढ़ोतरी करीची है। लाडला कुछ दिन माए करीब 5 रुपया प्रति लीटर री बढ़ोतरी भी है। केंद्र सरकार विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 रवारा माए जनतारी राय सारू मसौदा नियम जारी की ना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय रे मुजब कोई जनो हितधारक संगठन या संस्था 21 जून 2026 ताई मसौदा नियमों जुड़ी आपत्तियां या सुझाव दे सके है। विकसित भारत जी राम जी कानून 20 साल जूना मनरेगा रिठौर लाइचियो है। नुआ कानून रातेत 1 साल माए 100 दिन री मजूरी री कानूनी गारंटी न बधार 125 दिन करण रो प्रस्ताव है। विकसित भारत जी राम जी कानून 1 जुलाई सगला राज्यां और केंद्र रा राज वाला प्रदेशां माए लागू भे जावेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश माए सोमवार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू करियो जावेला। 5 जून ताई चालन वाला ई अभियान रे दौरान पानी बचावण जुड़िया काम करिया जावेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ई अभियान री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू आज अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। मुख्य सचिव अहलकारा ने पानी बचावण री मुहिम जनता ने जोड़बा सारू कहो। ई अभियान री तैयारियां रा तहत आज सवाई माधोपुर रा जिला कलेक्टर कानाराम ग्रामीण विकास डांग और पंचायती राज विभाग रा अहलकारा री मीटिंग लीनी और जरूरी हुकम दीना। प्रदेश में जैव विविधता और पर्यावरण ने बचावण सारू विलायती बबूल ने हटाया जावेला। इन सारू पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज जयपुर में अहलकारा सागे मीटिंग रे दौरान योजना बनार काम करण सारू कहो। श्री दिलावर बबूल री लकड़ी कोयलो बनावण री योजना बनावण बाबत ही हुकम दीना। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास 21 जून ने उजू ली जावण वाली नीट 2026 परीक्षा री तैयारियां रो जायजो लेवण सारू आज अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। वे परीक्षा ने निष्पक्ष साफ और सुरक्षित तरीका करावण सारू संबंधित महकमा और प्रशासन ने मिलर काम करण बाबत कहो। मुख्य सचिव गड़बड़ी री शंका वाला परीक्षा केन्द्र और जिला माए खास निगरानी राखण और जरूरी तादाद माए पुलिस रा जवान तैनात करण बाबत ही कहो। आ परीक्षा राज्य माए 611 परीक्षा केन्द्र मत है। दोपहर पाछे 2-5 बजे ताई ली जावेला। नीट री ई परीक्षा माए 2,00,000 विद्यार्थियां रे शामिल फेवन रा आसार है। मुख्य सचिव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रा बीकानेर रा प्रस्तावित दौरा री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू ही अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। वे सरहदी जिला माए हिफाजत और निगरानी री व्यवस्था और असरदार बनावण रा हुकम दीना। डीग माए महिलावां और टाबरियां री हिफाजत सारू पुलिस री कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सड़कां बाजारां और कोचिंग सेंटर कने खास निगरानी राख रही है। एसपी कांबले शरण गोपीनाथ बतायो कि लड़कियां ने परेशान करण वाला रे खिलाफ ऑपरेशन डिकॉय रातेत महिला पुलिस सादा कपड़ा पहर कार्रवाई कर रही है। वे बतायो कि BNSS री धारा 170 रातेत बिना वारंट गिरफ्तारियां ही करी जा रही है।
1: जिले में जो कालिका पेट्रोलिंग जो टीम है वो अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर रही है। जैसे बेसिक हेल्पलाइन जो होती है 1090 या 1098 1930, इस तरह से अलग अलग जो हेल्पलाइन है उसका अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंचा देना, साथ में जो सेल्फ डिफेंस है आत्मरक्षा का जो ट्रेनिंग है

0: उसको भी अलग अलग स्टूडेंट्स को स्कूल्स में या कॉलेजेस में जाकर उनको देना, ये भी काम इनके द्वारा किया जाता है। राजकॉप भी सिटीजन ऐप है, जैसे लगभग हर महीने अगर आप देखोगे तो एवरेजन जो है वो 600 जो राजकॉप एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करने का जो टारगेट है वो कालिका पेट्रोलियम टीम ले रही है और उसको पूरा भी कर रही है।
1: कॉलेज छात्रा पूजा बतायो के पुलिस री ओर खुद री हिफाजत री सिखावन देवनु कॉलेज जाते वगत वा बत्ती हिफाजत महसूस करे है।
2: यहाँ पर कालिका यूनिट है वो हमको गाइड करती है कि हमको जैसे घर से बाहर निकलते टाइम या जो कमेंटबाजी करते हैं, छेड़खानी करते हैं, उनको कैसे पुलिस तक उनकी सूचना देनी है, उसके लिए हमको एक ऐप भी बताया गया है, राजकोप ऐप, उसके थ्रू हम उनकी शिकायत कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 1090, जिससे हम बाहर निकलते हैं तो अगर कोई भी दिक्कत होती तो हम उसके थ्रू पुलिस को शिकायत कर सकते हैं।
1: अरे बे मौसम प्रदेश रा उगनी हल्का माए आज आंधी सागे भी हल्की बारिश हूँ, गर्मियों थोड़ी सत्ता मिली। दोपहर पाछे सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, करौली, भरतपुर, कोटा और बूंदी समेत कई जिला माए बादला मंडिया रहा और आंधी चाली। कठे कठे छांटो छिड़को भियो तो कठे कठे हल्की बारिश हुई। दूजी कानी राज्य रा आतुणी और उत्तराध हल्का माए तेज गर्मी रही। मौसम विभाग रे मुजब आवता 2-3 दिन पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़वा रा आसार है, जदका कई ठोड़ा लू बाजण री शंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई दी इतवार ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1-800-117-800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नंबर जो सुन ले राव सा 1-800-117-800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माय खास समाचार एक कर फिर सुन ले राव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकारी नौकरियां जनतारी जिंदगी बेहतर और आसान बनावन रो खास जरियो। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसलमेर जिला रा दांडेवाला फील्ड माए गैस रा नुआ भंडार रो पतो लगायो। प्रदेश माए पानी बचावन री मुहिम रा तेत सोमवार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू करियो चावेला। और राज्य रा उगनी हल्का माए आंधी और हल्की बारिश हूँ, गर्मियों थोड़ी सत्ता मिली, कालू पारो ओजू चढ़वा रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी झालावाड़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनबा वाला सभी किसान साथियों ने आपका साथी कुलदीप शर्मा
2: और संजू को गणो गणो राम राम।
1: संजू बेन आपके तई भी गणो
2: राम राम।
1: संजू बेन, भारत सरकार द्वारा किसान साथियों की कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही है और इनमें से ही एक योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। यह योजना 1998 से शुरू की गई है और जो किसान साथियों ने खेती, पशुपालन और मछली पालन के लिए सस्ती दरों पर लोन प्रदान करे है।
2: देखो कुलदीप भाई, बहुत ही बड़े बात बताई चाहे आपने, किसान नाम में मतलब जागरूक रहनो चाहे जे किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक अच्छी योजना चे ताकि अपना गरीब किसान इसे फायदा उठा सके चे। और इन योजना के माध्यम से जैसे गरीब किसान रह चे वहाँ के पास पैसा न रह चे तो ताकि अपना सरकार के द्वारा जा रहा अपना इनको भी फायदा ले सके चा। और ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना में कुलदीप भाई एक योजना इतनी बढ़िया रह चे ताकि इसे अपना ने 50,000 से 1,00,000 तक भी अपन मुनाफा कमा सके चा।
1: 2026 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन की जो लिमिट है वह बढ़ा करके 3,00,000 से बढ़ा 5,00,000 कर दी गई है।

0: योजना को जो उद्देश्य है, किसान भाइयों ने बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरण और फसल कटाई के लिए खर्च वित्तीय सहायता देबो है।
1: देखो यह तो बहुत ही बढ़िया बात है, जब अपन मतलब योजना ले रहा चाहे तो इन योजना को अपनी लाभ उठाना चाहिए और यह योजना अपन जैसे खेती रह चाहे और खेती से संबंधित कोई भी काम रह चाहे तो समय समय पे अपन आसानी से कर सका चा और इन योजना को मतलब कम यानी कि कम ब्याज में अपन लाभ उठा सका चा किसान साथी। तो यह योजना देखो 2026 से चल रही है और इस योजना में अपन किसान साथी 5 लाख से भी अधिक अपन ई को लोन ले सका चा और लोन ले पास अपन जब भी गरीब किसान रह चे तो वाणी मतलब फायदो मिल जाओ जो बिचाराणी।
0: किसान क्रेडिट कार्ड योजना से ब्याज दर में भी सब्सिडी मिले है और किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो वैधता है वह 5 साल तक रहे है।
1: और देखो इनको मुख्य उद्देश्य भी रहे जैसे समय समय पर ऋण देना यानी कि समय पर जैसे अपने कोई किसान से अपना लोन ला चा मतलब बैंक में जा किसी भी बैंक रह चो तो ऊपर समय समय पर अपने इन पैसा जमा करनी रह ताकि सरकार के द्वारा कतनों अपनी लाभ मिले चो कतनों मुनाफा मिले चे फिर उनको ब्याज कतनों हो चो तो ऊपर अपनी ना गवर्नमेंट अपनी ना छूट दे चे किसाना के ताई तो उनसे अपनी फायदा मिल सके चे। और दूसरी बात रह चे कि जैसे अपन खाद भी ला सका चा बीज भी ला सका चा तो उनको भी अपन समय समय पर अपन जो भी रह चे काम तो उपलब्ध कर सका चा। तो इनको मुख्य उद्देश्य रह चे जैसे साहूकार यानी कि बड़ा बड़ा ये रह चे किसान और यानी कि छोटा किसान भी रह चे गाँव में देखो अधिकतर छोटा किसान ही मिल चे तो वहाँ के ताई भी मतलब किसान के ताई गवर्नमेंट फायदो दे सके चे।
0: संजू बहन खेतीबाड़ी तो आपन कराई हाँ पर खेतीबाड़ी के साथ साथ आपने जरूरी है कि यह जो योजनाएं चल रही है या योजनाओं को आपने जो किसान साथियों ने जानकारी में रखना है और यहाँ की जो लाभ है यहाँ से जो है लाभ प्राप्त आपन के तय लेना है।
1: देखो ताने बहुत बढ़िया बात बताई ची लाभ तो लाभ की बात आई तो लाभ किसान भाई की प्रकार से अपन ले सका चा ताकि किसान भाई लाभ से अपने मतलब जैसे लाभ अपन ऑनलाइन भी ले सका या ऑफलाइन भी ले सका यानी कि को आवेदन अपन अपना बैंक रच किसी भी बैंक रो वो बैंक संबंधित अपन लाभ ले सका चा यानी कि छोटा किसान भी अपन ही प्रकार से लाभ ले सका चा जी जहाँ का मतलब पशुपालन रच या पट्टो रच जमीन को वो प्रकार से भी अपन लाभ ले सका चा। और ये की आवश्यक दस्तावेज रच तो की आवश्यक दस्तावेज काय काय लागे च जैसे अपना आधार कार्ड रच पैन कार्ड रच और जन्म जमीन की जन्मभूमि रह चे यानी कि खाता संख्या बोले चे वहां से तो इसे भी अपना लगार अपना आवेदन कर सका चा। और जैसे अपनी फसल रह चे उन फसल को भी अपन विवरण यानी कि अपने कसी फसल बुआ रखी चे तो उन फसल से भी अपन लाभ ले सका चा। और जैसे अपना छोटा किसान रह चे तो वो छोटा किसानों को ही आवेदन करवा के लेकर 2 फोटो छोटा हो तो वो भी लगा सका चा। और उनके बाद जैसे आवेदन की प्रक्रिया रह चे तो अपन जैसे फॉर्म भरा चा अपनी जैसे मान लो क्रेडिट कार्ड उठानो रच तो उनको अपनी जानकारी कोई ना तो अपना बैंक से संबंधित किसी भी बैंक रहा बड़ौदा बैंक रो या किसी भी सरकारी बैंक रो चो तो उनसे भी अपन वहाँ जार पूछ सका चा और इकी सलाह ले सका चा यानी कि केसीसी बोले चो उनसे तो अपन सत्यापन भी करवा सका चा। और जैसे कि ऑनलाइन प्रक्रिया रच तो ऑनलाइन प्रक्रिया जैसे जनसमृत रह पोर्टल पर जा रहा अपनी इकी बैंक वेबसाइट रह बैंक वेबसाइट से अपन ऐप डाउनलोड कर आवेदन कर सका चा।
0: संजू बहन यह योजना के बारे में मुख्य रूप से आपन यह समझा है कि भाई किसान साथियों ने देखो पैसा की तो जरूरत पड़ती ही रहे
1: सही
0: चे, तो
1: देखो।
0: किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए जो है किसान साथियों के जब जरूरत की टेम के लिए जो यह योजना बड़ी कारगर साबित हो रही है क्योंकि किसान साथिया ने कभी खाद है कभी बीज है कभी कृषि उपकरण है तो ये खरीदनी पड़े है तो इन स्थिति में वहाँ के पास जो है आर्थिक सहायता और लोन के लिए जो है यह योजना बड़ी कारगर हो रही है।
1: और देखो सही बात ही है तो देखो ये योजना की तो अपन बात करी चे और किसान देखो इनको फायदा भी लेना चाहिए जी। और देखो अपन आज बड़ा विषय चे तो आज अपन जानकारी की बात भी लेकर आया चे तो आज जानकारी की बात पे अपन ने चर्चा करी श्रीमती संजू मीणा से बातचीत हुई कि गर्मी में अपन अपना पशु रह चे वहाँ की पशुओं की अपन की प्रकार से देखभाल करा चा तो यह सुनो जानकारी। राम राम।
2: राम राम जी। राम राम।
1: काय नाम छे जी भाई ताको?
2: ओ संजू मीणा छे मारो नाम।
1: अच्छा जी भाई तो कशा गांव का रे बाळो छो जी भाई?
2: मां लसुड़े सा काचा रे बाळो पण मां एकले रे रा चादी।
1: अच्छा लसुड़ सा का चरे बाला और

0: अकलेरे भी रह
1: अच्छे
0: जी भाई। तो ता मतलब अब था का कतनी जमीन छे जी भाई?
1: 40 बीघा
0: ताके 40 बीघा जमीन छे जी भाई। तो ताके 40 बीघा जमीन में मतलब अब फसल वसल तो देखो सारी काट ही दी होगी,
1: मतलब सब काम से फिरी जे काट
0: फिरी हो गया छे जी भाई। तो अब आनी था खेती में काय काम करो छो जी भाई?
1: अब मैं तो कार पटक दी मैं माना।
0: अच्छा आ कार पटक दी
1: ताकि धूप भरा जाएगी मां, तो बड़ा तावड़ो भरा जाओगे तो अब वाली फसल तैयार होकर बगले के खेती बढ़िया या हो जाओगी।
0: अच्छा जी भाई, थाने बड़ी बात बताई, जैसे आप धूप पड़ रही है गर्मी में तो किसान बेने मतलब बने किसान साथी घर पर न बैठे रह ताकि अपनी जमीन का न हकाई जुताई कर दो, यानी कि गहरी जुताई कर, वो गहरी जुताई से मतलब न अपना फायदा हो जाओ, धूप भर जाओ तो फिर अपना बरसात को टाइम आओ च तो उनमें मतलब अपनी दे दिक्कत ना हो चो कीड़ो रह च अंदर से तो वो कीड़ो भी मर जाओ च और अपनी जमीन में जो भी अपन खाद बीज पटकवा तो उसे फायदा हो जाओगे और बढ़िया फसल रह च।
1: हाँ, या बारिश की फसल बढ़िया हो जाओगी,
0: बढ़िया हो जाओ चो। तो ताने बढ़िया करी चे मतलब अब गर्मी में काई जुताई कर दी चे। तो जी भाई ताके पशु कितना चे जी भाई?
1: माँ के तो 2 भैंसा चे, 2 गाय चे, 3 बकरिया चे।
0: अच्छा 2 भैंसा चे, गाय भी चे, बकरिया भी चे ताको। तो ताने देखो कितनी बढ़िया बात बताए जी भाई। ताके भैंसा चे तो भाई भैंसा का तो दूध दे दे ताके एक
1: 10 लीटर दूध दे दे चे।
0: अच्छा एक भैंस 10 लीटर दे दे चे ताके। तो ता 10 लीटर को मतलब घर पे काम ले लो चुका पा पीपा में या वही मतलब आप बेच च?
1: मैं डेयरी पे बेच दा जमा।
0: अच्छा
1: सुबह को तो डेयरी खाना दिया जा, शाम को जो जमा ले जे घी हो जाओ चे, दूध हो जाओ चे, जो खा भी लिया जा थोड़ा ज्यादा घी हो जाओ बेच भी दे दो पीछे काम आ जाओ चे।
0: यह भी बड़े बात है मतलब सही च। अरे यह तो बड़े बात बताए चे, देख किसान महिला ने कुटा पड़ी भी करे चे बिचारी, छाच बलोच घी खाड च फिर वही डेयरी पे भेज और फिर वही बेचे तो वो पीसो बना तो अपना ही काम आओ। हाँ, तो पीसो घर पर तो खर्चो चाल जाओ चे अपनो एक मालूम से खर्चो अपना जो रह चाहिए एक्स्ट्रा खेती जमीन को तो कोई से उदान लेनी पड़े अपने वो पीसा में अपनो काम हो जाओ चे।
1: हाँ, को पीसो बच जाओ चे,
0: बच जाओ चे, वो काम आ जाओ चे अपना
1: काम।
0: वो सही बात है जी भाई। तो जैसे आप पशु की बात आई च अपन ज्यादा गिर तो बेचदा चाह तो उनको पीसो काम हो जाओ। ऐसे अपना पशु की देखभाल गर्मी में की प्रकार से अपन करा चा?
1: गर्मी में टीन सेट कर दिया चाह, पंखा लगा दिया चाह, जानवर आ गए और वाणी हरियो चारो खिला दिया चाह।
0: अच्छा जी भाई,
1: खड़क खड़क आंकड़ा मोल दिया चाह, जब उसको दूध दे ज्यादा दे दे चे, दूध ज्यादा देगी तो बेच भी देंगे और गन्ने भी खा लेंगे, 2 पीसो भी बन जाओगे।
0: तो ये तो देखो अपनो काम रह किसान महिला को, तो आप किसान महिला भी कर सके जी वो काम सही हो
1: सके ना, काम तो करनी पड़े जो तो घर को काम था अपना।
0: अरे काम देखो घर को कई रह महिला के काम,
1: काम रह महिला को तो
0: देखो चूल्हा चौका को भी रह वहाँ के खेती को भी रह जानवरा को भी रह
1: काम रह
0: तो देखभाल
1: भी करना पड़े, खेती को भी करनी पड़े, छोरा छोरी की देख रेख भी करनी, जानवर की भी करनी, सारो काम ही तो छे।
0: या तो सही बात चिर भाई, देख संजू बेड़ था ने बड़े बात बताई छे। तो अपन गर्मी का सीजन में देखो सीजन अब लू चल रही थी तो लू के लेकर था की प्रकार से अपना जानवर की बचत कर सका था?
1: वहाँ का पंखा वंखा लगा दिया चा, बार बार वाणी नहीं लावा चा, पानी ठंडा पानी से मोटर लाग रही चा, जो मोटर की नर्ची लगा दिया चा वहाँ का।
0: अच्छा जी भाई।
1: हाँ, और वो छोटा बचड़ा रह चा जानी ठंडा पानी को टाट वाट बोरी को टाट डाल दिया चा, जो वहाँ का लू न लग गए अच्छा यहाँ कोई रखना चा वहाँ का बढ़िया।
0: या तो कितनी बड़े बात बताई था ना, जैसे छोटा बच्चा रह च बासरा रह च मतलब तो बेचारा अन बोलो जानवर रह च वो थोड़ी बोले चा अपन से, अपनी देखभाल करनी पड़े वहाँ की। तो अपना जानवर आके अपनी देखभाल करवा तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगो और देखो वहाँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगो तो अपना भी दिक्कत न रहेगी, न तो स्वास्थ्य वहाँ को ठीक न रहेगा पशुओं को तो अपन चिकित्सालय भी चल जावा, हर देसी दवाया भी उपचार कर ला, लेकिन टाणी न लागे तो अपनी जी का पहले अपन यो वहाँ को सुझाव दे रहा चाहे भाई धूप में लूम में वहाँ का ताए पल पल में पानी खुआओ, पल पल में हरो चारो खुआओ। तो जी भाई हरो चारो भी खुआता होगा जी भाई?
1: हाँ हरो चारो खुआवाणी, अरे भी खुआ बस उगलो भी मरला चा वाणी, बस उगला में थोड़ा सा दड़े उड़े डाल दिया चा जो वगैरह मरला जा तो चारों बढ़िया खा ले जाए तो पानी पीवा मत जाओ जानवर आ।
0: भैया तो बड़े बात है, गर्मी को टाइम से देखो बार बार पानी तो आप देखो
1: पानी बार बार खुआ
0: अपन देखो किसान से तो अपन भी तो देखो पानी बना रहा चाह तो ऐसे वहाँ को भी स्वास्थ्य को ध्यान रख लो चाहिए, पल पल में देखभाल करो, छाया में बांधो, वाणी लू से बचाओ। तो यो अपनो किसान महिला को काम रचियो तो देखो काम से देखो मरे भी कोई ना, काम तो अपने घर को
1: करनी पड़े
0: करनी पड़े।

0: तो सही बात है जी भाई। तो ताके कतना बीघा को चारो बुआ रखे जी भाई?
1: मगे एक बीघा को बुआ रखे जब सुल्ट बुआ रखे।
0: अच्छा, एक बीघा को बुआ रखे जी भाई। या तो बड़े ही बात है, ताकि जितनो आरो चारो ताकि लाऊगा जितनो पशु को स्वास्थ्य ठीक रहेगा और उसे दिक्कत भी ना होगी। और दिक्कत जब आओ ताकि अपन की देखभाल टाइम पर न करे वहाँ, तो जब ये वहाँ जानवर आके पशु आके दिक्कत आ जाओ
1: तो बार बार वाणी देख रेख तो करनी पड़े,
0: करनी पड़च
1: वाणी पानी पवानी पड़े, वाणी नीलानी पड़े और वहाँ के चारा पानी की सबकी व्यवस्था करनी पड़च,
0: करनी पड़च। किसान महिलाएं भी सही हो करनी पड़च। ये तो अशो ही काम रहे। देखो संजीव बहन, अपन देखो खेती बाड़ी कर रहे थे, देखो गर्मी में अपना पशुओं की देखभाल तो करबो जरूरी रहे जी भाई। ताकि बकरियां भी चाहिए भाई, तो बकरियां को मतलब देखो दुगनो पीसो भी बन जाओ च, और बकरी अपन एक साल में दो बार भी आए या तो उनको अपन बेच दा चा फिर वही निकाल दा फिर दूध दू पीसो बन जाऊ अपने ही काम आ जाओ।
1: बकरिया दो दो बच्चा भी दे, बकरिया
0: दो दो बच्चा दे तुम फायदो ही। तो
1: बारह महीना में दो बार भी आया
0: तू तो देखो तो एक डबल पीस हो गयो ना, दुगुनो पीस हो गयो अपना। अच्छा हो गयो, एक तो अपन ने एक बकरी खरीद ली है ना, तू को डबल मुनाफा मिल गयो अपनी,
1: तू बकरा बकरी मंदरो फायदो
0: फायदो रे। और यार देखो गरीब की मतलब यार रह जाओ तो गरीब की गाय बोले छे उसे बकरी से, यानी कि किसान रह जाए तो बेचारा को सहायता कर दे बकरी।
1: हां वो कभी भी इमरजेंसी पीसो अच्छा जाओ तो बकरा बकरी पीसो आ जाओ,
0: पीसो आ जाओ छे। तो या तो बड़े बात रह छे। और दूसरी बात, अपन पशु रखो जितना पशु रखो जितने अपना खाद बीज भी कर दोगे गोबर को।
1: हाँ, गोबर खाद भी उसे तो नहीं होगा, गोबर खाद भी
0: तो जैसे जी भाई अपना गोबर को खाद रह चाहिए तो अपन गोबर का खाद लेकर जैसे अपने अपन गोबर को खाद रहे चे, तू गोबर का खाद ही अपने घर पे काम लो चे या बेचो चो ता?
1: मैं तो खेत में पटक दिया था, जमीन में डाल दिया था खेत
0: पर। अच्छा खेत पर डाल दो
1: चो ता? बढ़िया हो चे।
0: अच्छा जी भाई,
1: गाँव का बा गाँव का बावा चमा।
0: अच्छा
1: शरीर बढ़िया रह चो, स्वस्थ शरीर रह।
0: और स्वास्थ्य शरीर रह तो देखो बढ़िया ही बात रह चो, तो देखभाल भी बढ़िया हो जाओ चे और स्वास्थ्य को ठीक भी रह चो। तो सही बात बताई
1: यार, यहाँ से तो जमीन भी खराब हो रही जैसा, तो यूरिया डीएपी रे फालतू खाद चार।
0: तो देसी खाद अपना जमीन के लिए स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रह जाऊ, तो उसे अपना जैसे आप गोबर को खाद अपन संजू बहन घर पे तैयार कर लो चो ता। हां
1: ये खाड़ो को नेता बड़ो सो गड्ढो बना लिया जा, ओमा डालता रहा था बारिश को पानी गिरे जो सड़ जाओ जे।
0: अच्छा
1: खराब हो जाओ जैसे पे खेती में फला दे जा, फिर उमें फसल बा दे जा उनकी फसल बढ़िया हो जे।
0: फसल को नाम लियो तो आने फसल बड़े हो जाओ जी का अपना अनाज कड़ चे, यानी कि जैविक खाद बोले चो, तो अपन जैविक खाद घर पे भी बना सका चा। जैसे अपना कूड़ो कचरो रह चे उनको गड्ढो खोद लो उमो पटक दो सड़ो बसो रे वे, तो उसे भी अपन देसी खाद बना सका चा घर पे। और यो देसी खाद बनावा को सरल तरीको रह चे, यो तो उम तो कोई अपना पीसा भी नहीं लाग रहा, एक गड्ढो खोद और उम अपने यो पटक दो उम पाक जाओ चूका, फिर अपना खेती में काम ले लो
1: हुई। और खेती बढ़िया हो,
0: खेती भी बढ़िया हो। देख अपन देखवा में आवा चाह के तरह तरह की बीमारी, जैसे कैंसर की बीमारियां हो रही, हार्ट अटैक की हो रही, अपन देखवा में छोटा छोटा बच्चा के हार्ट अटैक आवा लागे तो यो क्यों आओ चे?
1: वो काय खान पान की वजह से आओ चे। आजकल अपन एक बीघा में दो कटाई डाल दा तीन कटाई फसल ले बागा चक्कर में ज्यादा खाद डाल दिया चा, तो जमीन में भी गर्मी, तो गर्म जमीन में गर्मी रहेगी तो अनाज में भी गर्मी, वही अपन खाऊंगा तो अपने अंदर भी गर्मी रहेगी, गर्मी रहेगी तो शरीर स्वस्थ ना रहो तो बीमारियां तो होनी जी।
0: यह तो बड़े बात है जी भाई, देखता ना कितनी बड़े बात बचाए। जैसे अपन मान लो स्वास्थ्य की बात आए तो स्वास्थ्य को अपन देखभाल ही प्रकार से करा, ताकि अपना शरीर को भी स्वास्थ्य ठीक रहोगे और अपना जानवरों को भी ठीक रहोगे। उसे
1: जानवर भी बढ़िया रहेगा, वो गोबर खाद को भी जो चारो खाओगा तो।
0: और यह तो सही बात, जैसे आप गर्मी को सीजन रह जा तो गर्मी का सीजन में जैसे अपना सब्जी बोवा चा अने कई तो सब्जियां बोआ जी, सब्जियां में भी वो खाद ही डाले चे, तो जिकी बेगो देसी खाद डालो
1: चा। मैं देसी खाद ही डाला था जो सब बढ़िया, अब मान ये काय बैंगन लगा रहे क्या चे, टमाटर लगा रहे क्या, मिर्ची भी लगा रखी चे,
0: तो जी भाई ताकि बढ़िया भाव में बिक जाता है खीरा टमाटर को सीजन भी चे।
1: अब तो बढ़िया बिक जाओ चे,
0: तो कितना बीघा का लगा रखे जी भाई? तान
1: एक बीघा भरिया का लगा रखे।
0: अच्छा बीघा भरिया का साग सब्जी रूम में फल फ्रूट लगा दिया,
1: बीघा भरिया में चे ककड़िया खीरा साग सब्जी सब बीघा भरिया में चे।
0: तो जी भाई देखो ताए किसान महिला चे है ना, तो ताम कतनो हुनर चाहे खेती के साथ साथ अपन सब्जी भी कर लो, तो सब्जी जितनी बोआ जितना अपना फायदो रहो। जैसे अपन मतलब बाजार में 10 रुपए किलो में मिल रही, तो अपन दुगनी कीमत से भी तो बेच सका चाहे वो सब्जी बेटर बेचो।

0: किलो जा रहा है।
1: अब तो कतनो फायदो रे, तो अगर बेटे खेती के साथ साथ खा भी लो और बेच भी दो तो उनका पीसा अपना जितना भी मन लगा तो अपना आप काम आ जाओगा वो पीसा।
0: अगर बोकर जो भी चाल जाओ और अपने भी बढ़िया शुद्ध सब्जी खा रहा जाओ,
1: शुद्ध सब्जी खा रहा। देखो कितनी बढ़िया बात च, तो जी भाई ता मई किसान महिलाएं मतलब काहे के बचाओ जी भाई, सलाह का तौर पर जैसे अपना पशु रच और अपना जानवर रच तो वहाँ की गर्मी में की प्रकार से देखभाल करना चाहिए और अपना स्वास्थ्य की भी कैसे देखभाल करना चाहिए, और दूसरी बार गर्मी का सीजन में कैसी कैसी सब्जियाँ लगानी चाहिए ताकि अपनी प्रोटीन मिल जाए।
0: अब बैंगन भी लगा रहे क्या, सब्जियाँ तो सभी लगा रखी जो बैंगन टमाटर गोभी भी लगा रखी जो।
1: अच्छा जी भाई,
0: थोड़ी सी मेथी पालक भी बाहर रखी हो जाए, पर मेथी पालक गर्मी में कम चाला जो।
1: अच्छा जी भाई,
0: गर्मी की वजह से
1: तो ता किसान महिलाएं मतलब सलाह का तौर पर कहे के बोझाओ जी भाई, कब अधिक से अधिक पशुपालन करना चाहिए।
0: हाँ, जानवर ज्यादा रखानी चाहिए, पशुपालन ज्यादा रखानी चाहिए ताकि उसे अपनी खाद भी मिले चे, दूध भी मिले चे, सभी काम हो जाए। तो
1: देखो संजू बहन ताने कितनी बड़ी बात बताए, ताकि अपन जैविक खेती करवा तो अपनी अधिक तो लाभ मिलोगो, अधिक से अधिक मुनाफा मिलोगो, और अपन जैविक खेती क्यों करा, अपना फायदा के लिए अपन जैविक खेती करा चा। और किसान भाई किसान बहन से ता यही तो के बोचाओ चे भाई, अधिक से अधिक अब पहली जैसी खेती करो, मतलब जैविक खेती करो, जैसे अपना पुराना जमाना से अपना खेती करता आ रहा ना वैसी खेती करेगा तो स्वास्थ्य को भी ठीक रहोगे और ये जितनी भी बीमारियां रहे वो जड़ से खत्म हो जाओगी।
0: हाँ, गोबर खाद की तो खेती अलग रहे, उनको तो नाज भी अलग ही रहे, बढ़िया रहे, शरीर भी स्वस्थ रहे,
1: स्वस्थ रहे, ताकि अपन स्वास्थ्य के लिए ही तो अपन खेती करा चाहे, अपना स्वास्थ्य रहोगो, अपने तरह तरह की बीमारियां सुनवा माँ आवा चाह तो बीमारियों को अपनी डरने लागो, क्योंकि अपन जैविक खेती करवा ना
0: तो गोबर खाद को अनाज खावा तो शरीर भी बढ़िया रहे,
1: शरीर भी बढ़िया रहे,
0: बीमारियां भी ना हो
1: सही। और देखो देखो आज की दुनिया में मतलब जैविक खेती की जरूरत पड़वा लागी।
0: हाँ, ये तो खाद भी ज्यादा खा सा तो जमीन भी खराब हो रही,
1: जमीन भी खराब हो रही,
0: खराब हो रही, जानवर में भी कई तरह की बीमारियां हो रही, इंसान में भी बीमारियां हो रही, क्योंकि गर्मी सर या गर्मी लू ज्यादा जिसने पड़ रही।
1: हाँ देखो ताने बड़े बात बताई, लू कैसे पड़े, जैसे एक तो अपन ना किसान काय करे जब पौधा लगाओ चो खेता का आसपास मेड़ पर है ना, तो वहाँ भी कटिंग कर दे, जबकि वहाँ की ना मतलब कटाई ना करना चाहिए, नया पौधा लगानी चाहिए जी भाई।
0: पौधा तो बहुत कम लगा रहा है, काट ही काट जाता रहा है, जंगल कट रो पेड़ पौधा कट रहा है, जिसे गर्मी बढ़ रही है, वहाँ
1: बढ़ रही चाहे तो ताकि अपना पर्यावरण भी शुद्ध रखना चाहिए।
0: पर्यावरण शुद्ध जब भी तो रहो पेड़ पौधा लगाओ,
1: पेड़ पौधा लगाओ, जब भी
0: पेड़ पौधा ही ना रहेगा तो पर्यावरण कहाँ शुद्ध रहोगे,
1: कहाँ से बचोगे, देखो
0: कहाँ से बचोगे, जिसे त्या गर्मी पड़ रही
1: है। या सही बात है, जैसे अपन जमीन बंजर क्यों हो रही है, जमीन बंजर यूं ही हो रही है क्योंकि अपन ना दूसरी दूसरी खाद पर ध्यान दे रहे हैं, जैविक खेती पर ध्यान न दे रहे हैं, गोबर का खाद पर ध्यान न दे रहे हैं।
0: आजकल लोग बाग जानवर कहाँ रखे थे ज्यादा, जानवर रखनी चाहिए।
1: सही बात है संजू बहन, अधिकतर अपन जानवर रखवा तो दो फायदे मिलेगा अपनी, एक तो मुनाफा ज्यादा और एक अपन जमीन की लागत कम हो जाओगी और उनको जो भी अपनों आमदनी मिलेगी तो वो ज्यादा मिलेगी,
0: खेती भी खराब ना हो
1: और खर्च भी कम होगा अपना, तो सही बात है। देखो संजू बहन अपना किसान बहन ने अपना किसान साथियों ने भी यही सलाह देना चाहिए कि जैविक खेती करना चाहिए, पशुपालन करना चाहिए ताकि अपनी लाभ मिले चे। संजय बहन इकले के तान बहुत बड़े बात बताए चे, राम राम,
0: राम राम जी, राम राम।
2: तो प्रगतिशील किसान महिला से जो गर्मी में पशुओं की देखभाल श्रीमती संजू जी मीणा लसूड़िया शाह यहाँ से हुई जो बातचीत अभी आपने सुनी, निश्चित तौर पर जो आपने जो किसान साथी है वह गर्मी में जो पशुओं की देखभाल के लिए वसा तो प्रबंध कर ही रहा है, ने जो योजना के बारे में बातचीत की है, ऐसा ही जानकारी की बाता में एक और जो योजना है वह है ग्रामीण आवास योजना।
1: बहुत ही बड़े बात लेकर आए छे जी भाई, तो यह भी बहुत ही बड़े योजना छे, जिसे ग्राम आवास योजना यानी कि ग्रामीण की यानी कि गांव की योजना रह छे, तो ये गांव में जैसे गरीबी किसान भी रह छे बेचारा, तो वहां से अपनी मदद न हो छे तो ई के द्वारा जैसे कोई जूंगी झूपड़िया मर रहा छे, कोई जीण सीण बस्ती रह छे उमर रहा छे, तो ये योजना के माध्यम से अपना किसान भाई लाभ उठा सके, तो यह योजना भी बहुत बढ़िया रहे, और ये योजना को मुख्य

0: आज भी कई जगह आपन देखा तो वह कच्चा है, झुग्गी झोपड़ियां में निवास कर रहा है और वहाँ के लिए जो है सहायता के लिए यह योजना चल रही है। और योजना में सहायता राशि के लिए लाभार्थी को घर बनवावा के लिए सीधा वहाँ का बैंक अकाउंट में ही जो राशि है वह आ जावे है।
1: आ जाओ जो। और देखो ये कि यो को यो भी रहे का अपन जैसे अपन यो योजना में अपन लाभ ले सका चा, तो ये में गरीब किसान यानी कि कोई रोड पर बेचारा गरीब इंसान रहे जुंगी झोपड़िया मरे रहे, तो यो भी तो लाभ उठा सके चे ये योजना को, तो वो भी फायदा उठा सके चे। और ये में अधिकतम देखो जाओ चे तो ये में अपना 1 लाख से लगा 1.5 लाख तक को अपने लाभ मिल सके, मुनाफा मिल सके चे। और किस्ता के अकॉर्डिंग ये में अपना सीधा ही पेमेंट खाता में आ जाओ चे। तो
0: बिल्कुल संजू बहन, आपने बताई।

0: के लिए सीधा वहां का बैंक अकाउंट में ही जो राशि है वह आ जावे है।
1: आ जाओ जो। और देखो ये कि यो को यो भी रहे का अपन जैसे अपन यो योजना में अपन लाभ ले सका चा, तो इमें गरीब किसान यानी कि कोई रोड पर बेचारा गरीब इंसान रहे जुंगी झोपड़िया मरी रहे, तो यो भी तो लाभ उठा सके चे ये योजना को, तो वो भी फायदा उठा सके चे। और इमें अधिकतम देखो जाओ चे तो इमें अपना 1 लाख से लगा 1.5 लाख तक को अपने लाभ मिल सके, मुनाफा मिल सके चे। और किस्तों के अकॉर्डिंग इमें अपना सीधा ही पेमेंट खाता में आ जाओ चे।
0: बिल्कुल संजू बहन, आपने बताई जैसा कि 1 लाख से 1.5 लाख, तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग जो है वह सहायता राशि जो है वह आवे है। जैसा कि मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 रुपया तक की सहायता जो है वह लाभार्थी के खाता में आ जावे, और साथ ही जैसा पहाड़ी क्षेत्र में यदि अपन बात करा तो 1,30,000 रुपया तक की जो राशि है वह लाभार्थी का जो सीधा बैंक अकाउंट में आ जावे। और ग्रामीण आवास योजना का जो अतिरिक्त लाभ की अगर आपने बात करा तो लाभार्थियों के लिए मनरेगा के तहत अकुशल जो मजदूरी है 90 से 95 दिन की, और साथ ही साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी ग्रामीण आवास योजना में मिल रही है।
1: ओ देखो कुलदीप भाई या तो कतनी बढ़िया बात बताई चे। जैसे इमें मनरेगा कार्य चाल रहे चे, तो इमें भी मतलब किसान साथी रह चे गरीब, तो उमें से अपना या बोले चे तो उमें अपना रोज ये हाजिरी लगा सका चे, उनको भी पेमेंट अपना आ जाओ चे। तो यो मतलब ई को भी रोजगार गारंटी योजना को भी बढ़ा दियो चे, तो इमें भी गरीब किसान आके लाभ हो जाओ चे बेचारा आके। तो यो भी अपना देखो बहुत ही बढ़िया फायदा रहे चे। और अपना जैसे अपना घर बनावा चा तो घर की न्यूनतम आकार च 25 वर्ग मीटर को, और 25 वर्ग मीटर को होना चाहिए जी स्वच्छ, यानी कि खाना पकाने की जगह भी बढ़िया होनी चाहिए जी। और एक शौचालय भी गवर्नमेंट के द्वारा बना सका चा, तो उम भी 12,000 को अपनी लाभ मिल सके चा अगर यो बना सका चा। तो यो भी देखो जरूरी रह शौचालय घर घर, तो इकी भी सहायता अपनी सरकार के द्वारा मिल सके चे। और मनरेगा रह चे, तो ई के माध्यम से भी किसानों के ताई लाभ मिल सके चे। तो या तो बहुत ही बड़े बात चे, और ई को देखो फायदा भी लेना चाहिए जी। और इकी पात्रता की बात कर रहा चे अपन, इमें कहीं कहीं यो छावे चे, तो इमें यो योजना ऐसी रह चे इमें किसाना की कच्ची दीवारा रह चे या छत रह चे, तो उन छत डलिया के बाद में भी किस्ता 3 किस्ता में अपन फायदा उठा सका चे।
0: अच्छा, 3 किस्ता में आवेगा पैसा?
1: हाँ, यानी कि पहले तो उनकी दीवारा करो, फिर उनमें मतलब हाजरी दो, चाल तो रच नरेगा को काम चाले ना वसिया, फिर उनका नरेगा का चाल, फिर छत डलाओ, फिर उमा 1 किस्त मिल जाओगी, फिर अपन छत को काम हो, फिर प्लास्टर वलास्टर चाल तो रच। तो ऐसा कर किसान मतलब किसानी 3 किस्ता में ये फायदो मिल जाओ छ लाभ। देखो ये तो बातचीत तो चलती रहे, पर देखो बीच बीच में मनोरंजन भी करनो चाहिए। और देखो मनोरंजन करवा से अपना किसान साथियों को मन भी हल्को हो जाओ। और तो देखो आज अपन सुना यो लोकगीत।
0: तो संजू बेन, कसो लोकगीत आप सुना रिया हो?
1: तो लोकगीत सुनो चे, देखो आज अपन लोकगीत सुनो चे मीठा खरबूजा की बेल। तो देखो यो लोकगीत भी सुन लियो चे। देखो कुलदीप भाई गणो बढ़िया बातचीत चे कि मनोरंजन भी हो जाओ चे, और देखो ईसा अपना अपन बोर न हो चा बीच बीच में, तो सही बात है मनोरंजन भी करबो जरूरी रहे।

0: घणो ई प्यारो सो इहो लोकगीत आपने सुनायो मीठो खरबूजा री बेल। संजू बेन जैसा जो है अपना कार्यक्रम को टीम भी हो रही है पूरो, तो आपका साथी कुलदीप शर्मा के तई
1: और संजू को दो आज्ञा
0: राम राम साहब।
2: अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी झालावाड़ है।

हम आकाशवाणी झालावाड़ से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, इन्हें हम मुंबई से रिले कर रहे हैं।

0: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय माला। आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत की जानी मानी अदाकारा नरगिस ने। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का शेष भाग।
1: हमने राजस्थान में फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग की और वहाँ का जिक्र बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं कि हमने वहाँ शूटिंग की है, बल्कि इसलिए कि वहाँ के लोगों में जो हौसला, जो भाईचारा देखा, वो हमारे मुल्क के लिए और दुनिया के लिए मिसाल है। आप खुद ही गौर कीजिए, पानी न बरसा हो, जहाँ एक हरी पत्ती की तलाश में आंखें पथरा जाएं, जहाँ के लोग भूख प्यास का सामना करते हुए तपती हुई रेत पर चलकर मीलों दूर से पानी ले आएं, मगर अपने गांव को न छोड़ें, उन्हें अपनी धरती से कितना प्यार होगा। करीब 2 महीने हम लोग वहाँ रहे, मुश्किल से 10-12 घरों का गांव था। वहाँ के सब लोग हमसे इतना घुल मिल गए थे कि जब हम लोग वहाँ से चलने लगे तो उनकी आंखों में आंसू थे। हम भी अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे और सुनील की तो अजीब ही हालत थी। उन्होंने कहा कि मैं अपना टेंट खुद उखाड़ूंगा। उस वक्त सुनील की आवाज़ रुंधी हुई थी, दिल भरा हुआ था,

और शायद वो अपने आप को काबू में रखने के लिए खुद से जंग कर रहे थे। हम लोग शुक्र गुजार हैं उन गाँव वालों के जिन्होंने हमें प्यार और मोहब्बत का ना खत्म होने वाला खजाना दिया। बेशक जैसलमेर के उस गांव के वो लोग हमारी तहजीब का जीता जागता नमूना हैं। आखिर में अपने सुनने वालों को रेशमा और शेरा का गीत सुनवाती हूँ जिसे बाल कवि बैरागी जी ने लफ्जों का जामा पहनाया है और राजस्थान के उस इलाके की पूरी मंजर कशी की है। संगीतकार हैं जयदेव और जयदेव के लिए ये जरूर कहूंगी कि जयदेव ने कभी दौलत के आगे सर नहीं झुकाया। वो म्यूजिक उतना ही देते हैं जितनी जरूरत होती है, बल्कि जयदेव एक ऐसा कलाकार है जो गीत को संगीत से सजाता है, गीत के लिए संगीत को बेचता नहीं। लीजिए रेशमा और शेरा का ये गीत सुनिए।

तो दोस्तों, ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम। फौजी साथियों की सेवा में इसे प्रस्तुत किया फिल्म जगत की जानी मानी अदाकारा नरगिस ने। विविध भारती के संग्रहालय से ये रिकॉर्डिंग हम खास आपके लिए लेकर आए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को दे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: आप हैं विविध भारती के संग
1: जिज्ञासा।
0: जिज्ञासा जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है चाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना और चाय उद्योग से जुड़े हुए लोगों की तरफ ध्यान खींचना। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस साल 2005 से मनाया जा रहा है, लेकिन पहले ये दिन 15 दिसंबर को मनाया जाता था। साल 2015 में यूनाइटेड नेशंस के खाद्य और कृषि संगठन ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में इंटरनेशनल टी डे मनाने का एक प्रस्ताव रखा और 21 दिसंबर 2019 को इसे एक्सेप्ट कर लिया गया और 21 मई को इंटरनेशनल टी डे घोषित कर दिया गया। 21 मई 2020 को पहली बार इंटरनेशनल टी डे मनाया गया था और तब से आज तक लगातार टी डे मनाया जा रहा है। आप जानते होंगे कि भारत की कुछ चाय बहुत ही मशहूर हैं, जैसे असम की रोंगा साह। ये असम के चाय बागानों में उगने वाली खास चाय होती है। ये हल्के भूरे और लाल रंग की होती है। बंगाल की दार्जिलिंग चाय का नाम तो हम सभी ने सुना है और इसे चाय की शैंपेन कहा जाता है। तमिलनाडु की नीलगिरी चाय नीलगिरी पहाड़ियों पर उगाई जाती है और इसमें मसालों का भी फ्लेवर आता है। और कश्मीर की नून चाय जो बहुत ही अलग तरह की चाय होती है। अब जानते हैं कि चाय की खोज किस तरह से हुई थी। कहते हैं कि करीब 2700 ईसा पूर्व चीनी शासक शेन नुंग बगीचे में बैठे गर्म पानी पी रहे थे, तभी एक पेड़ की पत्ती उस पानी में आ गिरी, जिससे उसका रंग बदला और पानी एकदम महक उठा। राजा ने चखा तो उन्हें इसका स्वाद बड़ा पसंद आया और इस तरह से चाय का आविष्कार हुआ। एक और कहानी के मुताबिक 6वीं सदी में चीन के हुनान प्रांत में भारतीय बौद्ध

भिक्षु बोधिधर्म बिना सोए ध्यान साधना करते थे। वो जागे रहने के लिए खास तरह के पौधे की पत्तियों को चबाया करते थे। बाद में यही पौधा चाय के रूप में मशहूर हुआ। चीन में शुरुआती दौर में चाय को एक औषधि, एक दवा माना जाता था। लोग ये मानते थे कि चाय पीने से दिमाग तेज होता है, हाजमा बेहतर रहता है और शरीर में जोश व खरोश बना रहता है। भारत में चाय अंग्रेजों की देन है। वही भारत में चाय लेकर आए थे। साल 1834 में जब गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक भारत आए तो उन्होंने असम में लोगों को एक तरह की पत्तियों को पानी में उबाल कर दवाई की तरह पीते हुए देखा था। दरअसल ये चाय की ही पत्तियां थी। बेंटिक ने असम के लोगों को इन पत्तियों के बारे में बताया और इस तरह से भारत में चाय की शुरुआत हुई। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी लेकर आए हैं और वो है प्रोफेशनल टी टेस्टर का करियर कैसे अपनाया जा सकता है। दरअसल ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें चाय की क्वालिटी, खुशबू और चाय के टेस्ट को परखने का काम किया जाता है। अगर आपको चाय की अलग अलग वैरायटी को समझने में दिलचस्पी है और अगर आप ये करियर अपनाना चाहते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। प्रोफेशनल टी टेस्टर का काम चाय पीना नहीं होता, बल्कि वो चाय की पत्तियों की क्वालिटी, उसकी एरोमा, रंग और उसके टेस्ट को बड़ी बारीकी से जांचता है। इसके अलावा टी टेस्टर चाय के नए ब्लेंड तैयार करता है, मार्केट ट्रेंड को समझता है, ग्राहकों की पसंद के हिसाब से फ्लेवर चुनने का काम भी करता है। बड़ी बड़ी चाय कंपनियों में और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में टी टेस्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। टी टेस्टर बनने के लिए कोई एक तयशुदा डिग्री या कोर्स नहीं होता, लेकिन फूड साइंस, एग्रीकल्चर, बॉटनी या हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कोई कोर्स आपने किया होगा तो इससे काफ़ी मदद मिलती है। भारत में कई संस्थान टी टेस्टिंग और टी मैनेजमेंट से जुड़े हुए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स करवाते हैं। सिलीगुड़ी में कुछ संस्थान है जो 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं, जहां चाय की पहचान, टेस्टिंग की टेक्निक और क्वालिटी चेकिंग सिखाई जाती है। इसके अलावा इंटरनेशनल टी मास्टर्स एसोसिएशन और यूके टी एकेडमी जैसे संस्थान विदेशों में हैं और सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं। इस फील्ड में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके भीतर ये काबिलियत होना चाहिए कि आप चाय के स्वाद और उसकी खुशबू को बारीकी से पहचान पाएं। इसके अलावा धीरज, ऑब्जर्वेशन स्किल, फूड टेस्टिंग की समझ और मार्केट नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको चाय की उत्पादन और उसकी प्रोसेसिंग की जानकारी होगी तो इससे एक्स्ट्रा मदद मिलती है। इन दिनों गर्मी बहुत ज्यादा तेज पड़ रही है। जब धरती आसमान तपते हैं तो इंसानी संवेदनाएं ठंडी पड़ जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या शानदार डायलॉग है, पर असल में ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है। वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि दुनिया के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर हमारे शरीर पर पड़ता है और हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। लेकिन अब ये भी पता चला है कि इसका असर हमारी भावनाओं और हमारे मूड या हमारी मनोदशा पर भी पड़ता है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी समेत दुनिया के कई संस्थानों से जुड़े वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की। उससे पता चला कि गर्म मौसम में लोगों की भावनाएं नेगेटिव और निराशाजनक हो जाती हैं। अध्ययन में ये पाया गया कि जब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो सोशल मीडिया पर लोगों के पोस्ट नेगेटिव हो जाते हैं। ये असर कमजोर देशों में कहीं ज्यादा साफ नजर आता है। ये स्टडी 157 देशों में की गई, 120 करोड़ से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट का एनालिसिस किया गया। 2019 में ये पोस्ट आई थी। 65 अलग अलग भाषाओं में की गई इन पोस्टों को पढ़ने समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक

रखने के लिए भी बहुत मददगार होती हैं। ये पौधों के प्रजनन में बहुत मदद करती हैं, जिससे जंगल और खेत दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। और मधुमक्खियों के जरिए गांव के लोगों को जो रोजगार मिलता है वो अलग है, क्योंकि शहद और मोम जैसे उत्पादों के जरिए लोग अपनी जिंदगी चलाते हैं। पर क्या आपको पता है कि आजकल मधुमक्खियों की तादाद तेजी से घट रही है, और इसके पीछे वजह है जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, रासायनिक कीटनाशकों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। यदि ये स्थिति ऐसे ही बनी रही तो आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण दोनों पर गंभीर असर पड़ सकता है, इसलिए इनके संरक्षण की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। साल 2026 में विश्व मधुमक्खी दिवस की जो थीम थी वो थी लोगों और धरती के लिए साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी जो हम सभी को बनाए रखती है। दरअसल ये मधुमक्खी और इंसान के रिश्तों को दिखाने वाली थीम है। हजारों सालों से इंसान और मधुमक्खियां एक दूसरे से जुड़े हैं। लोग शहद के लिए मधुमक्खियों को पालते हैं और बदले में मधुमक्खियां कुदरत का संतुलन बनाकर रखती हैं। आधुनिक तकनीक हो और पारंपरिक ज्ञान, अगर ये आपस में मिल जाएं तो मधुमक्खी पालन ज्यादा सेफ तरीके से और ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से किया जा सकता है। मधुमक्खियां ये याद दिलाती हैं कि ये जीव भले ही छोटा सा है लेकिन धरती के लिए बड़ी भूमिका निभाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक चीज को लेकर हम सभी को बहुत ज्यादा खबरदार किया है। WHO ने यह बोला है कि सीसा या लेड इंसान के भीतर पाया जा रहा है। WHO के अनुसार हर साल तकरीबन 35 लाख लोगों की मौत दिल से जुड़ी बीमारियों से होती है, और इसका सीधा सीधा ताल्लुक है लेड के जहर से। दुनिया में तकरीबन 81.5 करोड़ बच्चे सीसे के कांटेक्ट में हैं, लेड के कांटेक्ट में हैं, यानी दुनिया का हर तीसरा बच्चा। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि लेड शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक मेटल है, और इसका असर सबसे ज़्यादा बच्चों पर, प्रेग्नेंट महिलाओं पर और लेड इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ता है। अगर लेड हमारे शरीर में जाता है, खासतौर पर बच्चों के शरीर में, तो उनकी मानसिक क्षमता पर असर पड़ता है, और इसके अलावा पढ़ाई और सोचने समझने की शक्ति, और इसके अलावा उनकी कमाई, इन सब पर बहुत गहरा असर पड़ता है। दिल, दिमाग, किडनी और हमारे तंत्रिका तंत्र पर लेड बहुत बुरा असर डालता है। पूरे देश में जेठ के महीने में गर्मी अपने प्रचंड रूप में होती है, और यही वो दिन है जब नौतपे की शुरुआत होती है। अगले हफ्ते में नौतपा शुरू हो जाएगा। 25 मई से 2 जून तक के ये 9 दिन हैं जब गर्मी अपने चरम पर होगी। इस दौरान तेज लू चलेगी और झुलसा देने वाली धूप जो सीधे हमारे दिलो दिमाग पर असर डालती है। ज्यादा पसीने की वजह से शरीर से पानी और जरूरी मिनरल्स तेजी से बाहर निकल जाते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन, कमजोरी, सिर दर्द और हाजमे से जुड़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये जो समय है नौतपा का, जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसे में कैसी खुराक लें? ऐसी खुराक जो पचने में हल्की हो और जिसमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में हो। यानी ऐसे दिनों में आपको अपनी डाइट में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, संतरा जैसी चीजें शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनमें 90% पानी होता है। और एक बात यह है कि शरीर में ऐसे दिनों में फ्लूड बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। दोपहर और रात के खाने में आपको हैवी चीजें नहीं लेनी है, सादा और हल्का खाना खाएं। मूंग की दाल की खिचड़ी, दाल चावल, दलिया, पतली रोटी और हरी सब्जी खाएं। नौतपे में ज्यादा मसालेदार और तला भुना खाना नहीं खाना है। मिर्च मसाले, कचौरी, समोसे, प्रोसेस्ड फूड वगैरह खाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी और तबीयत खराब होगी। चाय कॉफी जितनी कम से कम पिएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। मीठी चीजें छोड़ दीजिए। इसके अलावा बासी और खुला हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना है। नौतपे के दौरान आपको ये इंतजार नहीं करना है कि आपको प्यास महसूस हो रही है या नहीं। हर आधे एक घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है। दिन में 12 बजे से 4 बजे के बीच तो घर से बाहर नहीं निकलना है। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और प्रेग्नेंट महिलाओं को या बीमार लोगों को इस दौरान बाहर नहीं निकलने देना है। तो सावधानी रखेंगे,
नौ थेपे के ये दिन बीत जाएंगे।

और उसके बाद जब मॉनसून आएगा तो धरती में बहुत ज्यादा बारिश होगी और सुकून मिलेगा। तो इंतजार करते हैं बारिश का। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख, स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। जिज्ञासा।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियां। पत्नी का पत्र इस कहानी का चौथा और अंतिम भाग लीजिए आज प्रस्तुत है। वाचन स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का।

दोस्तों, पिछले हफ्तों में आपने सुना, बिंदु का रंग काला होने से उसके विवाह में अड़चनें आती हैं, लेकिन एक पागल व्यक्ति से उसका विवाह तय हो जाता है। बिंदु कतई नहीं चाहती शादी करना, लेकिन उसकी शादी एक पागल व्यक्ति से हो जाती है। कुछ ही दिनों में वो मृणाल के घर वापस शरण लेती है, लेकिन उसके ससुराल से उसके जेठ आते हैं और हंगामा खड़ा करते हैं। अब आगे। मेरा छोटा भाई शरद कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ता था। तुम तो जानते ही हो, तरह तरह से वॉलेंटियरी करना, प्लेग वाले मोहल्लों में चूहे मारना, दामोदर में बाढ़ आ जाने की खबर सुनकर दौड़ पड़ना, इन सब बातों में उसका इतना उत्साह था कि एफए की परीक्षा में लगातार दो बार फेल होने पर भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मैंने उसे बुलाकर कहा, शरद, जैसे भी हो बिंदु की खबर पाने का इंतजाम तुझे ही करना पड़ेगा। बिंदु को मुझे चिट्ठी भेजने का साहस नहीं होगा, वो भेजे भी तो मुझे मिल नहीं सकेगी। शरद के साथ बातचीत कर रही थी, तभी तुमने मेरे कमरे में आकर कहा, तुम फिर ये क्या बखेड़ा खड़ा कर रही हो? मैंने कहा, वही जो शुरू से करती आई हूं, जब से तुम्हारे घर आई हूं। लेकिन नहीं, वो तो तुम्ही लोगों की कीर्ति है ना। तुमने पूछा, बिंदु को लाकर फिर कहीं छिपा रखा है क्या तुमने? मैंने कहा था, बिंदु अगर आती तो मैं जरूर छिपा कर रख लेती, लेकिन वो अब नहीं आएगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। शरद को मेरे पास देखकर तुम्हारा संदेह और भी बढ़ गया। मैं जानती थी कि शरद का हमारे यहाँ आना जाना तुम लोगों को पसंद नहीं है। तुम्हें डर था कि उस पर पुलिस की नजर है, अगर कभी किसी राजनीतिक मामले में फंस गया तो तुम्हें भी फंसा डालेगा। इसीलिए मैं भैया दूज का तिलक भी आदमी के हाथों उसी के पास भिजवा देती थी, अपने घर नहीं बुलाती थी। एक दिन तुमसे सुना कि बिंदु फिर भाग गई है, इसीलिए उसका जेठ हमारे घर उसे खोजने आया है। सुनते ही मेरी छाती में शूल चुभ गया। अभागिनी का असह्य कष्ट तो मैं समझ गई, पर फिर भी कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था। शरद पता करने दौड़ा। शाम को लौटकर उसने मुझसे बोला, बिंदु अपने चचेरे भाइयों के यहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर उसी वक्त उसे फिर ससुराल पहुंचा दिया। इसके लिए उन्हें हर जाने का और गाड़ी के किराए का जो दंड भोगना पड़ा, उसकी खार अब भी उनके मन से नहीं गई।

0: श्री क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम लोगों की काकी तुम्हारे यहाँ आकर ठहरी। मैंने तुमसे कहा मैं भी जाऊंगी। अचानक मेरे मन में धर्म के प्रति ये श्रद्धा देकर तुम इतने खुश हुए कि तुमने तनिक भी आपत्ति नहीं की। तुम्हें इस बात का भी ध्यान था कि अगर मैं कलकत्ता में रही तो फिर किसी न किसी दिन बिंदु को लेकर झगड़ा कर बैठूंगी। मेरे मारे तुम्हें बड़ी परेशानी थी। मुझे बुधवार को चलना था, रविवार को ही सब ठीक ठाक हो गया। मैंने शरद को बुलाकर कहा जैसे भी हो बुधवार को पूरी जाने वाली गाड़ी में तुझे बिंदु को चढ़ा ही देना पड़ेगा। शरद का चेहरा खिल उठा था। वो बोला डर की कोई बात नहीं जीजी, मैं उसे गाड़ी में बिठाकर पुरी तक चला चलूंगा। इसी बहाने जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। उसी दिन शाम को शरद फिर आया। उसका मुंह देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा क्या बात है शरद, शायद कोई रास्ता नहीं निकला। वो बोला नहीं ऐसा नहीं है। मैंने पूछा क्या उसे राजी नहीं कर पाए। उसने कहा जी जी अब जरूरत भी नहीं है। कल रात अपने कपड़ों में आग लगाकर वो आत्महत्या करके मर गई। चलो छुट्टी मिले। बिंदु। गांव भर के लोग चीख उठे, कहने लगे लड़कियों का कपड़ों में आग लगाकर मर जाना तो अब एक फैशन सा हो गया है। तुम लोगों ने कहा अच्छा नाटक है। ऐसा ही था बिंदु का दुर्भाग्य। जितने दिन जीवित रही तनिक भी यश नहीं मिल सका, न रूप का न गुण का। मरते वक्त भी ये नहीं हुआ कि सोच समझकर कुछ ऐसे नए ढंग से मरती कि दुनिया भर के लोग खुशी से ताली बजा उठते। मरकर भी उसने लोगों को नाराज ही किया। बिंदु।
1: आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर।
0: जीजी कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी, लेकिन उस रोने में जैसे एक सांत्वना थी। कुछ भी सही, जान तो बची, मर गई, यही क्या कम है। अगर बची रहती तो न जाने क्या क्या हो जाता। मैं तीर्थ में आ पहुंची हूं, बिंदु के आने की तो जरूरत ही न रही, लेकिन मुझे जरूरत थी। लोग जिसे दुख मानते हैं वो तुम्हारी गृहस्थी में मुझे कभी नहीं मिला। तुम्हारे यहाँ खाने पहनने की कोई कमी नहीं। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र चाहे जैसा हो, तुम्हारे चरित्र में ऐसा कोई दोष नहीं जिसके लिए विधाता को बुरा कह सकूं। वैसे अगर तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे बड़े भाई की तरह भी होता तो भी शायद मेरे दिन करीब करीब ऐसे ही कट जाते और मैं अपनी सती साध्वी बड़ी जेठानी की तरह पति देवता को दोष देने की बजाय विश्व देवता को ही दोष देने की चेष्टा करती। इसलिए मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी चिट्ठी का कारण ये नहीं है, लेकिन मैं अब माखन बड़ाल की गली के तुम्हारे उस 27 नंबर वाले घर में लौटकर नहीं जाऊंगी। मैं बिंदु को देख चुकी हूं। इस संसार में नारी का सच्चा परिचय क्या है ये मैं पा चुकी हूं। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और फिर मैंने ये भी देखा है कि वो लड़की ही क्यों न हो, भगवान ने उसका त्याग नहीं किया। उस पर तुम लोगों का चाहे कितना ही जोर क्यों न रहा हो, वो उसका अंत नहीं था। वो अपने अभागे मानव जीवन से बड़ी थी। तुम लोगों के पैर इतने लंबे नहीं थे कि तुम मनमाने ढंग से अपने हिसाब से उसके जीवन को सदा के लिए उनसे दबा कर रख सकते। मृत्यु तुम लोगों से भी बड़ी है। अपनी मृत्यु में वो महान है। वहां बिंदु केवल बंगाली परिवार की लड़की नहीं है, केवल

चचेरे भाइयों की बहन नहीं है, केवल किसी अपरिचित पागल पति की प्रवंचिता पत्नी नहीं है। वहां वो अनंत है। मृत्यु की उस वंशी का स्वर उस बालिका के भग्न हृदय से निकलकर जब मेरे जीवन की यमुना के पास बजने लगा, तो पहले पहल मानो मेरी छाती में कोई वाण बिंध गया हो। मैंने विधाता से प्रश्न किया, भगवान, इस संसार में जो सबसे अधिक तुच्छ है, वही सबसे अधिक कठिन क्यों है? इस गली में चार दीवारी से घिरे इस निरानंद स्थान में ये जो तुच्छतम बुद्बुद है, वो इतनी भयंकर बाधा कैसे बन गया? तुम्हारा संसार अपनी षठ नीतियों से क्षुधा पात्र को संभाले, कितना ही क्यों न कोई पुकारे, मैं उस अंतःपुर की जरा सी चौखट को क्षण भर के लिए भी पार क्यों नहीं कर सकी? ऐसे संसार में ऐसा जीवन लेकर मुझे इस अत्यंत तुच्छ काठ पत्थर की आड़ में ही तिल तिल कर क्यों मरना होगा भला? क्यों? कितनी तुच्छ है ये मेरी प्रतिदिन की जीवन यात्रा, इसके बंधे नियम, बंधे अभ्यास, बंधी हुई बोली, बंधी हुई मार, सब कुछ कितनी तुच्छ है। फिर भी क्या अंत में दीनता के उस नागपाश बंधन की जीत होगी? और तुम्हारे अपने इस आनंद लोक की, इस सृष्टि की हार। लेकिन मृत्यु की बंसी बजने लगी। कहाँ गई राजमिस्त्रियों की बनाई हुई वो दीवार? कहाँ गया तुम्हारे घोर नियमों से बंधा वो कांटों का घेरा? कौन सा है वो दुख, कौन सा है वो अपमान जो मनुष्य को बंदी बनाकर रख सकता है? ये लो, मृत्यु के हाथ में जीवन की जय पताका उड़ रही है। तरी मझली बहू, तुझे डरने की अब कोई जरूरत नहीं। मझली बहू के इस तेरे खोल को छिन्न होते एक निमेश भी नहीं लगा। तुम्हारी गली का अब मुझे कोई डर नहीं। आज मेरे सामने नीला समुद्र है, मेरे सिर पर आषाढ़ के बादल। तुम लोगों की रीति नीति के अंधेरे ने मुझे अब तक ढक के रखा था। बिंदु ने आकर क्षण भर के लिए उस आवरण के छेद में से मुझे देख लिया। वही लड़की अपने मृत्यु द्वारा सिर से पैर तक मेरा वो आवरण उघाड़ दिया। आज बाहर आकर देखती हूँ, अपना गौरव रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। मेरा ये अनाहत रूप, जिनकी आंखों को भाया है, वे सुंदर आज संपूर्ण आकाश से मुझे निहार रहे हैं। अब मछली बहू की खैर नहीं। तुम सोच रहे होगे मैं मरने जा रही हूं। नहीं, डरने की कोई बात नहीं। तुम लोगों के साथ मैं ऐसा पुराना मजाक नहीं करूंगी। मीराबाई भी तो मेरी ही तरह नारी थी, उनकी जंजीरें भी तो कम भारी नहीं थी। मीराबाई ने अपने गीत में कहा था, बाप छोड़े माँ छोड़े जहाँ कहीं भी जो भी है सब छोड़े। लेकिन मीरा की लगन वहीं रहेगी प्रभु। अब जो होना है सो ये लगन ही तो जीवन है। मैं अभी जीवित रहूंगी। मैं बच गई हूँ। जीवित रहूंगी। तुम लोगों के चरणों के आश्रय से छूटी हुई मैं जीवित रहूंगी।

सुनो कहानी में इन दिनों आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियाँ पत्नी का पत्र। इस कहानी का ये था चौथा और अंतिम।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम चित्रलोक।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी झालावाड़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।
2: Mm-hmm.

ये थे लता मंगेशकर, किशोर कुमार, फिल्म थी प्रेम कहानी। कार्यक्रम का अगला गीत लिया है लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म है प्रेम पर्वत। गीतकार जानिसार अख्तर और संगीतकार जयदेव।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

फिल्म संगीत कार्यक्रम में एक बार फिर सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए आग और शोला फिल्म में कविता कृष्णमूर्ति मोहम्मद अजीज को।

0: मोहम्मद रफ़ी के गाय फिल्म आकाशदीप के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी झालावाड़ है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, इसे हम दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और

0: भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार

0: कार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
1: विकसित भारत 2047 जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के

0: घायलों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग।
2: FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी झालावाड़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं दिनेश गोस्वामी की गाई भक्ति रचना के साथ।

प्यासे नैनों की प्यास बुझा जा, आ जा रे मुरली वाले झलक दिखा जा। बिंदु जी की ये रचना भी आप सुन रहे थे, स्वर था दिनेश गोस्वामी का। पंडित कुमार गंधर्व की आवाज में लीजिए, सुनिए।

जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी झालावाड़ से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब हमारी ये आज की सभा संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

झूमती हवा के साथ हम भी बहकना चाहते हैं, झूमना चाहते हैं, लेकिन वक्त की तरह हवा भला कहाँ रुकती है। जी हाँ, ये हवा हमें ठंडक तो देती है, हमारे दिल को राहत देती है, लेकिन रुकती कभी नहीं। फिलहाल वक्त भी भाग रहा है, दौड़ रहा है। 5:25 और 33 सेकेंड हो रहे हैं। आप हैं भोर सुहानी में रूपा के साथ। तो जनाब, आज का दिन भी हर दिन की तरह एक ख़ास तोहफे की तरह है, या यूँ कहें कि ज़िंदगी का एक और साफ और नया पन्ना, जिस पर आज हम अपनी खुशियों की नई इबारत लिख सकते हैं। जी हाँ, ज़िंदगी के 100 दिनों से अच्छे हैं प्यार के कुछ दिन।